ਧਰਮ ਹੈ ਤੋ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਟਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਤੁਰਖੜੀਆਂ

शिकानु शिकी दानं केस दान रहत दानं बोबे कदान विसाह दानं परसादानं बन्नं सिर्दान नाम दानं सिर्यामृत सर साहब जी दें दर्शन कृष्णा।

Thank you.

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

0: भगत हरि जी जय। श्लोक महला पहला, गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरन न जाय, तो चित का तह जप माली तान मले छा खाय, अंतर पूजा पड़क दे बसन अंतर का पहाय, छोटी ले पखंडा नाम ले जाहे करंदा महला पहला।
1: मानस गाने करे निवाज, फूल बगाए तिन गल ताक, तिन कर ब्राह्मण पूरे ना।

अहमद करम साहब जन जी मुझके आवाज में कलाम जो है आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आए हिंसर पेश है तबसरो उज़्बेकिस्तान सदर जे नींद ते श्री शेवकात मिर्ज़ियोयेव भारत जे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उज़्बेकिस्तान जी 29 ऐं 30 अगस्त 2026 ते सूबाई यात्रा कई। सदर ए प्रधानमंत्री पैं बाहमी लागापन जो भारत उज़्बेकिस्तान बाहमी लागापन जो जायजो वरतो उन्होंने मुहकम इरादे के बीहर दोहराय जोर दिनों तो बितरफन लागापन के पुख्तो किया वो भाईवारी के वसी हिकमत और मिली भाईवारी में तब्दील किया है तेमें बिन्हीं मुल्क के मुख्य फायदन के ध्यान में रखे वो जोर दिनों बाकायदा गाल बोल कई वी इदारे समत ते गड़जाणियूं थींदी रहंदियूं वीचारनि जी डेबट थींदी रहंदी इहो पण मञियो त पाड़े वज़रनि समत ते हिकु मैकेनिज़म तयार कयो वेंदो यक राय सां दहशत अंग्रेज़ी जी निंदा कई तंहिंजी ख़ासि करे सरहद पार दहशत ईंदड़ जी सख़्त लफ़्ज़नि में निंदा कई वई ऐं चयो त दहशत कंहिं बि रूप में ऐं कंहिं बि बहाने सां सही कोन वेंदी ऐं हुनखे सही करार कोन थो ॾिनो वञे। ज़ोर ॾिनो त कानून खे लागू करणु खुफ़िया ख़बरचार खे वंडणु ऐं बे इंतिहा फसादनि जो मुक़ाबिलो करण लाइ इन खां अलावा बेक़ाइदे नशे दर्शन जे वापारु

मोहन ऐं साइबर ललकारनि जो मुक़ाबलो करण लाइ सहकार खे अञा वधीक वधायो वेंदो। हिन ॾिसण में दहशत ख़िलाफ़ हिकु गॾियल कमु कंदड़ ग्रुप बरपा कई वेंदी। हुननि उज़्बेकिस्तान भारत गॾियल फ़ौजी मश्कनि दस्तलिक जी पिण आजा कई, जेका अप्रैल 2026 में उज़्बेकिस्तान जे नमनगांव इलाइक़े में कराई वई। ॿिन्ही अॻवाननि उज़्बेकिस्तान ऐं भारत मंझि मुआशी भाईवारी जी आजा कई ऐं चयो त इन में अञा जजी कौत आहे वापार ऐं सीड़प खे वधाइण जी। ॿिन्ही अॻवाननि वापार, इकोनॉमिक्स, साइंटिफिक ऐं तकनीकी सहकार पंहिंजे नतीजे जी आजा कई। इहा गॾिजाणी भारत उज़्बेकिस्तान भारत फोरम जून 2026 में थी, सा तश्कंद इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फोरम जे साइडलाइन ते थी, सा अगस्त 2026 में नई दिल्ली में थी। वेंदड़नि मञियो त इलेक्ट्रिकल आइटम्स, इंजीनियरिंग शयूं, वाहन, दवाउनि जे खेत्र में ॿितरफ़े वापार जा जज़ाफ़ जो मौजूदु आहिनि ऐं वापार जो वापार सां ॻंढापो इन्हनि खेत्रनि में हुअणु घुर्जे। ॿिन्ही अॻवाननि मञियो त जियोलॉजी, खाणी खोटण, न्यूक्लियर एनर्जी, हुनरी सहकार, क्रिटिकल ऐं स्ट्रेटजिक कुदरती धातू इन्हनि खेत्रनि में सहकार खे वधाइण जा घणा वजह मौजूदु आहिनि। अॻवाननि मञियो त ज़राइत ऐं लाइफ स्टॉक सेक्टर में पिण सहकार खे अञा वधीक पुख़्तो कयो वेंदो। उज़्बेकिस्तान ऐं भारत हिकु ग्रीनर ऐं सिहतमंद धरती जे अभिलाषा खे वञनि था, ख़ासि करे ईंदड़ पीढ़ियुनि जे लाइ। सो उज़्बेकिस्तान जे यशील माकोन ऐं भारत जे एक पेड़ माउ के नाम शुरूआतुनि मां साफ़ पधरो थो थिए। मञियो त अवामी सिहत सिरिश्ते खे वधीक पुख़्तो कयो वेंदो, तंहिंमें सहकार खे वधाईंदो। इन में ॿिया खेत्र जीता आहिनि, बायोमेडिकल रिसर्च ऐं मेडिकल इनोवेशन, तंहिंमें हिक ॿिए जे सग खे हिक ॿिए जे मुल्क जे फ़ाइदे लाइ कथा आंदो वेंदो। ॿिन्ही अॻवाननि मञियो त रांदियुनि जे खेत्र में सहकार खे अञा वधीक मज़बूत बणायो वेंदो। ॿिन्ही अॻवाननि 21 जून आलमी योग ॾींहं जे अहमियत खे पिणु ज़ोर ॾिनो। ॿिन्ही अॻवाननि उज़्बेकिस्तान जे योगा फेडरेशन ऐं भारत जे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंझि सहकार जी आजा कई। तंहिंमें उज़्बेकिस्तान में आलमी योगा आसन चटाभेटी थी वई। हिन समय ॿिन्ही अॻवाननि हिकु सूबे जी चिठी जी पिणु आजा कई। ॿिन्ही अॻवाननि इहो पिणु चयो त मुतहिद जमायत खे हिकु वधीक माना भरियो रोल आलमी अमन ऐं सुरक्षा में अदा करणु घुर्जे। उज़्बेकिस्तान भारत जे यूएन सलामती काउंसिल में दायमा मेंबरशिप जे उमेदवार पिणु जी हिमायत कई। ॿिन्ही अॻवाननि ध्यानु चुकायो त इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ऐं आलमी शमसी भाईवारी पंहिंजे पंहिंजे खेत्रनि में आलमी योगदान ॾेई रहिया आहिनि, आलमी सहकार खे वधाए रहिया आहिनि। प्रधानमंत्री, भारत जे प्रधानमंत्री उज़्बेकिस्तान जे सदर खे भारत यात्रा जी नींड ॾिनी, तारीख़ूं पोइ मुक़ररु कयूं वेंदियूं। तव्हां तबसरो ॿुधी रहिया हुआ।

हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। पेशा प्रोग्राम सेण तोखे ख़बर कहिड़ी। सेण तोखे ख़बर कहिड़ी समय हीउ प्रोग्राम खणी करे अव्हां जी क़िस्मत में हिकु दफ़ो ॿीहर खां हाज़िर थिया आहियूं। सभिनी हिन वक़्तु सिहत सां वाबस्ता हालतूं ख़स्ता आहिनि। इन सां वाबस्ता सिंध एक्सप्रेस में एडिटोरियल शायदि हुयो, जंहिंजो टाइटल आहे सिंध में मलेरिया जो मर्ज़। ट्विटर में लिखियलु आहे की सरकारी समत ते जेके बि सिहत जा मर्कज़ डिस्पेंसरीज़ या अस्पतालूं आहिनि

मूंखे ऑन मूंखे हमेशा शिकायतूं रहंदियूं आहिनि डॉक्टरनि खां वठी, डॉक्टरनि जी रवै तव्हांजो भॻवान ताईं, का बि शइ सही कान्हे ऐं मरीजनि खे तकलीफ़ूं ऐं इज़ा सहणा पवंदा आहिनि। हक़ीक़त में सरकारी अस्पतालूं आवाम जी सहूलियत लाइ आहिनि त जीअं हू निजी अस्पतालनि जे भारी ख़र्चनि खां बची सघनि, पर जेकॾहिं आवाम खे सरकारी अस्पतालनि मां सहूलियतूं न मिलनि त उन लाइ परेशानी वधी थी वञे। नतीजनि आवाम खे प्राइवेट हॉस्पिटल सां भॼणो थो पवे, सघन ख़र्च वधी था वञनि, पॉकेट मां पैसा नथा रहनि ऐं सरकारी अस्पतालनि ते टैक्सिस वारनि जो ढलूं भरींदड़नि जो ख़र्च हुअण जे बावजूद बि उते का सहूलियत मयसरु कान्हे, जंहिं सबब शहरनि ऐं इलाइक़नि में बीमारियूं फैलजनि थियूं, हुनखे रोकण में घणो अरसो थो लॻी वञे। ऐं उहो बि हिते ख़ासि मशहूरु आहे कि सिहत जे मामले में न फ़क़ति हितां जो आवाम लापरवाह आहे पर सिस्टम पिण लापरवाह आहे। एतिरे क़दुर जो सिंध में अहिड़ा घणाई ॻोठ आहिनि जेके मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। ताज़ो ई सिंध जे सिहत खाते चयो आहे त हलंदड़ साल सॼे सिंध में 90,853 मलेरिया जा केस रिपोर्ट थिया आहिनि, हिकु लॻभॻि लख जो अघु थी वियो। अॻिते लिखियल आहे कराची में मलेरिया जा 772 केस रिपोर्ट थिया, जंहिं में सभ खां वधीक मरीज़ मलिर ज़िले में आया 250, ॾखिण ज़िले में 164 ऐं ओलह ज़िले में 140, कोरंगे ज़िले मां 135, विचोले मां 36, ओभर ज़िले मां 34, कयामारी मां 14। सिंध जे सिहत खाते मूजिबि हैदराबाद डिवीज़न में मलेरिया जा 25,094 केस दर्ज थिया आहिनि, सखर में 9,949, लारकाणा में 27,057, मीरपुर ख़ास में मलेरिया जा 7,781 ऐं शहीद बेनज़राबाद मां 10,200 केस रिपोर्ट थिया आहिनि। ये अंग अखर काफ़ी छिरकाईंदड़ आहिनि, तमाम ई हराक कंदड़ आहिनि। एडिटोरियल में अॻिते लिखियलु आहे कि सिंध में बरसातुनि खां पोइ हिकु त शहरनि तोड़े कोठनि मां पाणी निकाल नथो थिए, जंहिं करे पाणीअ ते मच्छर थो पलिजे, हिन खां अलावा मच्छरनि सबबि घणी बीमारियूं जनम वठंदियूं आहिनि। ॻोठनि में गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज़ या हॉस्पिटल वेझो न हुअण सबबि हुते वक़्त सर मरीजनि खे सहूलियतूं नथियूं मिलनि, जंहिं करे सननि तंदुरुस्त थियण में वॾो अरसो थो लॻी वञे। ॾिठो वञे त सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में मलेरिया जो एतिरी वॾी समत ते फैलजनि ऐं पखिड़जनि हिकु गंभीर मसइलो आहे, जंहिंखे एमरजेंसी बेसिस ते हल करण जी घुर्ज आहे। जेसिताईं पाणी रस्तनि ते बीठो हूंदो, तेसिताईं मच्छरनि मां जान कोन छुटंदी ऐं माण्हू मलेरिया मां रिहा कोन थींदा। तव्हां सिंध एक्सप्रेस में शाया थियल एडिटोरियल ॿुधी रहिया, जंहिंजो टाइटल हो सिंध में मलेरिया जो मर्ज़।

सर, मैं पानी से खोर सा वाबस्ता एडिटोरियल शायद है, जिन जो टाइटल है हैदराबाद में पानी जो बहरान। लेकिन हैदराबाद में कुछ नीला पानी जी खोर जो मसलो हली रहा है, शहरी पानी नहाने जो दाम करे रहे हैं। हैदराबाद जे मुख्य इलाकन में पानी कोन पे पहुंचे, जैं करे माण जी जिंदगी सख्त मुतासिर थी है। रोज पानी जो न मिलन तमाम घना मसाला तो पैदा करे, पानी बिना जिंदगी हली कोन थी सके। जैं करे संदन रोजमर्रे जो व्यवहार कारोबार सख्त मुतासिर थियो आहे। मजबूरन महंगे अगते शहरन के पानी खरीद तो करो पे। एडिटोरियल में अगते लिखल है कि एक रिपोर्ट में बुधा है कि हैदराबाद में पीने जो पानी तीन जो सख्त बहरान पैदा थे है। हैदराबाद में कासिम आबाद जे मुख्तलिफ इलाकन शेदी गोठ, अली पैलेस, अब्दुल्ला टाउन फेज वन, नसीम नगर, नसीम शॉपिंग मॉल, सुदो लतीफाबाद यूनिट नंबर 5, 4, 11, कच्चो किलो, मक्की शाह, हैदर चौक ए बेन मुख्तलिफ इलाकन में पानी लाइन जरिए कोन पे हुए। और हैदराबाद में बरसाती नालन समेत ड्रेनेज नालन की खोटाई सबब पानी के लाइन के चंगो नुकसान पौत है, जैसे मरम्मत को थी है ए शहर के पीने जो पानी को मिले। शहर चवण है तो पानी की खोट सबब हु मजबूरन 4-5 हज़ार में फ्री टैंकर खरीद करण ते मजबूर है। और पानी के अख्तियार के काफी भेरा चो भी है कि पीने जो पानी जल्द जल्द मैसर कराया वे। दिखो वे तो हैदराबाद की आबादी चंगी बढ़ी वही है, तेखा सवाए ते अडावत घर अडावत पिण बढ़ी वही है, पर पानी जो लाइन उस टाइम मोकलू को पन ए पुरानी लाइन की पिण खराबी हली रही है। इन वक्त सिंधु दरिया टूरिस्ट के वाहन में पानी मौजूद है। कोटरी डाउन स्ट्रीम में पिण मान पानी है, कोई भी शहरी पानी की खोट के मुंह डेई रहा। जैसे हैदराबाद के शहर में पानी जो मसलो हल न थे तो इंद वक्त में यो बहरान तमाम घणो वधी वेंदो। समाज का अलावा देश के

आकाशवाणी जी सिंधी सर से पेशन खास खास खबरों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अज किर्गिस्तान में 6वीं एससीओ समिट के खिताब कंदो। समिट के साइडलाइन से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एससीओ अगवान से बेतरफी गाल यूक्रेन में जंग के खत्म करने लाइ भारत हर का मुमकिन कोशिश कर रो है। मौजूदा माली साल के पहन टिन महीन यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में भारत की जीडीपी वधी करे 7.8% पौती है जितोणक आलमी बहरान ए छिकताण हली रही है। नेपाल फ्लैश बोर्ड ओजतो बोर्ड आई तह हादसे वाले मामले में राहत ए इमदाद कोशिशों हली रही है पर ये औजारों के शॉर्टेज सबब 800 लोग मुतासर थी हैं। मौलन जो तादाद 900 के पार कर 4000 का भी मू अब ए लियोनेल मेसी आलमी फुटबॉल का रिटायरमेंट जो ऐलान किया है।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधरा हिंसर असाज प्रोग्राम जो वक्त पुरोसी रहा है वरी असा मुलाकात थी सुबह सुबह जो इनके भारतीय वक्त मुताबिक 4:30 बजे तेसी तक इजाजत सलाम करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कल बिश्केक में 6ठे विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। ये द्विवार्षिक आयोजन घुमंतू सभ्यताओं की समृद्ध खेल परंपराओं, संस्कृति और विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा तथा रक्षा क्षेत्रों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित की सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्ध

0: रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की वृद्धि हुई। गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि इस समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चले आ रहे जल विवाद का समाधान हो गया है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। अमरीका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दो दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमरीका की वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से लोग अभी लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के खसकने के कारण आई बाढ़ से भूटिकोशी नदी के किनारे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए तथा पन बिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बैठक में देश में हरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बातचीत हुई। बैठक में केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्यघर, पीएम कुसुम और पीएम जनमन योजनाओं के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की गई। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही कपड़े के थैलों और दोबारा उपयोग वाली बोतलों को बढ़ावा देना भी है। यह अभियान 15 सितम्बर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप, 2 कोपा अमरीका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news are read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi will address the 26th Shanghai Cooperation Organization SCO Summit in Bishkek, Kyrgyzstan today. The 26th SCO Summit has been held under the central motto, Together for Sustainable Peace, Development and Prosperity. Mr. Modi is on a two-day visit to Kyrgyzstan to attend the summit. On the first of his visit, PM Modi engaged in cultural events, paid tribute to Mahatma Gandhi, attended the opening ceremony of the 6th World Nomad Games alongside other world leaders. Mr. Modi held a bilateral meeting with Russian President Vladimir Putin yesterday. During his talk with Mr. Putin, PM Modi pushed for a diplomatic resolution to global conflicts, emphasizing the need to move from endless war to the end of war.
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
2: The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. Prime Minister Modi said it is a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continue to scale new heights.
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
2: Prime Minister Modi also held bilateral meetings with leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia yesterday. India's real GDP has recorded a growth rate of 7.8% during the first quarter of the current financial year, compared to 6.9% during the same period previous year. Minister of Statistics and Programme Implementation released the quarterly estimates of GDP for the first quarter from April to June of the current financial year. It said Indian economy has sustained growth momentum despite global headwinds. The nominal GDP has also registered 10.3% growth during the first quarter of the current financial year. Secretary of the Ministry, Dr. Saurav Garg, said growth across all sectors has been highly positive, which demonstrates that government interventions are having an impact despite geopolitical situation. Prime Minister Narendra Modi has termed India's exemplary GDP growth of 7.8% a Herculean feat. In a social media post, the Prime Minister said that the achievement reflects the collective strength and resilience of the people of the country despite oil price shocks, supply chain disruptions and global uncertainties. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and Union Home Minister Amit Shah said the credit for this strong performance goes to the people of the country and their hard work. Bihar and Jharkhand have signed an MOU on sharing of Son River water in the presence of Union Home Minister Amit Shah in New Delhi. Jharkhand Chief Minister Hemant Soren, Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary, Jal Shakti Minister C.R. Patil were also present on the occasion. Speaking at the event, Union Home Minister Amit Shah said the agreement between Bihar and Jharkhand has resolved a long-awaited water dispute in eastern India. He said the agreement will provide irrigation water to lakhs of farmers in large rural areas of Bihar and Jharkhand, along with drinking water for the people. The fourth Indo-German Environmental Forum will be held in New Delhi today to strengthen bilateral cooperation and facilitate multi-stakeholder exchange on environment and climate change. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav, along with German Minister for Environment, Climate Protection, Nature Conservation and Nuclear Safety, Carsten Schneider, will co-chair the forum. Lionel Messi has announced his retirement from international football, bringing an end to a 20-year Argentina career that included a World Cup triumph, two Copa America titles, and a record 207 appearances for his country. Messi said the decision has been on his mind since the World Cup final defeat to Spain before the death of his father further convinced him it was time to step away. And that is the end of this news bulletin.
3: आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगीत का, जिसमें आज हम सुनते हैं प्रीति सुशील से कुछ भजन, सूरदास जी के, मीराबाई और कबीरदास जी के। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका। आज आपने इसमें सुना प्रीति सुशील से कुछ भजन। और अब वक्त हुआ है हमारा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग गीतों भरी। जी हाँ, आप सभी को इंतजार होगा इस कार्यक्रम का, क्योंकि घड़ी में पूरे 7:13 हुए हैं। तो आज का दिन है खूबसूरत, यानी कि 1 सितंबर, और आज के दिन सबसे पहले आपकी पसंद का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जी हाँ, और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आपके साथ सिमरन कौर। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों कहते हैं कि रिश्ते जिंदगी की वो दौलत हैं जिन्हें जितना संभाल कर रखो उतना ही जीवन बहुत ही खूबसूरत बनता जाता है, क्योंकि साथ में होने से किसी के बहुत ही खूबसूरती का एहसास होता है और ये एहसास हमें तब होता है जब हम ये बात सोचते हैं

दोस्तों आप सुन रहे हैं अपने दोस्त और होस्ट सिमरन कौर के साथ की तो भरी गुड मॉर्निंग। और आज की जब बात कर रहे हैं तो प्यार सिर्फ रिश्तों की नहीं खास, लेकिन सिर्फ किसी के साथ होने का नाम नहीं, बल्कि किसी के दिल को समझने और उनकी खामोशी को सुनने और बिना कहे उनकी भावनाओं को महसूस करने का नाम भी होता है।

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अपनों के साथ होते हुए भी कई बार उनसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि मोबाइल पे घंटों बातें जो करते रहते हैं, लेकिन सामने बैठे दो इंसान दो पल के की बात करने का समय नहीं मिल पाता। लेकिन ऐसा नहीं है, समय निकालना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि समय निकालेंगे तभी तो हम खुश रह पाएंगे।

और खुशी जितना हम उसे बाहर खोजते हैं ना, उसके मिलने की संभावना बहुत कम होती है। अंदर होती है अपने अंदर हमारी हंसी और खुशी, क्योंकि ये हमारे अंदर की बात है और बस इसी वक्त हम सोचते हैं कि खुश होने की कोशिश करें और इसी कहीं बाहर ढूंढने ना जाएं तो हम हमेशा ही खुश रहेंगे।

जी हाँ, मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहना और गलती होने पर छोड़ देना, माफ कर देना, यही तो प्यार है। याद रखिए, हर रिश्ते में कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन कभी कभी सही भी होता है, तो इसीलिए

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कराती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई है। 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमरीका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया। और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, 21 साल के शानदार करियर का अंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की 25वीं वर्षगांठ पर

0: आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में भारत, चीन और रूस सहित 10 अन्य सदस्य देश शामिल हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। भारत आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अपनाए जाने के हमेशा से खिलाफ रहा है। भारत का मानना है कि क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए सदस्य देशों के बीच संपर्क बढ़ना जरूरी है। हालांकि संपर्क परियोजनाओं के साथ सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत सदस्य देशों के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने और स्टार्टअप व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर देता रहा है। भारत का मानना है कि युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और उद्यमिता क्षेत्रीय विकास और सहयोग को नई गति दे सकती है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रही थी। इस बीच अमरीका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के ये आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं।
3: मुझे लगता है कि ये आंकड़े उस बात की पुष्टि करते हैं जो राष्ट्रपति और प्रशासन शुरू से ही कहते आ रहे हैं। भारत एक गतिशील, मजबूत और मुश्किलों का सामना करने में सक्षम अर्थव्यवस्था वाला देश है और मुझे लगता है कि जो जीडीपी रिपोर्ट या आंकड़े सामने आए हैं वे फिर इस बात को पुख्ता करते हैं कि भारत यहाँ तेजी से उभरती हुई एक बड़ी ताकत है।
0: अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दो दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका की वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है।
4: हमने अमेरिका को पूंजी के प्रवाह और व्यवसायियों को विकसित करने के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र बनाया है। हमने लाखों कामकाजी परिवारों को ऐतिहासिक कर राहत दी है और ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त किया है। ये उपलब्धियाँ विकास के अगले दौर को आकार दे रही हैं और हमने तो अभी शुरुआत ही की है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's Treasury. innovation, cooperation and sustainability. With a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए उसके निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है।
4: भारत ने दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। यह बयान हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि संधि को स्थगित करने के भारत के कारण इसके निलंबन या समाप्ति को उचित नहीं ठहराते। पैनल ने भारत को 1960 के जल बंटवारे समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन जारी रखने का आह्वान किया। हालांकि भारत ने इस फैसले को खारिज करते हुए तर्क दिया कि मध्यस्थता पैनल की स्थापना ही संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए की गई थी। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विकास नापा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं।
6: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो चुकी है और 3,925 लोग अब भी लापता हैं। जल विद्युत परियोजनाओं से 279 लोगों को बचाया जा चुका है। वहीं देश भर के 11,000 से अधिक लोगों को भी बचाया गया है। भारत ने बचाव अभियान और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल भेजे हैं। बाढ़ से 11 जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। नेपाल ने कई देशों से फ्रीजर, डीएनए परीक्षण उपकरण, ड्रोन पुल और विशेष सुरंग बचाव उपकरण सहित सहायता मांगी है। 18 भारतीय फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम डीएनए पहचान में सहायता कर रही है। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: मौसम विभाग ने आज उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट, 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
7: उड़ीसा में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़ और केंद्र के लिए रेड वार्निंग जारी की है। झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अंगुल और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू है जबकि 12 जिलों येलो वार्निंग में है। ये बारिश गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और उससे सटे उड़ीसा के उत्तरी तटीय इलाकों में बने वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के कारण हो रही है। IMD का अनुमान है कि कल के बाद बारिश कम हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार भुवनेश्वर।
0: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 28 अगस्त तक खरीफ फसलों के अंतर्गत 171 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुआई हो चुकी थी। मंत्रालय ने बताया कि धान की खेती 414 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है जबकि दलहन की बुआई 115 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई है। नागालैंड विधानसभा का 9वां सत्र आज शुरू होगा। इस सत्र में फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बिल 2026, कई सरकारी विधेयक और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने इस साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट के सिलसिले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले अभिकरण ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार से इसकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बारे में जानकारी मांगी है। ये निर्देश वर्ष 2013 में दिए निर्देश के बावजूद तेजाब की आसानी से उपलब्धता पर चिंताओं के बीच आया है। न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर तेजाब हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप 2 कोपा अमेरिका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप क्वालिफायर में भारत ने सीरिया को 1-0 से हरा दिया है। ताशकंद में कल सिंगा मयूम शमी ने 86वीं मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मैच बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
8: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, किर्गिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी बोले यूक्रेन युद्ध का अंत आवश्यक। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे ले जाता है। जनसत्ता की सुर्खी है, किर्गिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति से भी वार्ता और कूटनीति से पश्चिम एशिया के संघर्ष के समाधान की अपील की। अमर उजाला के शीर्षक है वैश्विक बाधाओं के बाद भी रफ्तार में भारत, विकास दर 7.8% पहली तिमाही में भारत की जीडीपी सबसे तेज, खपत और निर्यात ने संभाला मोर्चा। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा अगर हिंदू जागते हैं तो दुनिया जागती है, मानवता की निस्वार्थ सेवा के जरिए भारत विश्वगुरु बना। राजस्थान पत्रिका ने समुद्र में शक्ति शीर्षक से सचित्र दिया है, INS निपुण नौसेना में शामिल, समुद्र में गहराई तक मदद पहुंचाने में सक्षम है स्वदेशी पोत।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया। और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, 21 साल के शानदार करियर का अंत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज किर्गिज़िस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम SCO की सरबरा कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। मौजूदा माली साल की पहली सेमाही के दौरान मुल्क की GDP की शरह तरक्की 7.8% रही, जबकि रिजर्व बैंक ने इसके 7% रहने का अंदाजा लगाया था। अमरीका ने भारत को एक वलवला अंगेज, मजबूत और मुस्तहकम मईशत वाला मुल्क करार दिया है। भारत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे के बारे में सालिसी से मुतालिक अदालत के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। नेपाल में इमदादी कारकुनों ने पनबिजली प्रोजेक्टों पर काम करने वाले कारकुनों को तलाश करने के लिए पहाड़ी हिस्से पर धमाका किया। और लियोनेल मेसी ने बैन अलावामी फुटबॉल से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इस तरह अर्जेंटीना की कौमी टीम के साथ 21 साल से जारी सफर भी खत्म हो गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज किर्गिज़िस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम SCO की 26वीं सरबरा कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। SCO की इस सरबरा कॉन्फ्रेंस का मरकजी मौजू है पायदार अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए एक साथ। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अपने दौरे के पहले दिन कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सकाफती प्रोग्रामों में शिरकत की, महात्मा गांधी को खराज-ए-अकीदत पेश किया और

0: मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर दे। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: बातचीत के दौरान भारत और रूस के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा समेत दोतरफा तआवुन के अहम उमूर पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि यह इत्मीनान की बात है कि भारत और रूस के दरमियान तआवुन मुसलसल नई बुलंदियों तक पहुंचा है।
0: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ईरान, जमहूरिया किर्गिज और आर्मेनिया के रहनुमाओं के साथ दोतरफा मीटिंगें भी की। बिश्केक से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
2: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किर्गिज़िस्तान के अपने दो रोजा दौरे के पहले दिन कल रूस, ईरान, जमहूरिया किर्गिज और आर्मेनिया के रहनुमाओं के साथ दोतरफा मीटिंगें की। इन मीटिंगों में दोतरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कल शाम बिश्केक में दीगर एससीओ रुकन ममालिक के रहनुमाओं के साथ छठे वर्ल्ड नोमैड गेम्स की बाज़ाब्ता इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत की। मौजूदा माली साल की पहली सहमाही के दौरान भारत की हकीकी जीडीपी की शरह तरक्की 7.8% रही जबकि साबिका साल इसी मुद्दत में यह 6.9% थी। आदादोशुमार और प्रोग्रामों पर अमल दरामद से मुतालिक वजारत ने मौजूदा माली साल की अप्रैल से लेकर जून तक की पहली सहमाही के लिए जीडीपी के तखमीने जारी किए हैं। उसने कहा है कि आलमी उतार चढ़ाव के बावजूद भारतीय मईशत में तरक्की की रफ्तार बरकरार रही है। वजारत के सेक्रेटरी डॉ सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी शोबों में शरह तरक्की बहुत मुस्बत रही जिससे यह जाहिर होता है कि जोग्राफियाई और सियासी हालात के बावजूद सरकार के इकदाम का असर हो रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत की जीडीपी की शरह तरक्की 7.8% रहने को एक बड़ा कारनामा करार दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म ने कहा कि इस कामयाबी से तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, सप्लाई निजाम में रुकावटों और आलमी गैर यकीनी के हालात के बावजूद मुल्क के अवाम की इज्तिमाई कुव्वत और उनके अज़्म की अक्कासी होती है। इधर वजीर खजाना निर्मला सीतारमन और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मईशत की इस शानदार कारकर्दगी का सहरा मुल्क के अवाम और उनकी मेहनत को जाता है। सरकारी आदादोशुमार में भारत की जीडीपी की शरह तरक्की 7.8% रहने के इंकशाफ के बाद अमरीका ने भारत को एक वलवला अंगेज, मजबूत और मुस्तहकम मईशत वाला मुल्क करार दिया है। एक खबर रसाई एजेंसी के साथ इंटरव्यू में व्हाइट हाउस के सीनियर डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी कुश देसाई ने कहा कि शरह तरक्की के आदादोशुमार से ट्रंप इंतजामिया के इस नुक्ते नजर की तस्दीक होती है कि भारत तेजी के साथ तरक्की करने वाली इकतसादी कुव्वत है। उन्होंने कहा कि भारत की वसी और वसअत हासिल करने वाली मईशत से अमरीकी कंपनियों और सरमायाकारों के लिए बड़े मौके सामने आ रहे हैं। अमरीकी इंतजामिया भी भारत में अमरीकी सरमायाकारी की हौसला अफजाई करने और अमरीका में और ज्यादा भारतीय सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने आलमी बैंक की जानिब से दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुहदे के बारे में सालिसी अदालत के फैसले को सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया है। भारत ने मस्कूरा ट्राइब्यूनल की अथॉरिटी को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उसके फैसले कानूनी एतबार से काबिल कबूल नहीं हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत खारजा ने कहा है कि भारत ने कभी भी सालिसी से मुतालिक इस पैनल को तस्लीम नहीं किया और न ही इसकी कार्रवाई में हिस्सा लिया और वो इसके फैसलों का पाबंद नहीं है। भारत ने यह बात दोहराई है कि दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदा अब भी मुअत्तल है। ये बयान हेग में सालिसी से मुतालिक अदालत के इस फैसले के बाद सामने आया है कि मस्कूरा मुआहदे को मौकूफ रखने की भारत की वजूहात के हवाले से उसे मुअत्तल रखने या खत्म करने को सही नहीं ठहराया जा सकता। मस्कूरा पैनल ने भारत से कहा था कि वह 1960 के पानी में हिस्सेदारी के समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता रहे। भारत ने अलबत्ता यह दलील पेश करते हुए फैसले को खारिज कर दिया कि मस्कूरा पैनल ही मुआहदे की शरायत की खिलाफवर्जी करते हुए कायम किया गया था। वजारत खारजा ने कहा है कि मुआहदे के ताल्लुक से भारत के आजादाना फैसलों या बुनियादी ढांचे के उसके प्रोजेक्टों के ताल्लुक से पैनल का कोई दायरा इख्तियार नहीं है।

0: ने पिछले साल अप्रैल में पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के बाद दरियाए सिंध से मुतालिक आर्मी मुआहदे को मुअत्तल कर दिया था। भारत ने कौमी सलामती को लाहिक तशवीश और सरहद पार से दहशतगर्दी जारी रहने का हवाला दिया था। भारत का कहना है कि मजकूरा मुआहदे के बारे में उसका फैसला अपना मामला है और सालिसी से मुतालिक पैनल के बयानात या फैसलों से पानी और बुनियादी ढांचे से प्रोजेक्टों से मुतालिक उसके इकदामात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेपाल में बचाव टीमें उन 600 से ज्यादा कारकुनों तक पहुंचने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं जिनके बारे में यह ख्याल है कि वो त्रिशूली 3A पनबिजली प्रोजेक्ट के मकाम पर मिट्टी और गाद से भरी हुई टनल में फंसे हुए हैं। बचाव टीमों के एहलकार टनल का रास्ता साफ करने के लिए धमाका खेज मादों, भारी मशीनरी और एयर पंप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जिंदा बच जाने वाले कारकुनों को तलाश किया जा सके। नेपाल में अचानक तबाहकुन सैलाब से मरने वालों की तादाद 939 तक पहुंच गई है जबकि 3925 अफराद अब भी लापता हैं। इनमें 592 गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं। पनबिजली प्रोजेक्टों के मकाम से अब तक 279 अफराद को बचाया गया है जबकि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से मजमूई तौर पर 11,000 से ज्यादा लोगों को बचाकर बाहर लाया गया है। बचाव कार्रवाई में भारत, जनूबी कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के माहिरीन के साथ साथ नेपाल और चीन की फौजी टीमें मुआवनत कर रही हैं। भारत ने बचाव कार्रवाई और मुतासर लोगों की शिनाख्त में मदद की खातिर खसूसी टीमें वहां भेजी हैं। भारत की 19 अरकान पर मुश्तमिल एक फॉरेंसिक टीम ने वहां बरामद की गई लाशों की शिनाख्त की खातिर डीएनए जांच में मदद करते हुए काठमांडू में अपना काम शुरू कर दिया है। उधर पनबिजली प्रोजेक्टों के मकामात पर भी एक भारतीय बचाव टीम काम कर रही है। यह माहरीन 933 कारकुनों और मुलाजमीन का पता लगाने के लिए नेपाल के हुक्काम की मदद कर रहे हैं जो 26 अगस्त से लापता हैं। ऐसा ख्याल है कि इनमें से कई कारकुन टनल्स के अंदर फंसे हुए हैं। नेपाल में सैलाब आने और बिहार में दरियाओं में पानी की सतह में इजाफे के तनाजुर में मवेशी परवरी और माही परवरी से मुतालिक वसाइल के महकमे ने लोगों को यह सलाह दी है कि वो उन मछलियों को खाने में इस्तेमाल न करें जिन्हें सैलाब के पानी से पकड़ा गया है। महकमे के मुताबिक सैलाब के दौरान मछलियां गंदे पानी, मुर्दा मवेशियों और दीगर नाकिस मादों के राबते में आ सकती हैं, इसलिए बैक्टीरिया, वायरस और बीमारी फैलाने वाले दीगर जरासीम की वजह से इनके खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। मगरबी बंगाल में गंगा की तराई वाले इलाके और इससे मुत्तसिल शिमाली साहिली ओडिशा में हवा के कम दबाव का हल्का बनने के जेर असर ओडिशा में फिर से शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने सुंदरगढ़ और क्योंझर जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है जबकि 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: ओडिशा में फिर से बारिश का जोर बढ़ गया है। मौसमियात महकमे ने झारसुगुड़ा, बारगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अंगुल और मयूरभंज जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जबकि 12 जिलों में येलो अलर्ट का ऐलान किया गया है। जुलाई के महीने में ओडिशा में 91% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। इधर जून से लेकर 26 अगस्त तक रियासत में 1104 मिलीमीटर बारिश हुई जो कि नॉर्मल से 31% ज्यादा है। मौसमियात महकमे के मुताबिक रियासत में कल के बाद बारिश का जोर कम हो जाने का इम्कान है, अलबत्ता कहीं कहीं बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: भारतीय मौसमियात महकमे ने आज छत्तीसगढ़ में बहुत शदीद बारिश से लेकर इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और शिमाल मशरकी भारत के बाज हिस्सों में भी तेज बारिश का इम्कान है। मौसमियात महकमे के मुताबिक कौमी राजधानी दिल्ली में आज दोपहर को गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। बेल्जियम के वजीर आजम बार्ट डी वेबर कल से भारत का 3 दिन का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो दोतरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के वसीतर इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत की खातिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोतरफा तबादला ख्याल करेंगे। लियोनेल मेसी ने बैन अलावी फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। इस तरह उनका अर्जेंटीना के खिलाड़ी के तौर पर 20 साल का करियर इख्तिताम को पहुंचा जिसमें वर्ल्ड कप की फतह, 2 कोपा अमेरिका खिताब और अपने मुल्क के लिए 207 मैच खेलने का रिकॉर्ड शामिल है। मेसी ने कहा है

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। गायन कलाकार थी अनिशा रे और आज का राग था नट भैरव। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर।

0: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। अनूप जी, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: अनूप जी, आप लंबे समय से लोक संस्कृति और संरक्षण और संवर्धन से जुड़े हुए हैं। आपके विचार में लोक संस्कृति और विज्ञान के बीच क्या संबंध है? क्या ये वैज्ञानिक है?
1: वैज्ञानिक होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन विज्ञान का जो यूसेज है वो कला में बहुत अत्यंत आवश्यक है और जरूरी है। उसके बिना दोनों पूरे नहीं हो पाते। फोंटाना डिक्शनरी ऑफ थॉट में वो कहते हैं कि पॉप इज एन इंडस्ट्रियलाइज वर्शन ऑफ फोक। अगर वो फोक नहीं है तो वो पॉप नहीं है।
0: जी।
1: अब अगर आज के समय हम कहें, अगर आप पॉप सुन रहे हैं तो उसको अनलार्ज करने के लिए, उसके कैनवस को बड़ा करने के लिए हम उस फोक को सुन रहे हैं, तो वो पॉप सुन रहा है।
0: जी, उसमें आधुनिकता का रंग चढ़ा हुआ है।
1: आधुनिकता का रंग चढ़ा हुआ है। अगर आधुनिकता का रंग उसमें नहीं चढ़ेगा, और वो आधुनिकता कहाँ से आएगी? वो विज्ञान से आएगी।
0: विज्ञान से आएगी,
1: बिना उसके नहीं होगा। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ, मेरी पुस्तक है काल और ताल। तो काल और ताल का क्या है कि दिल्ली एनसीआर का लोक संगीत के ऊपर आधारित वो किताब है। तो उस काल और ताल में जो है लगभग 150 के करीब धुनों का और गीतों का संकलन है उसमें, यानी कि पैदा होने से लेकर और मृत्यु तक के गीत हैं।
0: यानी कि लोक कलाएं हैं, लोक गीत,
1: संस्कार हैं, गीत हैं, रीति रिवाज हैं, त्योहार हैं, सभी के जितने भी गीत हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि उसमें एक तरफ तो है गीत लिखा हुआ, ट्रांसक्रिप्शन है, गीत लिखे, दूसरी तरफ उसके सामने जो है पेज पर उसकी नोटेशन है।
0: दोनों साथ साथ चल रहे हैं।
1: तो उसकी सरगम साथ में लिखी है, कौन से राग के ऊपर आधारित है वो लिखा है। तो उसका क्या मतलब होता है कि तमिलनाडु में बैठा व्यक्ति अगर वो दिल्ली एनसीआर का लोक संगीत को जानना और बजाना चाहता है, नोटेशन उठाएगा और वो आपके यहाँ के उत्तर भारत की इसके गीत गाएगा, वो आसान हो जाता है उससे। तो ये ही नहीं, बल्कि मैं तो यूं कहता हूँ कि आपका कल को ग्रैंड चाइल्ड आता है और आपसे पूछता है वो आपके समय में कैसे गीत होते थे, तो मैं कहता हूँ हमारे उसमें ऐसा गीत होता था, वो

0: कहेंगे गाकर सुनाए, मैं पढ़ के तो सुना दूंगा, गा के नहीं सुना सकता हूं।
1: तो अगर वो साउथ इंडियंस अगर कोई सुनाना चाहता है, गाना चाहता है, वो अपनी भाषा में अपने शब्द लिख करके कह सकता है उस नोट पे,
0: उसी नोटेशन पे, तो वो संगीत, वो धुन तो रहेगी ना,
1: धुन तो रहेगी।
0: सो महत्वपूर्ण धुन है, महत्वपूर्ण गीत नहीं है। गीत तो जितने भी शब्द उसमें जोड़ते चले जाइएगा वो बनता चला जाए,
1: ये बड़ी बात, ये
0: धुन नहीं बनती है
1: जी। अनूप जी, हमारी लोक परंपराओं में कृषि, मौसम, पशुपालन, जल संरक्षण, मिट्टी संरक्षण और प्रकृति से जुड़े जो पारंपरिक ज्ञान जो मिलते हैं, क्या इस ज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने और उनका दस्तावेजीकरण करने की आवश्यकता है?
0: आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि हम ये काम कर रहे हैं। अभी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं चेयरपर्सन कल्चर काउंसिल, तो उस कल्चर काउंसिल के तहत जो है ये कर रहे हैं कि हमने जैसे 22 भाषाएं हो गई और फिर उसके साथ 4-5 जो उपभाषाएं भी कुछ जो है उनको मिलाकर वहां के जो इडियम्स हैं, जिन इडियम्स में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पास करने का, यानी कि वही कृषि के ज्ञान का है और चीजों का है, तकरीबन हमारा काम पूरा हो चुका है। और उसमें क्या है कर रहे हैं कि एक तरफ तो उस भाषा में, मान लो तमिल में है, उसका भाषा में वो इडियम होगा, उसके साथ उसका इंग्लिश में, रोमन उसमें लिखा होगा, साथ में उसका अर्थ हिंदी में लिखा होगा और उसका इंग्लिश में लिखा होगा।
1: अनूप जी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और अक्सर लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि ये सब जो आप दस्तावेजीकरण कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या लगता है आपको?
0: क्या होता है कि एक समय आता है, चाहे वो धुन है चाहे वो एक फैशन है, वो सामयिक होते हैं। इलीट जो है वो फैशन क्रिएट करता है और उसके बाद वो मिडिल क्लास कैस्ट्यूम पे उसी फैशन पर आता है और उसके बाद वो डाउन बिल्कुल नीचे के स्तर पे जो भी लोग हैं उन तक भी पहुंचता है और उसके बाद ऊपर के सर्कल के लोग छोड़ देते हैं। कुछ अरसे बाद वही बागड़ी या लोहारों की गाड़ियों में जाते हुए नीचे से हम फोटो खींच के हम उनके पहरावे का फिर से दोबारा से वो बनाते हैं, डिजाइन तैयार करते हैं और वो फिर से इलीट का वो हो जाता है। लेकिन धुन जो है इसी तरीके से धुन है, धुन है, सामयिक है, समाप्त हो गई, वहां पर अब उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है।
1: यानी कि लोग भूलने लगते हैं, याद दिलाने की आवश्यकता पड़ती है कि हमारी परंपराओं में, रीति रिवाजों में ये चलन था, ये परंपरा थी।
0: आज हो सकता है कि वो उसकी जरूरत नहीं रही क्योंकि हर रोज संगीत बदलता है, हर रोज गीत बदलते हैं।
1: लेकिन गीत और संगीत तो बदल तो जाते हैं, लेकिन वो जो मिठास जो पहले वाली है उसकी मिठास अलग होती है और आज की जो मिठास है वो उसकी अलग होती है,
0: तो उसको फिर से हम उसको सामयिक बना देते हैं दोबारा से। ये इसीलिए टेक्नोलॉजी, इसीलिए ये सारी चीजों की आवश्यकता है कि निरंतरता बनी रहनी चाहिए।
1: अनूप जी, आप हरियाणवी रीति रिवाजों से, लोकगीतों से काफी अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और उनका आपने जैसे कि अभी आपने बताया कि उनका संवर्धन कर रहे हैं, संरक्षण भी कर रहे हैं, तो लोकगीतों, रागिनियों, कहावतों और लोक कथाओं में प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित आपके कई अनुभव दिखाई देते हैं और आपको कई अनुभव है, इनमें छिपे ज्ञान को नई पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? क्या ये सिर्फ दस्तावेजीकरण से ही पहुंचाया जा सकता है या फिर और कोई माध्यम है?
0: तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं, प्रिजर्वेशन, प्रमोशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। पहले तो वैसे का वैसा रखा जाए। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मैंने एक प्रयास किया। कुछ चीजें होती जो है ये पैशन से और शौक से होती हैं, जिसे कहते हैं ना घर फूक तमाशा देख, है ना, आम भाषा में, सरल भाषा में कहते हैं। तो मुझे ऐसे ही शौक चढ़ाया और उस शौक में मैं पलवल, फरीदाबाद और इधर के इलाके में घूमने निकला, जैसे मेरी आदत थी, ये लगभग 35 साल पहले।
1: ये शौक के कारण?
0: शौक के कारण। तब वीडियो कैमरास और ये सब अभी आए तो थे लेकिन कॉस्टली बहुत थे, होते थे,
1: लोगों की पहुंच से थोड़ी बाहर,
0: पहुंच से बाहर होते थे। मैंने इस इलाके में ब्रज का जो ये बेल्ट है इसमें घूमना शुरू किया तो मैंने देखा वहां पर कुछ डांस फॉर्म्स, डांसेस हो रहे हैं गांव में, चौक पे, कहीं पे भी गीत, कहीं पे चौपाई हो रही है, खासकर होली के दौरान। तो वो जाकर मैंने किया, साल भर पहले देखा, फिर दूसरी बार लगा कि मुझे तो ये डॉक्यूमेंट करना चाहिए नहीं तो खत्म हो जाएगा। तो हमने वो कैमरा लेकर गए हायर, फिर उसको रिकॉर्ड किया, उसके बाद फोटो भी खींच लिए। सब कुछ करने के बाद अब समझ नहीं आया कि उसका क्या करें। तो कई साल तक वो ऐसे ही पड़ा रहा, यहाँ तक कि वो मेरा जो फॉर्मेट VHS था वो पॉल्यूट होने लगा, फिर हमने उसको CD में ट्रांसफर किया, फिर भी डाटा बहुत लॉस हो गया। और उसके बाद समझ आया मुझे कि इसको मैं 2012 में, वो 92 में मैंने रिकॉर्ड किए, और 2012 में जाकर समझ आया कि इसको मैं क्या उपयोग कर सकता।
1: अनूप जी, मुझे लगता है कि अगर हम इनको नहीं संजो कर रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को हम किस प्रकार का ज्ञान दे पाएंगे, उनको हम किस प्रकार बता पाएंगे कि हमारी पहले वाली पीढ़ी जो रीति रिवाज थे, जो परंपराएं थी, जो मान्यताएं थी, वो आज के आधुनिक दौर में वो गुम होते से नजर आएंगे और आज की पीढ़ी को वो समझ में नहीं आएगी और हमारी संस्कृति और हमारी लोक कलाएं, गाथाएं, रीति रिवाज, उसी के कारण तो पूरी दुनिया में भारत की पहचान बनती है। क्या आप मानते हैं ना?
0: बिल्कुल बनती है। और जो मैं आपको बता रहा था अभी,

0: कैसे हमने 12 साल बाद उसका हमें समझ में आया कि हम इसका क्या करें, तो हमने एक कार्यशाला लगाई जिसमें 90 के करीब स्टूडेंट्स अलग अलग जगह से इकट्ठे किए।
1: ये किसके क्षेत्र के थे?
0: ये ब्रज के इलाके का रसिया लोक नृत्य, गायकी में वो गाहे होते हैं और नृत्य में वो रसिया। तो अब वो जब हमने इकट्ठे 90 लोग करके डांस के कोचेस बुलाए, डांस के जो कोच कॉलेजेस में तैयार कराते हैं तो उनको बुला लिए, उनको साथ में पहले वो दिखाए वीडियो कि देखो ये डांस कैसे कर रहे हैं। खुद मैंने गांव में गया तो मैंने खुद सीखा हुआ था, तो हमने खड़े होकर मंच पे 90 लोगों को सिखाया कि ये स्टेप ऐसे चलते हैं, दायां पांव ऐसे चलता है, ऐसे इस तरीके के मूवमेंट्स होती हैं। और ये करने के बाद 90 लोगों की हमने कोरियोग्राफी तैयार कराकर ये उससे पहले कॉलेज में बता दिए सब जगह कि ये हम नया करने जा रहे हैं और अगले साल से इस विधा की प्रतियोगिता शुरू की जाएगी, इसलिए अपने अपने बच्चों को भेज दीजिएगा, हम उनकी टीम तैयार करा देंगे। तो उनको लालच भी हो गया, साथ में वो कोचेज जो है उनको ट्रेन किए, उसको डांस कर 90 लोगों का परफॉर्मेंस तैयार करके रसिया का हमने सीडी बना ली। सीडी बनाकर हर कॉलेज में उठाकर वो सीडी भेज दी, और वो सीडी वहां भेजने से क्या हुआ कि अगले साल जब प्रतियोगिता करी, लोगों ने वो सीडी देखकर प्लस वो जो कोचेस तैयार किए थे वो देखकर, वहां पर रसिया की आज प्रतियोगिता होती है, उत्तर प्रदेश में नहीं होती है लेकिन हरियाणा में रसिया की नृत्य की प्रतियोगिता होती है। और इसी को देखकर मेरे यूट्यूब चैनल को गुजरात में किसी ने लोक नृत्य रसिया तैयार करा, यही देखकर। तो ये साइंटिफिक जो हम कहते हैं ना, ये विधाएं जो वैज्ञानिक सोच जो है वो वैज्ञानिक होना जरूरी है, मतलब उपकरण नहीं, वैज्ञानिक सोच होना जरूरी है। उस वैज्ञानिक सोच को आप देखकर क्या से क्या उसमें ट्रांसलेट कर लेते हैं, ये एक उपलब्धि।
1: अनुप जी, पारंपरिक ज्ञान और वैज्ञानिक प्रमाण में तो अंतर होता ही है, और किसी लोक मान्यता या परंपरागत ज्ञान को वैज्ञानिक रूप से स्वीकार करने में किन किन बातों की परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है, और ये सब जो आप प्रिजर्व करते हैं उनको सत्यापित किस प्रकार करते हैं? जैसे कि अभी आपने बताया कि उनको प्रिजर्व किया था और उसके बाद आपने उस क्षेत्र के लोगों को बुलाया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
0: 10 साल इसमें गुजर गए तो वहां जाकर देखा कि वहीं ये लोक नृत्य नहीं हो रहा है, कहां तो वो 10 साल पहले रात के अंधेरे में जाकर हमने शूट किए और हमें मिल गया, और तब हमारे पास कोई सेंक्शन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, जेब से पैसे खर्च करके और जाकर वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। कब क्या जरूरत पड़ जाए और कब क्या महत्वपूर्ण हो जाए, तो मैं युवाओं को इस दिशा में जरूर कहूंगा कि जब भी मौका लग जाए ये मत सोचो कि ये तुम्हारी जरूरत नहीं है, आगे जाने वाले समय में उसकी आवश्यकता भी हो सकती है और उसके महत्व भी तभी जाकर
1: वैल्यू भी तभी
0: पता लगता है।
1: अनुप जी, आज तो डिजिटल एआई का युग है, एआई ऑडियो विजुअल का युग है, और रिकॉर्डिंग जो आर्काइव्स है वो भी बहुत, आप एक सर्च करते हैं, नेट में जाकर सर्च करते हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है। तो आपको क्या लगता है कि इनको प्रिजर्व करने के लिए या फिर कहीं से रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा सबसे बड़ा प्रभावी माध्यम लगता है?
0: देखिए, सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि जो जीवंत चीज है तो उसको जीवंत से ही उसको प्रिजर्व किया जाए।
1: यानी कि आप थोड़ी सी एआई को थोड़ा सा साइड करना चाहते हैं
0: पहले क्षण में, तो यही है कि वो विधा जैसी है वैसी की वैसी फिर से खड़ी कर ली,
1: यानी कि ओरिजिनलिटी तो ओरिजिनलिटी है।
0: उसके बाद जब वो ओरिजिनल हमने कर लिया उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन की आवश्यकता है, फिर उसके बाद हम उसमें एक्सपेरिमेंटेशन करें। मैंने सांग है, गीत है, जो भी है, जब तक उसमें हम एक परिवर्तन नहीं लाएंगे, हम उसको पॉप भी साथ में, वो जो फोक, तो जो युवा है उसको तो हर रोज नया कुछ चाहिए ना।
1: फ्यूजन की बात कुछ कुछ हो सकती है,
0: फ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि युवा को तो एक ही चीज में कैसे बांध के रखते, युवा क्या हमें भी नहीं बांध के रख सकते, हम भी तो फैशन की तरह कपड़े बदलते हैं, हम भी तो पहनावे बदलते रहते हैं, घर का रहने का 10 साल में चीज पुरानी लगने लगती है, हम फिर से बदल लेते हैं उसको अपने लिए सुखदायी बनाने के लिए। तो चाहे संस्कृति है, कल्चर है, इन सब में भी जब तक ये सब विधाएं, साथ में हम अपनी टेक्नोलॉजी, हम अपना ये सब चीजों का सदुपयोग नहीं करेंगे तब तक वो सामयिक नहीं रहेंगे।
1: अनुप जी, क्या लोक संस्कृति को आधुनिक मंच और तकनीक से जोड़ते समय उसकी मौलिकता जो आपने रिकॉर्ड किया है, जैसे कि पहले हम बात कर चुके हैं कि एआई का दौर है, और चूंकि आपने ये भी कहा कि उसमें थोड़ी सी आधुनिकता तो होनी चाहिए और उसका उपयोग सही उपयोग होना चाहिए, तो ये सांस्कृतिक आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए भी सावधानियां जरूरी है, ये भी तो है, क्योंकि अगर हम मौलिकता खत्म कर दिए तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि ये पहले कहां से था, किस माध्यम से, किस क्षेत्र से, किन लोगों के जरिए, किस समुदाय के जरिए आया था।
0: देखिए, मौलिकता अगर नहीं होगी ना तो वो आपको खुशबू देगी ही नहीं, सिर्फ एआई से काम नहीं चलेगा, नहीं चलता है। मैंने अभी एक फिल्म देखी जो सिर्फ एआई बेस्ड है, उसमें कोई भी एक्टर्स भी और कोई भी किसी तरीके के बिल्डिंग स्ट्रक्चर एनिमल व्हाटएवर जो उसमें डिस्प्ले पे है वो ओरिजिनल नहीं है, एआई बेस्ड है, लेकिन वो एआई बेस्ड देखकर उसमें जान नहीं लगती, थ्रिल आ जाता है, एक्शन आ जाता है, रोमांस रोमांच आ जाता है।

0: लेकिन वो जान नहीं आती है, वो जान तभी आती है जब उसमें ओरिजिनल जीवंत एलिमेंट होते हैं।
1: तो किसी भी परंपरागत ज्ञान को, रीति रिवाजों को और वैज्ञानिक रूप से दस्तावेज के रूप में लाने के लिए इसमें क्या क्या किया जाता है, इसमें किस प्रकार की सावधानियां रखनी पड़ती हैं?
0: सबसे पहला तो है कि साइंटिफिक हो, दूसरा रेलेवेंट हो, दूसरा सोसाइटी के लिए यूजफुल हो, रेट्रो नहीं हो, सोच बदलनी है, वो सोच प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। एक समय में हम स्त्रियों के लिए, युवतियों के लिए हम दूसरी सोच रखते थे और आज दूसरी सोच।
1: अनुप जी, इसमें स्थानीय समुदाय जो शोधकर्ता है, वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक संस्थानों की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए?
0: सभी संस्थानों को अपना अपना कंट्रीब्यूट जो भी संसाधनों के द्वारा कर सकता है ताकि एक नई सोच क्रिएट हो और समाज के लिए सदुपयोगी हो, समरसता की हो, समाज में एक बराबरी का हो, किसी के साथ जिसे भेदभाव ना हो, ऐसा हमारा समाज हो, ऐसी साइंटिफिक सोच हमारी आपस में होनी चाहिए।
1: अब जो युवाओं को लोक संस्कृति, पारंपरिक ज्ञानों और ये जो रीति रिवाज है उनको जोड़ने के लिए और करीब से और अच्छी तरह से जोड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए, युवाओं में किस प्रकार से रुचि बढ़ाई जा सकती है?
0: बच्चों के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए कि वो ट्रेवल करें, वो सिर्फ अपने गाँव या अपने शहर में ना रहकर बल्कि हम जहाँ तक हो सकता हो परिवार में या हम अपने शहर में बाहर उनको घूमने के लिए मौके दें। जितना हम उनको बाहर का संसार दिखाएंगे वो उतने विशाल हृदय के होंगे और उतने ही खुली सोच के होंगे, वो समाज के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए उतने ज्यादा उपयोगी होंगे।
1: तो निश्चित रूप से हमारी ये जो परंपरा है, हमारी ये जो ज्ञान है, हमारी ये जो रीति रिवाज है, संस्कृति है, गीत गोविंद है, गीत संगीत है, वो और अधिक संरक्षित रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंच पाएगी। अनुप लाठर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतना वक्त निकाला और हमारी लोक संस्कृति परंपराओं के दस्तावेजीकरण के विषय में आपने ढेर सारी जानकारियां दी, बातचीत की, हमसे अपने विचार साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।

स्पर्श किया जाएगा नए थिएटर का अपना नयापन और हबीब तनवीर। दिन में 12 बजे खबरें नष्ट होंगी, 12 बजकर 10 मिनट से आप सुन सकते हैं प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। दौरान ये प्रोग्राम 12 बजकर 30 मिनट पर तारीख साज प्रोग्राम होगा। 12 बजकर 45 मिनट पर आप सुनेंगे प्रोग्राम सुर्खियों में। आलमी खबरों का वक्त होगा दिन में 1 बजे और 1 बजकर 15 मिनट पर आज की पहली मजलिस खत्म हो जाएगी। यदि एक नजर इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर।

0: उपग्रह ही प्रोग्राम के तहत अभी अपने पंडित कुमार गंधर्व से ये भजन सुना। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेशी खिदमत है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: और आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, अब बात करते हैं इतिहास के पन्नों में दर्ज 1 सितंबर की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। सन 1947 में आज ही के दिन भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को अपनाया गया, जिसने पूरे देश को एक समान समय व्यवस्था से जोड़ा। वहीं सन 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना हुई, जो आगे चलकर देश की सबसे बड़ी कम बीमा कंपनी के रूप में उभरी। और 1962 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो आज भी उच्च शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। वहीं सन 1964 में इंडियन ऑयल रिफाइनरी और इंडियन ऑयल कंपनी के विलय से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का गठन हुआ, जो आज देश की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनियों में गिनी जाती है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तारीख का अपना महत्व रहा है। सन 1994 में उत्तरी आयरलैंड में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने युद्ध विराम लागू किया, जिसे शांति की दिशा में एक अहम कदम माना गया। और 1997 में आज ही के दिन साहित्यकार महाश्वेता देवी और पर्यावरणविद MC मेहता को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं उन व्यक्तित्वों का स्मरण करते हैं शकुन, जिनकी आज पुण्यतिथि जयंती या जन्मदिन है।
2: दिस इज व्हाट वी ऑल बीन वेटिंग फॉर।
1: जी, शुरू करते हैं डॉक्टर मकरंद मेहता से। इतिहास सिर्फ राजाओं, योद्धाओं और सत्ता के बदलावों की कहानी नहीं है, इतिहास उन लोगों की कहानी भी है जिन्होंने समाज, व्यापार और शहरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी व्यापक दृष्टि के साथ इतिहास को देखने और समझने वाले प्रख्यात इतिहासकार थे डॉक्टर मकरंद मेहता। आज उनकी पुण्यतिथि है। डॉक्टर मकरंद मेहता ने विशेष रूप से गुजरात के सामाजिक, आर्थिक और व्यापारिक इतिहास पर महत्वपूर्ण शोध किया। उन्होंने अपने अध्ययन के जरिए इतिहास के उन पहलुओं को भी सामने लाया जिन पर अक्सर कम चर्चा होती है, जैसे व्यापारियों का योगदान, कपड़ा उद्योग का विकास, विदेशों में बसे गुजरातियों का इतिहास और समाज के अलग अलग वर्गों की भूमिका। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कुछ ऐसे युवा क्रांतिकारी भी हुए जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया। जीवन घोषाल, जिन्हें माखनलाल के नाम से भी जाना जाता था, ऐसे ही जाबाज क्रांतिकारी थे। वे मास्टरदास सूर्यसेन के नेतृत्व में चल रहे चटगांव के सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे और चटगांव शस्त्रागार कांड में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। इस घटना के बाद वे अंग्रेजी पुलिस से बचते हुए भूमिगत हो गए और चंद्रगनगरम में रह रहे थे, लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियों की भनक अंग्रेजी पुलिस को लग गई। 1 सितंबर 1930 को पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट के नेतृत्व में उनके ठिकाने पर छापा मारा गया। पुलिस और क्रांतिकारियों के बीच हुई मुठभेड़ में जीवन घोषाल शहीद हो गए। उनकी उम्र उस समय महज 18 वर्ष थी। इतनी कम उम्र में देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जीवन घोषाल का नाम आज भी स्वतंत्रता संग्राम के वीर क्रांतिकारियों में सम्मान के साथ लिया जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट गायन शैली के लिए पहचाने जाने वाले तारापद चक्रवर्ती की भी आज पुण्यतिथि है। ख्याल और ठुमरी के साथ रागों की गहरी और विस्तारपूर्ण प्रस्तुति उनकी विशेष पहचान थी। वे कोटाली घराना के प्रमुख कलाकार और प्रवर्तक माने जाते हैं। उनकी कला की खास बात थी 48 मात्राओं के विलंबित प्रारूप में राग प्रस्तुत करना, जो बेहद कठिन माना जाता है। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलो

फेलोशिप से सम्मानित किया गया। संगीत के साथ उनका रिश्ता आकाशवाणी से भी जुड़ा रहा। 1930 के दशक में उन्होंने कलकत्ता रेडियो केंद्र में एक संगीतकार के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर अपनी गायकी से अलग पहचान बनाई। तारापद चक्रवर्ती को श्रद्धांजलि देते हुए अब सुनिए उनकी आवाज में खूबसूरत प्रस्तुति।

0: कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो। इन पंक्तियों में बदलाव की जो बेचैनी और व्यवस्था को चुनौती देने की साहस दिखाई देती है, वही दुष्यंत कुमार की रचनाओं की पहचान थी। आज ही के दिन 1933 को जन्मे दुष्यंत कुमार हिंदी के लोकप्रिय कवि और गजलकार थे। आगे बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य में अपनी बेबाक भाषा और समाज की सच्चाइयों को गहराई से सामने रखने वाले राही मासूम रजा का जन्म आज ही के दिन 1927 को हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार और पटकथा लेखक के रूप में समान रूप से प्रसिद्ध रहे। आधा गांव और टोपी शुक्ला उनके चर्चित उपन्यास है, जिनमें भारतीय समाज, रिश्तों और बदलते समय की तस्वीर साफ दिखाई देती है। उनके प्रभावशाली संवाद लेखन के लिए उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
1: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
2: शगुफ्ता यास्मीन से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज किर्गिज़िस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम एससीओ की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। मौजूदा माली साल की पहली सहमाही के दौरान मुल्क की जीडीपी की शरह तरक्की 7.8% रही, जबकि रिजर्व बैंक ने इसके 7% रहने का अंदाजा लगाया था। अमरीका ने भारत को एक वलवला अंगेज, मजबूत और मुस्तहकम मईशत वाला मुल्क करार दिया है। भारत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुहदे के बारे में सालिसी से मुतालिक अदालत के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। नेपाल में इमदादी कारकुनों ने पनबिजली प्रोजेक्टों पर काम करने वाले कारकुनों को तलाश करने के लिए पहाड़ी हिस्से पर धमाका किया। और लियोनेल मेसी ने फुटबॉल से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इस तरह अर्जेंटीना की कौमी टीम के साथ 21 साल से जारी सफर भी खत्म हो गया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज किर्गिज़िस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम एससीओ की 26वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। एससीओ की इस सरबराह कॉन्फ्रेंस का मरकजी मौजू है पायदार अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए एक साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किर्गिज़िस्तान के अपने दो रोजा दौरे के पहले दिन कल रूस, ईरान, जमहूरिया किर्गिज और आर्मेनिया के रहनुमाओं के साथ दोतरफा मीटिंगें की। इन मीटिंगों में दोतरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कल शाम बिश्केक में दीगर एससीओ रुकन ममालिक के रहनुमाओं के साथ 6वें वर्ल्ड नोमैड गेम्स की बाज़ाब्ता इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत की। मौजूदा माली साल की पहली सहमाही के दौरान भारत की हकीकी जीडीपी की शरह तरक्की 7.8% रही, जबकि साबिका साल की इसी मुद्दत में यह 6.9% थी। आदादोशुमार और प्रोग्रामों पर अमल दरामद से मुतालिक वजारत ने मौजूदा माली साल की अप्रैल से लेकर जून तक की पहली सहमाही के लिए जीडीपी के तखमीने जारी किए हैं। उसने कहा है कि आलमी उतार चढ़ाव के बावजूद भारतीय मईशत में तरक्की की रफ्तार बढ़ रही है। वजारत के सेक्रेटरी डॉ सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी शोबों में शरह तरक्की बहुत मुस्बत रही, जिससे यह जाहिर होता है कि जोग्राफियाई और सियासी हालात के बावजूद सरकार के इकदाम का असर हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत की जीडीपी की शरह तरक्की 7.8% रहने को एक बड़ा कारनामा करार दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस कामयाबी से तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, सप्लाई निजाम में रुकावटों और आलमी गैर यकीनी के हालात के बावजूद मुल्क के अवाम की इज्तिमाई कुव्वत और उनके अज़्म की अक्कासी होती है। इधर वजीर खजाना निर्मला सीतारमन और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मईशत की इस शानदार कारकर्दगी का सेहरा मुल्क के अवाम और उनकी मेहनत को जाता है।

0: और अपनी सेहत खराब करते हैं। नशे की आदत अपने लिए, अपने खानदान के लिए और मुल्क के लिए, सबके लिए मोहलिक और जानलेवा है। काश लोगों को ये बात समझ में आ जाती, जान है तो जहान है।
1: अभी आप सुन रहे थे अकवाले ज़रीन का प्रोग्राम शम्मे फरोजा। आज का मौजू था जान है तो जहान है। तहरीर जनाब कौसर मजहरी की थी और रावी थे एसएम नुमान। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। पेश है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम हुस्ने गजल। शोभना राव की आवाज में पहले समाप्त फरमाइए मीर तकी मीर और शकील बदायूनी का कलाम। बाद अज़ां आप सुनेंगे चंदन दास से साहिर भोपाली और अमीर कजलबाश का कलाम।

अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है। इस राज्य को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीवन और सांस्कृतिक विविधता इसे एक अनोखी पहचान देती है। अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति में विभिन्न जनजातियों की परंपराएं, रीति रिवाज और कला शामिल हैं, जो इसे और भी

अरुणाचल प्रदेश में मुख्यतः 26 जनजातियां और 100 से ज्यादा उप जनजातियां निवास करती हैं। यहां की प्रमुख जनजातियों में म्याशी, अवतानी, मिश्मी, गालो आदि और मोनपा शामिल हैं। हर जनजाति के अपने अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग परंपराएं हैं। जनजाति लोग अपनी संस्कृति को बहुत महत्व देते हैं और इसे अगली पीढ़ियों तक सहेज कर रखने का प्रयास करते हैं। इन जनजातियों की जीवन शैली मुख्यतः प्रकृति पर आधारित होती है और

अपना विशिष्ट नृत्य है जो आमतौर पर धार्मिक अनुष्ठानों, उत्सवों और विशेष अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है। मुघन और पोपिर जैसे नृत्य अवतानी जनजाति के बहुत प्रसिद्ध नृत्य हैं। याक नृत्य मोनपा जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है। इसमें लोग याक के वेश में नृत्य करते हैं। ये नृत्य न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि धार्मिक विश्वासों का भी प्रतीक है। अरुणाचल प्रदेश के कलाकार पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र जैसे ढोल, डपांग, जंग और पिन पाइप का ऐसे अवसरों पर प्रदर्शन करते हैं जिससे उनके नृत्यों की प्रस्तुति और भी जीवंत हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश की हस्तकला और शिल्पकला भी यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर का एक अहम हिस्सा है। यहाँ के लोग बांस, लकड़ी और बेंत का उपयोग कर विभिन्न वस्तुएं बनाते हैं। इनमें टोकरियां, चटाई, टोपी और सजावट के सामान शामिल हैं। मोनपा जनजाति की काष्ठ कला बहुत प्रसिद्ध है। इसमें वे लकड़ी पर सुंदर नक्काशी करते हैं। इसके अलावा मिश्मी जनजाति के बनाए हुए पारंपरिक आभूषण और वस्त्रों की भी अपनी पहचान है। इनके कपड़ों में प्रमुख रूप से हाथ के बनाए हुए डिजाइन शामिल होते हैं जिन पर रंग बिरंगे डिजाइन और पैटर्न बनाए जाते हैं। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और ये एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ भी है। इसे 17वीं शताब्दी में बनाया गया था और ये मठ लामा मठों की परंपरा का हिस्सा है। यहाँ हर साल कई बौद्ध कार्यक्रम होते हैं जिनमें न केवल स्थानीय लोग बल्कि कई पर्यटक भी भाग लेते हैं। ये मठ अरुणाचल प्रदेश की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है।

0: अगर उत्सव और त्योहारों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं जो यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाते हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध त्योहार लोसार है जो बौद्ध नववर्ष का प्रतीक है। मोनपा और शेरदुकपेन जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाला ये त्योहार एक सप्ताह तक चलता है जिसमें लोग प्रार्थना करते हैं, नृत्य करते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। इसके अलावा मोयोकुम मोपिन और सोलुंग जैसे त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में कृषि और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट किया जाता है क्योंकि कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। इस राज्य का पहनावा और आभूषण यहाँ की संस्कृति की खास पहचान है। हर जनजाति का अपना अलग पहनावा है जो उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं और धार्मिक मान्यताओं को दर्शाता है। मोनपा जनजाति की महिलाएं शामा नामक एक विशेष परिधान पहनती हैं। अवतानी जनजाति की महिलाएं अपने नाक में एक विशेष प्रकार का आभूषण पहनती हैं जो उनकी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। इसी तरह से यहाँ की विभिन्न जनजातियों की परंपराएं, नृत्य कला और धार्मिक मान्यताएं इस राज्य को भारत के सांस्कृतिक मानचित्र पर विशेष स्थान देती है।
1: चलते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में हमने बीते दिनों आपको बहुत सी ऐसी कहानियां सुनवाई जिसमें स्वयं सहायता समूह और महिलाएं उद्यमिता के नए अध्याय लिख रही हैं। और ऐसा ही एक कार्यक्रम, ऐसी ही एक कार्यशाला अभी हाल ही में त्रिपुरा में आयोजित हुई है जो स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन देने और किस तरह से महिलाएं उद्यमिता से क्षेत्र में आजीविका के अवसरों को पैदा कर सकती हैं, इस सिलसिले में ये कार्यशाला बड़ी महत्वपूर्ण थी। तो आइए हमारे संवाददाता सुमन भट्टाचार्य जी की ये खास रिपोर्ट सुनते हैं जिसमें उन्होंने त्रिपुरा में लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूहों से महिलाओं के आर्थिक उत्थान पर ये रिपोर्ट भेजी है।

0: करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ग्रामीण महिलाओं के इन प्रयासों को मजबूत करने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से गोमती जिले के माताबाड़ी ब्लॉक में विभिन्न पंचायतों के स्वयं सहायता समूहों के लिए एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में अलग अलग स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं एक मंच पर एकत्र हुई। उन्होंने अपने समूह द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित किया और समूह की ओर से किए जा रहे अलग अलग कार्यों के बारे में जानकारी दी। उत्पाद बनाने से लेकर उनकी बिक्री और बाजार तक पहुंच बनाने के बारे में भी महिलाओं को जानकारी दी गई। कार्यशाला ने प्रतिभागियों को एक दूसरे से सीखने, अपने अनुभव साझा करने और अपनी आय बढ़ाने के नए अवसर तलाशने का मौका दिया। TRML के जिला समन्वयक ने कहा कि इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के कौशल को बढ़ाना, उनकी आजीविका को बेहतर बनाना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
1: PRI बॉडी के साथ हमारा सीएलए के अंदर जो पंचायत है, उन पंचायत में क्या क्या अभी तक काम हुआ है वो सब डिटेल LRP दीदी के द्वारा, मतलब लोकल रिसोर्स पर्सन दीदी लोगों के द्वारा सभी के सामने उपस्थापन किया है। तो इस वर्कशॉप में ब्लॉक का BDO, पंचायत समिति का चेयरपर्सन, सभी पंचायतों का प्रधान, अंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर सभी मौजूद था। तो हमारा ये प्रोग्राम काफी सफल रहा है।
0: कार्यशाला में शामिल कई महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह नए हुनर सीखने और आय के अवसर पैदा करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुके हैं। कार्यशाला में महिलाओं को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और उन पर लोगों की राय जानने का अवसर मिला। इससे उन्हें ये समझने में भी मदद मिली कि अपने उत्पादों की गुणवत्ता और उन्हें प्रस्तुत करने के तरीके को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। इस कार्यक्रम में अलग अलग स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक दूसरे से बातचीत करने, नए विचार साझा करने और अपने अनुभवों से सीखने का अवसर भी दिया।
2: हमारा मेन काम यही है, गांव का हर महिला आत्मनिर्भर हो, हर एक महिला के पास अपना खुद का बिजनेस हो, ताकि गांव में कोई गरीब न रहे। कुछ दिन पहले हमारे CLF में PRI बॉडी के साथ एक वर्कशॉप किया है। इसमें LRP मतलब लोकल रिसोर्स पर्सन द्वारा हर पंचायत का अंदर क्या क्या विकास हुआ था वो सबके सामने पेश किया गया।
0: ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता की शुरुआत अक्सर एक छोटे से अवसर से होती है। एक हुनर, एक उत्पाद, एक स्वयं सहायता समूह और आगे बढ़ने का आत्मविश्वास, ऐसी कार्यशालाएं महिलाओं को एक साथ लाकर और उनके हुनर को प्रशिक्षण, सरकारी सहायता और बाजार से जोड़कर नए अवसर पैदा करने में मदद कर सकती है। कार्यशाला में ये संदेश भी सामने आया कि सही सहयोग और बाजार उपलब्ध होने पर ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद उनकी स्थायी आजीविका का साधन बन सकते हैं। कार्यशाला में महिलाओं का उत्साह और उनकी सक्रिय भागीदारी आगे बढ़ने के उनके संकल्प को दर्शाती है। इन महिलाओं के लिए कार्यशाला में प्रदर्शित हर उत्पाद सिर्फ बिक्री की एक वस्तु नहीं है, ये उनके हुनर, मेहनत, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनने की उनकी कोशिश का प्रतीक है। माताबाड़ी में आयोजित ये कार्यशाला ग्रामीण महिलाओं को अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कौशल को बढ़ावा देकर महिलाओं को अपना काम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करके और उन्हें नए अवसरों से जोड़कर ऐसी पहले छोटे स्तर पर किए जा रहे प्रयासों को स्थायी आजीविका में बदलने में मदद कर सकती है। क्योंकि जब ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं तो इसका लाभ केवल उन्हें ही नहीं मिलता, इससे परिवार मजबूत होते हैं और पूरे समुदाय का विकास होता है। सशक्त महिलाएं, मजबूत परिवार और आत्मनिर्भर समुदाय। पूर्वोत्तर डायरी के लिए सुमन भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी अगरतला, श्याम सुंदर दत्ता के साथ गोमती जिले से वैष्णवी।

अवसर पैदा कर सकता है। एक अवसर आय का साधन बन सकता है और अपनी आय एक महिला को आत्मनिर्भर बनने का आत्मविश्वास देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अपने हुनर, रचनात्मकता और मिलजुल कर किए गए प्रयासों से बेहतर आजीविका और अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बना

0: श्रोताओं, अब कैलाश मानसरोवर यात्रा पर एक खास रिपोर्ट सुनते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा दुनिया की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक है। पवित्र यात्रा होने के साथ साथ ये एक चुनौतीपूर्ण यात्रा भी होती है, क्योंकि पर्वतों की दुर्गम चोटियों से यात्रा होकर गुजरती है और तिब्बत में मानसरोवर झील तक ये यात्रा होती है। और इस यात्रा का महत्व इसलिए है कि भगवान शिव का जो मानसरोवर और कैलाश पर्वत स्थान माना जाता है हिंदू धर्म में, वो बहुत पवित्र स्थान है और इसी के दर्शन के लिए यात्री इस यात्रा को करते हैं। और साथ ही अन्य धर्मों जैसे बौद्ध और जैन धर्मों में भी इस यात्रा की पवित्रता की मान्यता है और इस यात्रा में यात्री अपने शारीरिक और मानसिक शक्ति के साथ इस यात्रा को पूरा करते हैं। तो आइए हम एक विस्तृत रिपोर्ट इस संबंध में आपको सुनाते हैं।
1: सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने रविवार को गांतोक में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के नथुला मार्ग से सफल समापन के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान यात्रा को सफल बनाने में योगदान देने वाले अधिकारियों, सपोर्ट स्टाफ और अन्य संबंधित लोगों के प्रयासों की सराहना की गई। मीडिया से बातचीत में एसटीडीसी के चेयरमैन लुकेंद्र रसाईली ने सभी श्रद्धालुओं को सफलतापूर्वक यात्रा पूरी करने पर बधाई दी और यात्रा को सुचारू बनाने में जुटी पूरी टीम की सराहना की। रसाईली ने कहा कि श्रद्धालुओं से मिले फीडबैक और सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और भविष्य में यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
2: चेयरमैन बहुत खुश हैं क्योंकि इतना सक्सेसफुल हुआ, फीडबैक बहुत अच्छा मिला है। क्योंकि जितना भी यात्री हमने सब 10 बैच को ही हमने फेलिसिट करने के लिए इधर आए थे। सिर्फ फेलिसिट नहीं था लेकिन उनको फीडबैक भी चाहिए था कि सो दैट वी कैन इम्प्रूव नेक्स्ट ईयर के लिए, और बहुत अच्छा हुआ है। और दूसरा बात क्या है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा एक इतना इम्पोर्टेंट यात्रा है क्योंकि जितना भी इंडिया में पॉपुलेशन है 140 बिलियन में the Hindus or the Buddhists or the Sikhs, we all want to go to Kailas to worship Shivaji. So, iska impact tourism mein kya hota hai ki Sikkim ka tourism mein iska bahut acha impact hoga, positive impact hoga, kyunki jitna bhi yatri aa raha hai idhar se ja raha hai Nathula se, un log bahut media mein publicity bhi hua hai aur bhavya roop mein hum log inauguration kiya और आज भी बहुत अच्छी तरह से हम लोग को कैबिनेट हो गया है। और उसके बाद क्या होता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हिसाब से सिक्किम को इतना बहुत सपोर्ट कर रहा है, बहुत पब्लिसिटी कर रहा है कि सिक्किम विजिट के लिए ऑर्गेनिक स्टेट है, पीपल ऑफ सिक्किम अच्छा है।
1: उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में नथुला के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए व्यवस्थाओं और सुविधाओं को लगातार मजबूत किया जाएगा। एसटीडीसी के प्रिंसिपल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गिरमी यूशल ने बताया कि इस वर्ष कुल 10 बैच में 464 श्रद्धालुओं ने यात्रा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि यात्रा 12 जून से शुरू हुई थी और पूरे आयोजन की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर आभार व्यक्त किया।
3: कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 10th बैच द लास्ट बैच हैज अराइव्ड इन यात्रा टुडे फ्रॉम चाइना बाय नथुला एंड दिस यात्रा स्टार्टेड फ्रॉम 15th June 2026 and concluded today. And in the course of the yatra, 10 batches were sent, and out of that, total of 464 yatris participated. And SCDC provided all the hospitality and other services. And we are happy to say that the yatras have gone off comfortably and without any mishap.
1: गिरमी यूशल ने यात्रा को सफल बनाने में एसटीडीसी की टीम और सपोर्ट स्टाफ के प्रयासों को भी रेखांकित किया। वहीं लाइजन अधिकारी नितेश कुमार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने में सहयोग के लिए एसटीडीसी टीम और सिक्किम सरकार का आभार जताया। यात्रा की सफलता ने श्रद्धालुओं के साथ साथ इसे सुचारू रूप से संपन्न कराने में जुटे अधिकारियों और सहयोगी टीम के समन्वित प्रयासों को भी रेखांकित किया। आकाशवाणी समाचार गांतोक से मैनक चटर्जी के साथ मैं दिलराम दुलाल।

पूर्वोत्तर हिस्सा वो हिस्सा है जहाँ पर जनजातियां बहुतायत में हैं और इन जनजातियों की बहुलता ही यहाँ की संस्कृति की एक बहुत बड़ी विशेषता है। और पूर्वोत्तर भारत के ये 8 राज्य विभिन्न जनजातियों का जो संगम प्रस्तुत करते हैं वही इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। तो आज हम विशेष रिपोर्ट सुनवा रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों में कौन कौन सी खास जनजातियां बसती हैं, वहाँ की इन जनजातियों की क्या परंपराएं हैं, क्या रीति रिवाज हैं और उनका रहन सहन कैसा है और किस तरह से इन जनजातियों का भारतीय संस्कृति में महत्व है। साथ ही हम इस रिपोर्ट में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन जनजातियों के उत्थान के लिए, जनजातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए और इनकी विविधतापूर्ण संस्कृति का संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम में ये खास रिपोर्ट सुनते हैं।

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातीय विविधता पूरे देश में अपनी अनूठी संस्कृति, परंपराओं और भाषाओं के कारण विशेष स्थान रखती है। ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम जैसे 8 राज्यों से मिलकर बना है। यहाँ 200 से अधिक जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनकी अपनी अलग पहचान, रीति रिवाज और लोक कथाएं हैं। ये क्षेत्र अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, जीवंत उत्सवों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत की भौगोलिक संरचना इसे और भी विशेष बनाती है। यहाँ घने जंगल, ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियाँ और नदियाँ हैं, जो इन जनजातियों की जीवन शैली को प्रभावित करती हैं। अधिकतर जनजातियाँ पहाड़ी और जंगलों से जुड़े इलाकों में रहती हैं, जहाँ उनकी परंपरागत जीवन शैली कृषि, बागवानी, पशुपालन और शिकार पर निर्भर करती है। इन जनजातियों का इतिहास सदियों पुराना है और उनके सामाजिक ताने बाने में प्रकृति का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। अरुणाचल प्रदेश में अनेक जनजातियां रहती हैं, जिनमें आदि, मेशी, अपतानी, टैगिन, मोनपा, वांचो और मिसमी प्रमुख हैं। अपतानी समुदाय अपनी अनूठी कृषि प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें बिना बैलों के खेतों में धान की खेती की जाती है। मोनपा समुदाय का संबंध तिब्बती संस्कृति से है और इनका मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है। इसी तरह वांचो और टैगिन जनजातियाँ अपने पारंपरिक वस्त्र, आभूषण और लोक कथाओं के लिए जानी जाती हैं।

असम की जनजातीय संरचना भी अत्यंत विविधतापूर्ण है। यहाँ बोडो, मिसिंग, देवरी, कार्बी, तिवा और सोनवाल, कछारी जैसी प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं। बोडो समुदाय असम के सबसे बड़े जनजातीय समूहों में से एक है और इनकी भाषा, नृत्य और संगीत इन्हें अलग पहचान दिलाते हैं। मिसिंग जनजाति ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अपनी विशिष्ट संस्कृति के साथ बसती है, जहां उनके बांस के बने मकान और परंपरागत हथकरघा उद्योग प्रसिद्ध हैं। मेघालय में खासी, गारो और जयंतिया समुदायों की परंपराएं विशेष रूप से ध्यान खींचती हैं। खासी जनजाति मात्र सत्तात्मक व्यवस्था का पालन करती है, जहां संपत्ति और वंश परंपरा मातृपक्ष से चलती है। खासी समाज में महिलाएं पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गारो जनजाति अपने अनूठे पारंपरिक पहनावे, संगीत और लोक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। जयंतिया समुदाय खनन और कृषि से जुड़े हैं और इनकी सामाजिक व्यवस्थाएं भी मात्र सत्तात्मक स्वरूप।

मणिपुर में रहने वाली प्रमुख जनजातियां हैं मैटी, नागा और कुकी। मैटी समुदाय की सांस्कृतिक परंपराएं, नृत्य और संगीत देश भर में लोकप्रिय है। ये समुदाय अपनी विशिष्ट मार्शल आर्ट थांगता और पारंपरिक नृत्य रासलीला के लिए प्रसिद्ध है। नागा और कुकी जनजातियां पहाड़ी इलाकों में निवास करती हैं और इनका मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन और हथकरघा उद्योग है।

मिजोरम की जनजातीय संरचना भी अद्वितीय है। यहाँ लुशी, राल्ते, हमार, पाइते और पाविस जैसे समुदाय निवास करते हैं। लुशी समुदाय इस राज्य की प्रमुख जनजाति है जो यहाँ की राजनीति, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन जनजातियों की पारंपरिक पोशाकें, संगीत और नृत्य बेहद प्रसिद्ध हैं।

नागालैंड में नागा समुदाय की कई उपजातियां हैं, जिनमें अंगामी, एओ, सीमा, चांग, फोम और जेलियांग प्रमुख हैं। नागा जनजातियां अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए जानी जाती हैं। इनका पारंपरिक आभूषण और पोशाक इन्हें अलग पहचान दिलाते हैं। यहाँ के हॉर्नबिल महोत्सव में नागा जनजातियों की रंग बिरंगी परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक पहुँचते हैं। त्रिपुरा में त्रिपुरी, रियांग, चकमा और हलम समुदाय रहते हैं। त्रिपुरी समुदाय इस राज्य की प्रमुख जनजाति है, जिनकी सांस्कृतिक पहचान उनके पारंपरिक नृत्य और संगीत से होती है। चकमा जनजाति बौद्ध धर्म को मानने वाली प्रमुख जनजाति है, जो त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में निवास करती है। रियांग समुदाय की जीवन शैली जंगलों और पहाड़ियों से गहराई से जुड़ी हुई है।

सिक्किम में नेपाली, भूटिया और लेप्चा समुदाय प्रमुख हैं। लेप्चा जनजाति को सिक्किम का मूल निवासी माना जाता है, जो प्रकृति पूजा में विश्वास रखते हैं। भूटिया समुदाय तिब्बती संस्कृति से प्रभावित है और इनका पारंपरिक पहनावा और भोजन तिब्बती शैली का होता है।

पूर्वोत्तर भारत की जनजातियाँ अपनी भाषाई विविधता के लिए भी जानी जाती हैं। यहाँ की अनेक जनजातियाँ अपनी विशिष्ट भाषाएं और बोलियाँ बोलती हैं, जिनमें से कुछ लिखित रूप में संरक्षित हैं, जबकि कई बोलियाँ विलुप्ति के कगार पर हैं। सरकार और विभिन्न संस्थाएं इन भाषाओं को संरक्षित करने के लिए प्रयासरत हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रख सकें। इन जनजातियों की पारंपरिक आजीविका कृषि, बांस कला, हथकरघा, उद्योग और वन संसाधनों पर निर्भर करती है। कई समुदाय झूम कृषि प्रणाली अपनाते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित है। हालांकि आधुनिक समय में जनजातीय समुदायों की पारंपरिक जीवन शैली में बदलाव आ रहा है। शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ने के कारण कई युवा अब शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे उनकी पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर पर प्रभाव पड़ रहा है। सरकार द्वारा जनजातीय समुदायों के विकास और उनकी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन जैसी योजनाएं विशेष रूप से जनजातीय समुदायों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई हैं। साथ ही आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए विशेष आवासीय विद्यालय, छात्रवृत्ति और स्वरोजगार योजनाएं भी लागू की जा रही हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए विशाल शर्मा।

श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम उम्मीद है अच्छा लगा होगा और आपके सुझाव हमें हमेशा मिलते रहते हैं जो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। आप पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के बारे में अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इन माध्यमों से आप अपने विचार हम तक भेजते रहिए और इस कार्यक्रम को हर सप्ताह इसी तरह से सुनते रहिए। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुमूल्य हैं। श्रोताओं, आपसे फिर मुलाकात होगी पूर्वोत्तर डायरी के एक नए अंक में अगले सप्ताह। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अनेकवा संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।
2: सुन रहे थे पूर्वोत्तर डायरी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात जारी हैं। पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

पे आहे भरते हो, हर बात पे दिल भर जाता है।

महान रफी की आवाज में ये नगमा हमने आपको सुनवाया। फिल्म का नाम था जब प्यार किसी से होता है। अगली पेशकश है लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म है अप्रैल फूल।

जख्म हरा है, देख विदा में रंग भरा है, मेरे जिगर का जख्म हरा।

0: अच्छा रे आ जरा आ लहरा के आ जरा आंखों से दिल में समा अच्छा रे आ जरा आ लहरा के आ जरा आ अच्छा रे आ जरा
1: लविन टोक्यो फिल्म का नगमा भी आपने मोहम्मद रफी की आवाज में सुना। प्रोग्राम की अगली पेशकश महेंद्र कपूर को सुनिए, फिल्म है दिल और मोहब्बत।

इस नगमे के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मुझे अब सुनिए, नए थिएटर का अपना नयापन और हबीब तनवीर, इस मौजू के तहत ये फीचर। पेशकश अली मोहतसिम रजा की है।

इस अदबी माहौल ने ही हबीब तनवीर को होश संभालने से पहले ही शायर बना डाला। रायपुर का तहजीबी माहौल रोज बरोज की महफिलों और तकरीबों से मामूर रहता था। अक्सर बेशतर दावतें होती थी जिनमें शायरी और गानों का माहौल गर्म रहता। हबीब तनवीर ने लिखा है कि बहुत से गीत और मिलाद की महफिलें उन्हें अपनी नानी की वजह से याद हैं।

उस दौर में यूपी एमपी और बिहार के मुसलमानों का अपने त्योहारों और रसूमात का अपना एक कैलेंडर हुआ करता था और ये कैलेंडर अक्सर मौसमों के मुताबिक तय किया जाता था।

सन 1944 में मॉरिस कॉलेज नागपुर से ग्रेजुएशन करने के बाद एमए के लिए हबीब तनवीर ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन एक ही साल बाद बम्बई चले गए और ऑल इंडिया रेडियो के साथ बतौर प्रोड्यूसर वाबस्ता हो गए। ऑल इंडिया रेडियो में दीगर प्रोग्रामों के साथ साथ उन्होंने कई ड्रामों की हिदायत के फराइज भी अंजाम दिए।

0: मुंबई में रहते हुए उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों के लिए गीत भी लिखे और कुछ में अदाकारी भी की। उसी दौर में वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे। उस दौर से लेकर बाद के दौर तक हबीब तनवीर ने तकरीबन 9 फिल्मों में अदाकारी की, जिनमें गांधी भी शामिल है। मुंबई में रहते हुए हबीब तनवीर एक फिल्मी रिसाले की इदारत भी किया करते थे और साथ ही साथ थिएटर में भी काम किया करते थे। अपना खर्चा चलाने के लिए वो एडवर्टाइजिंग फिल्मों की स्क्रिप्टिंग भी किया करते थे। मुंबई में हबीब तनवीर को एक दिन मैसूर के एक लड़के का एक खत मिला, जिसमें लिखा था, मैंने आपको और आपके काम को स्टेज पर देखा, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। हबीब ने मैसूर के इस लड़के को जवाब में लिखा, चले आओ। इन लोगों ने मुंबई में एक हिंदी थिएटर ग्रुप शुरू करने का मंसूबा तैयार किया। नामवर साइंसदान प्रोफेसर यशपाल उस दौर को याद करते हुए बताते हैं,
1: तो मैं कहा एक तो कहानी सुनाता हूँ इनकी जिंदगी की और मेरी जिंदगी की चलती है। ये ओपरा हाउस में रहते थे, एक छोटा मकान था, वन बेडरूम छोटा सा मकान। ये पहले दीना सांगवी के होता था, उसको रहने के लिए दिया। मिला करते थे, मेरी नई नई शादी हुई थी, रहने को जगह नहीं थी। किसी दोस्त के यहाँ रहा पहले कुछ दिन, फिर उन्होंने कहा वो वापस आने वाले थे और कोई जगह थी नहीं, तो मेरी बीवी निर्मल और मैं अभी क्या गए यार करते थे, यार अभी भी एक दो महीने रह सकते तुम्हारे यहाँ। कहते खाना खिलाओगी? निर्मल ने कहा जरूर खिलाएंगे। निर्मल से पहले दोस्ती और भी हो चुकी थी, क्योंकि इनके यहाँ थिएटर की हमेशा रिहर्सल होती रहती थी घर में। एक बार इन्हें चिट्ठी लिखी लड़के ने मैसूर से कि मैं बंबई आना चाहता हूँ, मैंने आपको देखा है बहुत अच्छा लगा है, तो इन्होंने कहा चले आओ। लड़के निकले सत्यु, तो सत्यु भी आके इन्हीं के पास रह गए। तो जब हम जाते थे वहां तो कोई पोस्टर बना रहा है, कोई क्या हो रहा है, एक छोटा सा कमरा है, दो कमरे छोटे छोटे, और साथ में एक नौकर भी था। तो चलता ये था कि ये इनके दोस्त और वो नौकर आमतौर पे उधार पे, एक बार दुकान थी वहां खाना खाया करते थे, कभी कभी हमें भी ले जाते थे। हम उनसे पूछा, भाई उधार से खाते हैं, कितने दिनों से चल रहा है? कहते जाने दीजिए, दाने दीजिए, जब होंगे पैसे दे देंगे, आपके बात करते हैं। तो बहुत ऐश चलती थी। तो हमने कहा कि आ जाए, हम वहां रह गए। अब नौकर था वहां, कभी घंटी बजती थी तो नौकर कुर्सी पे चढ़ते ऊपर से देखता था कौन है। मैंने कहा क्या होता है? कहते देखना है, मालिक मकान तो नहीं है, तीन चार महीने के किराए। इट वॉज एन अमेजिंग इंटेलेक्चुअल फीस्ट। दुनिया के बारे में बात करनी, अपने बारे में बात करनी। एक बार निर्मल इनके यहां गई, रिहर्सल हो रही थी, निर्मल मेरी बेबी, आओ निर्मल आओ निर्मल बैठो बैठो चाय पियोगी? कहा जरूर पियेंगे। अच्छा चमनी निकालो, चीनी के मैसे नहीं है। सो दैट्स द काइंड ऑफ थिंग एंड येट सच इंटेंसिटी गोइंग ऑन एंड इट वॉज अ रियल प्रिविलेज।
0: मुंबई में जब हिंदी थिएटर की तैयारियों में थे, तब इस मंसूबे पर सबने कहा कि मुंबई में इस किस्म का थिएटर मुमकिन नहीं है और आप लोगों को दिल्ली चले जाना चाहिए। चुनांचे ये दोनों लोग

नहीं चले आए। दिल्ली पहुंचकर हबीब तनवीर ने मशहूर ड्रामा आगरा बाजार लिखा। उस वक्त हम दिल्ली के ओखला इलाके में एक झोपड़ी में रहते थे और खुले आसमान के नीचे ड्रामे की रिहर्सल किया करते थे। इस पर इस ग्रुप का नाम ओखला थिएटर रख दिया गया।

0: जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हबीब तनवीर ने सन 1954 में आगरा बाजार नाम से एक ड्रामा स्टेज किया, जिसमें क्लासिकी दौर के अवामी शायर नजीर अकबर आबादी को खराज तहसीन पेश किया गया था और ये इनका ही लिखा था। नजीर अकबर आबादी गालिब से पहले के दौर के उर्दू के एक बहुत बड़े शायर थे, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी में वो मकबूलियत हासिल नहीं हुई जिसके वो मुस्तहिक थे। पिछड़े तबके के लिए और आम मौजूआत पर शेर कहने वाले नजीर अकबर आबादी का बहुत सा कलाम उनके इंतकाल के कई बरस बाद शाये हो सका।
1: हर मुफलिस हो गदा है सो है वो भी आदमी, हर मुफलिस हो गदा है सो है वो भी आदमी, अशराफ और कमीन से बेशाह ता वजीर है आदमी ही साहिब इज्जत भी और फकीर, या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नजीर, और सब में जो

0: रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक्स यानी के राडा से थिएटर की तरबियत हासिल करने के बाद हबीब तनवीर ने जब सन 1954 में आगरा बाजार का पहला शो दिल्ली में किया तो उस वक्त भी उन्होंने दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया और नवाही इलाका ओखला के बाशिंदों को अपने ड्रामे में अदाकारी के लिए मुंतखब किया और बाद में उनका ये अंदाज जारी रहा।
1: इसी के कदमों पर लोटो, इसकी आंखों में छू लो, दिल्ली जा के जलेबी लाओ, तुम्हें आवेश बंगाले से लेकर आओ।
0: खबर रियासत छत्तीस।

छत्तीसगढ़ के कबायली हों या फिर खाजासरा की जमात, तरह तरह के लोग आगरा बाजार में 19वीं सदी के किसी भी बाजार के असल रंग को भरते नजर आते हैं। ड्रामे में जहां एक तरफ होली के रंग और मजहबी गीत होते हैं, तो दूसरी जानिब मीर और जौक की शायरी भी हुआ करती थी और तंजिया और मिजाहिया फिक्रबाजियां भी। यूं तो इस ड्रामे की कहानी 19वीं सदी के शायर नजीर अकबर आबादी की जिंदगी के चंद पहलुओं को छूती है, लेकिन दरअसल इसका पस मंजर सन 1857 की आजादी की नाकाम तहरीक के बाद के जमाने को बखूबी पेश करता है।

इस ड्रामे की कहानी आगरा शहर के एक बाजार की है, जहां ककड़ी, लड्डू और तरबूज फरोख्त करने वाले अपना सामान फरोख्त करने में नाकाम नजर आते हैं। तभी ककड़ी फरोख्त करने वाले को ख्याल आता है कि अगर कोई शायर उनकी ककड़ी पर कोई शेर कह दे तो शायद उसकी ककड़ियां बिकनी शुरू हो जाएं। इस सिलसिले में वो बाजार के कई अदीबों से दरखास्त करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी दरखास्त मंजूर नहीं करता। फिर उसे नजीर अकबर आबादी के बारे में पता चलता है और वो न सिर्फ उनकी ककड़ियों पर शेर लिखते हैं, बल्कि लड्डू और तरबूज बेचने वालों के लिए भी अशार लिखते हैं और नतीजतन सभी की जबरदस्त कमाई शुरू हो जाती है।

ड्रामे में नजीर अकबर आबादी तो नजर नहीं आते, लेकिन हाँ वो बाजार में घूमते फकीर हों या पतंग फरोख्त करने वाले हों या फिर बाजार की तवाइफ, हर कोई नजीर की शायरी का दीवाना है। जबकि अपने आप को अदीब और मौलाना कहने वाले उनकी शायरी को बाजारी और सतही करार देते हैं। हबीब तनवीर की हिदायतकारी की महारत, ड्रामे में शामिल छोटे से छोटे अदाकारों के काम और अदायगी में साफ साफ नजर आती है।

फिर उन लोगों ने मिट्टी की गाड़ी नाम का एक नाटक उठाया और उसे ब्रेख्त के स्टाइल में किया। ये तजर्बा भी सबके लिए नया बल्कि काफी नया था, क्योंकि उस वक्त तक हिंदुस्तान में ब्रेख्त को कोई नहीं जानता था। सन 1975 में उन्होंने चरणदास चोर के नाम से एक और ड्रामा लिखा जो बेहद मकबूल हुआ, और इस ड्रामे के बायस उन्हें सन

1982 में एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल में फ्रेंच फर्स्ट अवार्ड से नवाजा गया। हबीब तनवीर की मशहूर तरीन तख्लीकात में आगरा बाजार सन 1954 और चरणदास चोर सन 1975 जैसे ड्रामे शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत से दूसरे ड्रामों की हिदायत के फराइज भी निभाए।

0: इसके अलावा वो मुल्क के आला एजाजात से भी नवाजे गए, लेकिन शायद उन्हें सबसे ज्यादा याद इसलिए किया जाता है कि उन्होंने अपने ड्रामों में बहुत बड़े नामों के बजाय लोक फनकारों का इस्तेमाल किया और इन गलियों और बाजारों को ही स्टेज बनाया जिनकी कहानी वो बयान करते थे। चरणदास चोर हबीब तनवीर का सबसे मकबूल ड्रामा साबित हुआ, जो तकरीबन 3 दहाइयों तक हिंदुस्तान और यूरोप के अलावा भी दुनिया में मुख्तलिफ मकामात पर स्टेज किया गया।
1: साधु महाराज,
2: कहाँ हवलदार साहब?
1: यह कोई चोर भाग गया है।
2: अरे चोर आता धूनी के खाक में चोरी करे बर है जी, माल वाले घर जाए तो मारता है। यह कोनो चोर नहीं आए, चोर ना खोजे बर है ना, जाओ हाँ जंगल झाड़ी में खोज गए हम तक कारण में चोर को जुड़ा है।
0: हबीब तनवीर को जो बेशुमार एजाजात मिले उनमें सन 1969 का संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, सन 1983 में मिलने वाला पद्मश्री और सन 2002 में मिलने वाला पद्म भूषण भी शामिल है। सन 1972 में उन्हें राज्यसभा की रुकनियत अता की गई।

0: स्टेज की दुनिया में एक जिंदा दास्तान की हैसियत से जाने जाने वाले हबीब तनवीर मुख्तसर अदालत के बाद बरोज दुशंबा 8 जून सन 2009 की सुबह भोपाल के नेशनल अस्पताल में खालिक हकीकी से जा मिले। उनके इंतकाल के बाद नामवर फनकारा जोरा सैगल ने हबीब तनवीर की याद में मुनक्किदा एक महफिल में कहा था,
1: मेरे लिए तो हबीब जो वैसे दुनिया के लिए बहुत ग्रेट आर्टिस्ट था, प्लेराइट था, मेरे लिए हबीब एक दोस्त था। हमारी उसकी दोस्ती और उसकी बीवी से मोनिका से जब भी मेरे हंसी से मिलता था, प्यार से मिलता था, घर बुलाता था, मेरे सराय में मैं और मेरी बेटी के हम कितने बार गए जहां थे मोनिका ने एक लौकी सानन और खुशका उसके हाथ का इतना लजीज होता था कि मैं आपको तक मेरे मुंह में उसको बजा।
0: मशहूर अदाकार फारूक शेख ने हबीब तनवीर की रहलत पर उनको याद करते हुए कहा था,
2: हिंदुस्तानी थिएटर का एक मुकम्मल बाब हबीब साहब की मौत के बाद खत्म हो गया। मैंने उनके साथ काम नहीं किया लेकिन गाहे बगाहे उनसे मिला भी हूँ और जाहिर है कि जब मैं इस थिएटर की दुनिया से मुंसलिक हूँ तो उनके ड्रामे देखे हैं। उनके ड्रामे हमारे लिए एक सबक है। थिएटर की दुनिया का हर तालिब इल्म उनके ड्रामे देखे बगैर फनकार ही नहीं बन सकता। जिस मकसद और जिस लगन के साथ वो थिएटर करते थे वो अब दिखाई ही नहीं देता है। इस सतह के जीनियस फनकार और इंसान अब नापैद हो चुके हैं। वो हमारे दिलों में और थिएटर की दुनिया में ताहयात जिंदा रहेंगे।

0: नंदन के हम पुजारी, नंदन के प्रेम से कब हुए हैं आजाद।
1: अभी आप सुन रहे थे हबीब तनवीर पर ये फीचर। मौजू था नए थिएटर का अपना नयापन और हबीब तनवीर। पेशकश अली मोहतशिम रजा की थी। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। अब खबरें नशर की जाएंगी।
2: ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज किर्गिज़िस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम एससीओ की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करने वाले हैं। मौजूदा माली साल की पहली सहमाही के दौरान मुल्क की जीडीपी की शरह तरक्की 7.8% रही, जबकि रिजर्व बैंक ने इसके 7% रहने का अंदाजा लगाया था। अमरीका ने भारत को एक वलवला अंगेज, मजबूत और मुस्तहकम मईशत वाला मुल्क करार दिया है। भारत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे के बारे में सालिसी से मुतालिक अदालत के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। नेपाल में इमदादी कारकुनों ने पनबिजली प्रोजेक्टों पर काम करने वाले कारकुनों को तलाश करने के लिए पहाड़ी हिस्से पर धमाका किया। और लियोनेल मेसी ने बैन अल-अक़वामी फुटबॉल से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इस तरह अर्जेंटीना की कौमी टीम के साथ 21 साल से जारी सफर भी खत्म हो गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज किर्गिज़िस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम एससीओ की 26वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करने वाले हैं। एससीओ की सरबराह कॉन्फ्रेंस का मरकजी मौजू है पायदार अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए एक साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शंघाई तआवुन तंजीम की 26वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस से अपने खिताब में सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और मौके के सिलसिले में भारत की तरजीहात को नुमाया करेंगे। भारत दहशतगर्दी, अलीहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी के खिलाफ अपनी लड़ाई में दोहरे मेयार की मुखालफत करता रहा है। भारत का मानना है कि रुकन ममालिक के दरमियान ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी इस खित्ते में अमन खुशहाली के लिए इंतहाई जरूरी है। साथ ही कनेक्टिविटी से मुतालिक प्रोजेक्टों में तमाम ममालिक की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाना चाहिए। भारत रुकन ममालिक के नौजवानों के लिए नए मौके पैदा करने और स्टार्टअप इको निजाम को फरोग देने की जरूरत पर जोर देता रहा है। भारत का मानना है कि नौजवान लोगों की तवानाई, जिद्दत राजी और कारोबारी सलाहियत खित्ते की तरक्की और बाहमी तआवुन को एक नई कुव्वत फराहम कर सकती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय मईशत की 7.8% की शरह तरक्की से 140 करोड़ शहरियों की सख्त मेहनत और उनके इज्तिमाई अज़्म की अक्कासी होती है। आज सोशल मीडिया पोस्ट पर एक वीडियो शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत मुख्तलिफ खित्तों में जारी लड़ाई और कोविड-19 आलमी वबा के बाद से अदम इस्तेहकाम जैसे आलमी मसाइल के बावजूद तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि तरक्की की इस रफ्तार को बरकरार रखने की खातिर आत्मनिर्भर भारत का होना अहमियत का हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों पर जोर दिया कि वो स्वदेशी इख्तियार करें, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दें और भारत में बनाई गई अशिया और सामान को फरोग दें। जनाब मोदी ने लोगों से जोर देकर यह भी कहा कि वो गैर मुल्की सफर को महदूद रखें, बैरून मुल्क शादी की तकरीबात की मनसूबा साजी से गुरेज करें और जरूरी न हो तो सोना न खरीदें। जनाब मोदी ने एतमाद जाहिर किया कि अगर सभी शहरी स्वदेशी के तरीके को इख्तियार करें तो आजादी के 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर विकसित भारत के नजरिए की तकमील हो सकती है। मौजूदा माली साल की पहली सहमाही के दौरान भारत की हकीकी जीडीपी की शरह तरक्की 7.8% रही, जबकि साबका साल की इसी मुद्दत में ये 6.9% थी। आदादोशुमार और प्रोग्रामों पर अमल दरामद से मुतालिक वजारत ने मौजूदा माली साल की अप्रैल से लेकर जून तक की पहली सहमाही के लिए जीडीपी के तखमीने जारी किए हैं। उसने कहा है कि आलमी उतार चढ़ाव के बावजूद भारतीय मईशत में तरक्की की रफ्तार बरकरार रही है। वजारत के

0: सेक्रेटरी डॉक्टर सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी शोबों में शरह तरक्की बहुत मुस्बत रही, जिससे ये जाहिर होता है कि जोग्राफियाई और सियासी हालात के बावजूद सरकार के इकदाम का असर हो रहा है। सरकारी आदादोशुमार में भारत की जीडीपी की शरह तरक्की 7.8% रहने के इंकशाफ के बाद अमरीका ने भारत को एक वलवला अंगेज मजबूत और मुस्तहकम मीशत वाला मुल्क करार दिया है। एक खबर रसा एजेंसी के साथ इंटरव्यू में व्हाइट हाउस के सीनियर डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी कुश देसाई ने कहा कि शरह तरक्की के आदादोशुमार से ट्रंप इंतजामिया के इस नुक्ते नजर की तस्दीक होती है कि भारत तेजी के साथ तरक्की करने वाली इकतसादी कुव्वत है। उन्होंने कहा कि भारत की वसी और वसत हासिल करने वाली मीशत से अमरीकी कंपनियों और सरमायाकारों के लिए बड़े मौके सामने आ रहे हैं। अमरीकी इंतजामिया भी भारत में अमरीकी सरमायाकारी की हौसला अफजाई करने और अमरीका में और ज्यादा भारतीय सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने आलमी बैंक की जानिब से दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे के बारे में सालिसी अदालत के फैसले को सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया है। भारत ने मजकूरा ट्राइब्यूनल की अथॉरिटी को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उसके फैसले कानूनी एतबार से काबिल कबूल नहीं हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत खारजा ने कहा है कि भारत ने कभी भी सालिसी से मुतालिक इस पैनल को तस्लीम नहीं किया और न ही इसकी कार्रवाई में हिस्सा लिया और वो इसके फैसलों का पाबंद नहीं है। भारत ने यह बात दोहराई है कि दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदा अब भी मुअत्तल है। ये बयान हेग में सालिसी से मुतालिक अदालत के इस फैसले के बाद सामने आया है कि मजकूरा मुआहदे को मौकूफ रखने की भारत की वजूहात के हवाले से इसे मुअत्तल रखने या खत्म करने को सही नहीं ठहराया जा सकता। मजकूरा पैनल ने भारत से कहा था कि वो 1960 के पानी में हिस्सेदारी के समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता रहे। भारत ने अलबत्ता ये दलील पेश करते हुए फैसले को खारिज कर दिया कि मजकूरा पैनल ही मुआहदे की शराइत की खिलाफवर्जी करते हुए कायम किया गया था। वजारत खारजा ने कहा है कि मुआहदे के ताल्लुक से भारत के आजादाना फैसलों या बुनियादी ढांचे के उसके प्रोजेक्टों के ताल्लुक से पैनल का कोई दायरे इख्तियार नहीं है। भारत ने पिछले साल अप्रैल में पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के बाद दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे को मुअत्तल कर दिया था। भारत ने कौमी सलामती को लायक तशवीश और सरहद पार से दहशतगर्दी जारी रहने का हवाला दिया था। भारत का कहना है कि मजकूरा मुआहदे के बारे में उसका फैसला अपना मामला है और सालिसी से मुतालिक पैनल के बयानात या फैसलों से पानी और बुनियादी ढांचे से प्रोजेक्टों से मुतालिक उसके इकदामात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेपाल में बचाव टीमें उन 600 से ज्यादा कारकुनों तक पहुंचने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं जिनके बारे में यह ख्याल है कि वो त्रिशूली 3A पनबिजली प्रोजेक्ट के मकाम पर मिट्टी और गाद से भरी टनल में फंसे हुए हैं। बचाव टीमों के एहलकार टनल का रास्ता साफ करने के लिए धमाका खेज मादों, भारी मशीनरी और एयर पंप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जिंदा बच जाने वाले कारकुनों को तलाश किया जा सके। नेपाल में अचानक तबाहकुन सैलाब से मरने वालों की तादाद 939 तक पहुंच गई है जबकि 3,925 अफराद अब भी लापता हैं। इनमें 592 गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं। पनबिजली प्रोजेक्टों के मकाम से अब तक 279 अफराद को बचाया गया है जबकि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से मजमू तौर पर 11,000 से ज्यादा लोगों को बचाकर बाहर लाया गया है। बचाव कार्रवाई में भारत, जनूबी कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के माहिरीन के साथ साथ नेपाल और चीन की फौजी टीमें मुआवनत कर रही हैं। बलूच नेशनल मूवमेंट बीएनएम ने नीदरलैंड्स के उत्तरेचे शहर में एहतजाज किया ताकि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की जानिब से जारी ज्यादतियों पर बैन अल-अक़वामी सतह पर तवज्जो मबजूल कराई जा सके जिनमें हजारों लोगों की जबरी गुमशुदगी, गैर कानूनी हलाकतें और दीगर इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां शामिल हैं। यह एहतजाज कल जबरी गुमशुदगी के मुतासरीन के बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर किया गया जिसमें कई सियासी कारकुनान ने शिरकत की। लियोनेल मेसी ने बैन अल-अक़वामी फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। इस तरह उनका अर्जेंटीना के खिलाड़ी के तौर पर 21 साल का करियर खत्म हो गया है जिसमें वर्ल्ड कप की फतह, दो कोपा अमेरिका खिताब और अपने मुल्क के लिए 207 मैच खेलने का रिकॉर्ड शामिल है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी आज किर्गिजिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई तावन तंजीम एससीओ की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करने वाले हैं। मौजूदा माली साल की पहली सहमाही के दौरान मुल्क की जीडीपी की शरह तरक्की 7.8% रही, जबकि रिजर्व बैंक ने इसके 7% रहने का अंदाजा लगाया था। अमरीका ने भारत को एक वलवला अंगेज मजबूत और मुस्तहकम मईशत वाला मुल्क करार दिया है। भारत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे के बारे में सालिसी से मुतालिक अदालत के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। और नेपाल में इमदादी कारकुनों ने पनबिजली प्रोजेक्टों पर काम करने वाले कारकुनों को तलाश करने के लिए पहाड़ी हिस्से पर धमाका किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश है प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा।

0: फिर सुषमा श्रेष्ठ ठाकुर आपने सुना फिल्म थी हम किसी से कम नहीं। फिल्मी दो गानों का ये प्रोग्राम अभी जारी है। वक्त हो गया है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है नवाब वाजिद अली शाह।
1: हुस्न इश्क के किस्सों, दिलदारी व दिलनवाजी के अफसानों और जौक जमाल और ख्वाब ख्याल जैसी दुनियाओं में जिंदगी गुजारने वाले बादशाह वो तो अनगिनत गुजरे होंगे, लेकिन वाजिद अली शाह की दास्तानी जिंदगी बेशतर हुक्मरानों से मुख्तलिफ और इबरत अंगेज है। सुल्तान इब्न सुल्तान या खाकान इब्न खाकान नवाब वाजिद अली शाह बाज इत्तेफाकात के नतीजे में बादशाह हुए और इत्तेफाकी हादसे में ही उनकी शहनशाहियत का चिराग गुल किया। वाजिद अली शाह अपनी पैदाइश के वक्त न तो वली अहद कहलाने के मुस्तहक थे और न मुस्तकबिल में उनकी बादशाही का कोई जाहिरी इम्कान था। जब सन 1823 में वाजिद अली शाह की विलादत हुई तो उस वक्त गाजीउद्दीन हैदर अवध के बादशाह थे और उनके बेटे नसीरुद्दीन हैदर को वली अहद तस्लीम किया जाना था। यह अजीब इत्तेफाक था कि अचानक हालात ने पलटा खाया और गाजीउद्दीन हैदर के बाद मोहम्मद अली शाह तख्तनशीन हुए। मोहम्मद अली शाह की तख्तनशीनी बजाय खुद वाजिद अली शाह की वली अहदी की जमानत थी, इसलिए सन 1842 में वाजिद अली शाह वली अहद करार दिए गए। इस असना में चंद बरस तक वाजिद अली शाह बहुत से लाओबाली और गैर जिम्मेदार अहबाब के हल्के में रहकर अपनी आदतें खराब कर चुके थे। चुनाचे जब सन 1847 में वाजिद अली शाह की तख्तनशीनी अमल में आई, उस वक्त तक वो हिस्से लतीफ और जौक जमाल के इजहार के मुनासिब और नामुनासिब तरीकों से बखूबी वाकिफ हो चुके थे। चुनाचे तख्तनशीनी के बाद भी उनकी सारी दिलचस्पियां बजाय रुमूज ममलुकत को समझने के असरार शेर व अदब और रुमूज मोहब्बत की गुत्थियां सुलझाने तक महदूद रहीं। इस पूरे अरसे में वाजिद अली शाह ने मसनवियों और गजलों पर मुश्तमिल मुतअद्दिद किताबों का जखीरा तैयार कर लिया। हुस्न इश्क और शेर व अदब की हम आमेजी का नुक्ता उरूज ये था कि अपने बेशतर किताबों के नाम इश्क आशिकी और मोहब्बत उल्फत के उनवानात से मौसूम किए। वाजिद अली शाह की इब्तदाई तीन मसनवियों अफसाना इश्क दरियाए ताशुक और बहर उल्फत के अलावा इश्कनामा सबातुल कुलूब गुलदस्ता आशिका और मजमुए वाजिदिया जैसी किताबों में उनके मुख्तलिफ नौ और मुतनव अंदाज की शायरी के नमूने मौजूद हैं। इन किताबों के अलावा सुखन अशरफ दीवान मुबारक शेवा फैज कमर मजमून नज्म नामवर वगैरह भी अपने मखसूस सियाक व सबाक में कम अहमियत की हामिल किताबें नहीं हैं। नवाब वाजिद अली शाह उन बादशाहों में से एक थे जो फन्नी अदबी और जमालियाती जौक और शायराना उफ्ताद तबाह के सबब सियासी उलझनों से महफूज रहने की कोशिश में रोज बरोज दामे सियासत के असीर होते चले जाते हैं। नाकाम बादशाह करार पाते हैं और हुकूमत चलाने की हिकमत अमली से महरूम होने की वजह से तरह तरह से मुरीद इल्जाम करार दिए जाते हैं। वाजिद अली शाह की बादशाही इसी उसूल पर अमल पैरा रही और नतीजे के तौर पर नवाब वाजिद अली शाह 4 फरवरी सन 1856 को बादशाहत से माजूल करार दिए गए। लखनऊ की जमीन उन पर तंग हो गई और वह राह मफर की तलाश में फिक्रमंद और परेशान रहने लगे और एक ही महीने के बाद मार्च 1856 में कलकत्ता के लिए रवाना हो गए। वहां अंग्रेजों की तरफ से जहनी और अमली मसाइल पैदा करने का सिलसिला जारी रहा और बिलाखिर 15 जून 1857 को नजरबंद करने का हुक्म सादिर कर दिया गया। फोर्ट विलियम में नजरबंद रहने का यह सिलसिला 2 साल से ज्यादा अरसे तक जारी रहा। इस दरमियान वाजिद अली शाह को तरह तरह के मसाइब व आलाम से वास्ता पड़ता रहा। ऐशो आराम के साथ गुजारी हुई जिंदगी के एक एक दिन की याद इस इबरत अंगेज सूरत हाल में मजीद शिद्दत पैदा कर देती थी, लेकिन उन्होंने शेर व सुखन का सिलसिला हर हाल और हर कैफियत में जारी रखा। नजरबंदी से रिहाई के बाद वाजिद अली शाह ने कलकत्ते के मटिया बुर्ज को अपना मस्कन बनाया और तादमे हयात मटिया बुर्ज में मुकीम रहे। जब 21 सितंबर 1887 में वाजिद अली शाह का इंतकाल हुआ तो सिर्फ इबरत अंगेज दास्तान का एक बाब ही तमाम नहीं हुआ, बल्कि अपने मिजाज उफ्ताद तबाह और दुनिया से बेनियाजी अख्तियार करने वाले एक दरवेश की जिंदगी का नाकाबिल फरामोश मंजरनामा भी तारीख की निगाहों से ओझल हो गया।

अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में ये नगमा भी आपने सुना। फिल्म थी तू झूठी मैं मक्कार। इसके साथ ही आज का मेरे सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म होता है। आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। अब पेश है प्रोग्राम सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण किर्गिस्तान गणराज्य यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर

0: रहे हैं सुबोध मिश्र।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का समसामयिक कार्यक्रम सुर्खियों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिज गणराज्य की यात्रा पर हैं, जहां वे बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत मध्य एशिया के साथ अपने रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बना रहा है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के व्यापक कूटनीतिक और सामरिक महत्व पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राहुल मिश्रा। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद सुबोध जी।
1: राहुल जी, सबसे पहले अगर हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रधानमंत्री की जो किर्गिज गणराज्य यात्रा है, उसे आप भारत की विदेश नीति के हिसाब से किस दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि मध्य एशिया भारत के लिए अब लगातार ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है।
2: जी बिल्कुल, देखिए सुबोध जी, मध्य एशिया के जो तमाम देश हैं, ये जैसा कि हम जानते हैं कि ये पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे और सोवियत संघ के विघटन के बाद ये सोवियत सेंट्रल एशिया या सोवियत मध्य एशिया के ये पांच गणराज्य बने, जिनके साथ भारत ने 1991-1992 से ही अपने कूटनीतिक संबंध, अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए। और भारत की बहुत प्रमुख नीतियों में से एक लुकईस्ट और एक्टईस्ट नीति के अलावा, अगर हम एक रीजन को लेकर के, एक खास क्षेत्र को लेकर के अगर भारत की कोई विदेश नीति को देखें, तो इस लिहाज से कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मध्य एशिया के देशों को भारत ने हमेशा से एक प्रमुख स्थान दिया है। इस संदर्भ में मध्य एशिया के देशों के साथ हालांकि हमारी कनेक्टिविटी की जो डायरेक्ट लिंकेज की जो बात है, वो एक बड़ा प्रश्न है और एक अनसुलझा हुआ सवाल है। और इसी वजह से एक बड़ा अच्छा उदाहरण मैंने अपने मित्र को दिया था कि दिल्ली से कोची जाने में आपको करीब करीब 3.5 घंटे लगते हैं, और इतना ही समय अगर आप दिल्ली से ताशकंद जाना चाहें तो आपको लगेंगे। तो सेंट्रल एशिया हमारे इतने नजदीक है, लेकिन भू राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से अब हमारे और उस क्षेत्र के बीच इतनी कनेक्टिविटी नहीं। हजारों साल पुराने हमारे संबंध जो है वो इन भू राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से कहीं थोड़े से कमजोर हो गए हैं। कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति के तहत और पिछले 12 वर्षों में अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य एशिया के तमाम देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने की बहुत कोशिश की। इसमें हम देख रहे हैं कि लगातार जो उनकी यात्राएं हैं इस क्षेत्र को लेकर, चाहे इस क्षेत्र में चाहे उज्बेकिस्तान हो या किर्गिस्तान हो या कजाकिस्तान हो, करीब करीब इन तमाम मध्य एशिया के देशों की उनकी यात्राएं 4 या उससे ज्यादा बार हो चुकी हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट है जो कि किर्गिस्तान में हो रही है, वो महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लेकिन अगर द्विपक्षीय संबंधों को हम देखें तो किर्गिस्तान के साथ भारत के संबंध बहुत मजबूत है, और उसमें रक्षा क्षेत्र बहुत ही आम लोगों में जानने वाली बात नहीं है, लेकिन किर्गिस्तान के साथ भारत के रक्षा संबंध भी बहुत मजबूत है और वो मध्य एशिया में भारत को एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ देते हैं।
1: जी, जैसे आपने कहा अभी कि SCO का आपने उल्लेख किया, तो प्रधानमंत्री अभी 26वें SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं और अब उसकी स्थापना के जो 25 साल पूरे हो गए हैं, तो भारत के लिए इस मंच की अभी क्या प्रासंगिकता है और भारत इसमें अपनी भूमिका को किस तरह देखता है?
2: एक उभरती हुई महाशक्ति के तौर पे भारत के लिए SCO एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। पहला इस वजह से कि ये पूरे जो कॉन्टिनेंटल एशिया जिसको हम कहते हैं, जो लैंड बेस जमीनी जो एशिया है जो कि समुद्र से नहीं जुड़ा हुआ है, उसके केंद्र में SCO है, और जिसमें चीन भी है, जिसमें रूस भी है, ईरान भी है, पाकिस्तान भी है, और ये पांच जो गणराज्य है मध्य एशिया के वो तो इसमें मेंबर्स आएंगे। तो इस लिहाज से, और भारत और पाकिस्तान दोनों इसमें सदस्य हैं, तो इस लिहाज से SCO की बड़ी केंद्रीय भूमिका है कॉन्टिनेंटल एशिया की जो भू राजनीति और उसके जो सामरिक और आर्थिक कनेक्टिविटी के जो सवाल हैं उनको सुलझाने के लिए। तो एक क्षेत्रीय संगठन के तौर पे ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को ये इस क्षेत्र में खास तौर से चीन और रूस के साथ मिलकर इस क्षेत्र में आतंकवाद, अलगाववाद जैसी चुनौतियों से निपटने के साथ साथ कैसे हमारे तमाम देशों के बीच में आर्थिक सहयोग बढ़े और इस पूरे क्षेत्र में भारत की भूमिका और तमाम देशों की भूमिका जो है वो प्रासंगिक रहे, इसके लिए SCO बहुत महत्वपूर्ण है। SCO एक अलग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये अगर हम उदाहरण या कंपैरिजन के तौर पे अगर हम क्वाड को देखें जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, उसके मुकाबले ये एक ऐसा संगठन है जिसमें कि वो देश है जिनके

0: अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं है, तो भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट की जो नीति है उसको भी ये एक तरह से पूरी तरह से प्रोजेक्ट करता है। तो एससीओ इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत जो कि एक तरफ कॉन्टिनेंटल एशिया से जमीनी तौर पर जुड़ा हुआ है पूरे एशिया से, और दूसरी तरफ वो अपने हिंद महासागर और अरब सागर और बे ऑफ बंगाल की वजह से सामुद्रिक रास्तों से जुड़ा है, तो भारत जिसके पास ये दोनों ही एक तरह से कहें कि प्लस पॉइंट्स है, उस लिहाज से एससीओ की सदस्यता उतनी महत्वपूर्ण है जितना कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की।
1: राहुल जी, भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच केवल रणनीतिक हितों तक ही संबंध नहीं है, यहीं तक सीमित नहीं है वो, और हमारे इन दोनों देशों के बीच शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क भी, ये भी आपसी रिश्ते का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन पुराने संबंधों को आधुनिक कूटनीति में किस तरह अब एक नई ऊर्जा दी जा सकती है?
0: किर्गिस्तान की जो एक बहुत ही खास बात है कि हमेशा से ही भारत और किर्गिस्तान के संबंध द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ, एक अगर हम इनको दो स्तंभ माने तो द्विपक्षीय के साथ साथ रीजनल जो संस्थान है, मल्टीलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एससीओ के जरिए हो या अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ हो, इन दोनों में ही भारत और किर्गिस्तान के बीच में संबंध इन दोनों ही तरीकों से बहुत आगे बढ़े हैं। दोनों देशों के बीच में व्यापार हालांकि 1 बिलियन के आसपास ही पहुंचता है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। किर्गिस्तान के साथ भारत के संबंध, जैसा कि सेंट्रल एशिया के बाकी देशों के साथ भी समस्या है, कनेक्टिविटी एक बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट न होने की वजह से हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचता है एयर कनेक्टिविटी का। तो आर्थिक मामलों में मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी की वजह से बहुत सी दिक्कतें पेश आई हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत और किर्गिस्तान के बीच में पिछले बहुत वर्षों से खंजर नाम की एक्सरसाइज होती रही है, जिसका 13वां संस्करण अभी फरवरी 2026 में हुआ था। आईटेक प्रोग्राम्स को ले लें, या जिसमें हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं किर्गिज सिविल सर्वेंट्स की और उनके तमाम जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, या पार्लियामेंट्री एक्सचेंजेस को लेकर के, कल्चरल कनेक्ट को लेकर के दोनों ही देशों के बीच में सहयोग के बहुत सारे रास्ते तलाशे गए हैं। इसके साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक आईटी सुपर पावर के रूप में और खासतौर से ग्लोबल साउथ के देशों को अपने साथ लेकर चलने वाले आईटी सुपर पावर के तौर पर भारत ने अपनी एक बड़ी भूमिका तलाश ली है और दुनिया के तमाम देश उसको मान रहे हैं। तो इस लिहाज से भी किर्गिस्तान में एक आईटी सेंटर, भारत ने हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के तहत एक आईटी सेंटर बनाया है जिस पर दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। एग्रो प्रोसेसिंग, हायर एजुकेशन, फार्मास्यूटिकल तो खैर बहुत बड़ा क्षेत्र दोनों देशों के बीच में हमेशा से रहा है। तो ये तमाम क्षेत्र हैं जिनमें दोनों देशों के बीच में सहयोग रहा है, और मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि किर्गिस्तान के साथ भारत के संबंध आपसी विश्वास, परस्पर संबंधों में एक अटूट विश्वास के साथ साथ दोनों देशों के हितों में और उनकी जो डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही प्रामाणिक दोनों देशों के बीच में दोस्ती रही है। तो हमेशा से ही किर्गिस्तान को भारत ने मध्य एशिया के एक महत्वपूर्ण पार्टनर के तौर पर देखा। हालांकि दोनों देशों के बीच में आर्थिक सहयोग उतना बड़ा नहीं है, लेकिन राजनीतिक और कूटनीतिक सहयोग की वजह से इस देश की महत्ता भारत के लिए बढ़ती है। एक बड़ा एंकर है ये, जिसे कहते हैं कि भारत को मध्य एशिया के क्षेत्र में स्थापित करने के लिए एक बड़े दोस्त, एक बड़े एंकर, एक बड़े होस्ट के तौर पर किर्गिस्तान को आंका जा सकता है।
1: जी, आपकी इसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं थोड़ा, तो क्या लगता है कि जो मध्य एशिया के अन्य देश है उनको मिलाकर भारत एक अपनी मध्य एशिया की अलग रणनीति विकसित कर रहा है? अभी जो हर देश के साथ एक द्विपक्षीय संबंध अलग अलग है, उससे परे है जो सभी देशों के साथ मिलकर काम करने की बात है, क्या ऐसा कुछ भविष्य दिखाई देता है आपको?
0: जी बिल्कुल, भारत की एक बहुत ही स्पष्ट और एक बहुत ही दीर्घकालिक रणनीति है मध्य एशिया के देशों के साथ मिलकर काम करने की, जिसको हम कनेक्ट सेंट्रल एशिया के नाम से जानते हैं। लेकिन कनेक्ट सेंट्रल एशिया के साथ साथ भारत ने यह भी कोशिश की है कि हम सिर्फ कनेक्टिविटी, कॉमर्स, काउंसलर रिलेशंस और कम्युनिटी, ये जो चार सीज हैं, इनसे बाहर निकलकर हम उस क्षेत्र को ही इस ढंग से रखें अपने विदेश नीति के दीर्घकालिक जो हमारे गोल्स हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम रखें तो सेंट्रल एशिया को कैसे इस डायरेक्शन में लाया जाए कि दोनों ही पक्षों के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर संबंध बने और दोनों ही पार्टीज इसमें प्रॉस्परस और ज्यादा स्टेबल और ज्यादा म्यूचुअली एडवांटेजियस सिचुएशन में पहुंचे। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि इस कनेक्ट सेंट्रल एशिया के माध्यम से भारत ने एक रणनीति बनाई तो बहुत साल पहले थी और 90 के दशक से ही भारत ने इस पर काम करना शुरू किया, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे जो मेजर फंडामेंटल किस्म के जो हमारे

0: पास समस्याएं हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उनको दूर करने में थोड़ी सी हमें दिक्कतें आ रही हैं, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण समस्या है कनेक्टिविटी, डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। तो ईरान की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं, रूस के साथ मिलकर भी हमने कोशिश की कि सेंट्रल एशिया के क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए और भारत की एक नई रणनीति बने। बहरहाल भारत की कोशिश ये है कि मध्य एशिया के देशों को हम आइडियोलॉजी के तौर पर, एक विचारधारा के संदर्भ में हम उसे ग्लोबल साउथ के साथ जोड़ें। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात का जिक्र अपनी उज्बेकिस्तान की यात्रा में पहले ही कर दिया है। दूसरी बात यह है कि भारत के जो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जैसे कि हम रेल, रोड और एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं, या सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसमें डिजिटल पेमेंट्स या आईटी कॉपरेशन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जो लिंकेजेस हैं, इंटरनेट, टेलीफोनी और तमाम चीजों के जो सॉफ्ट कनेक्टिविटी है, उसको बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और तीसरी चीज है कि वो कौन से क्षेत्र हैं जिसमें मध्य एशिया के देश एक विकसित भारत 2047 का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में जिम्मेदार दोस्त की भूमिका निभा सकते हैं। उसमें क्रिटिकल मिनरल सेक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य एशिया के तमाम देश हैं जो क्रिटिकल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स में काफी बड़ा हिस्सा रखते हैं, उनके पास बहुत सारे ज्ञात और अज्ञात सोर्सेज हैं पोटेंशियली, जिसमें बहुत सारे सोर्सेज को एक्सप्लॉयट किया जा सकता है। ने इसमें तमाम कोशिश की है। तो भारत की अब ये रणनीति है, जो सवाल आपने पूछा उसका अगर मैं एक लाइन में जवाब दूं तो भारत की रणनीति ये है कि विकसित भारत 2047 के संदर्भ में मध्य एशिया के देशों को कैसे अपनी नीति से ऐसे अलाइन किया जाए कि उनका भी भला हो और भारत का विकास हो और 2047 में हम अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें।
1: जी, तो भारत के व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और निवेश, इन सब के लिए इस क्षेत्र में भी प्रबल संभावनाएं हैं।
0: जी बिल्कुल, बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। मैं ये मानता हूं कि 90 के दशक से ही मध्य एशिया ऐसे तमाम जंजालों में उलझा रहा, जियोपॉलिटिकल, जिसमें अफगानिस्तान की भी समस्या है, मध्य एशिया के तमाम देशों की अंदरूनी बहुत सी समस्याएं रही। तो ये सही समय भारत और मध्य एशिया के बीच में संबंधों का जो सही, उसका जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज करने का नहीं आया। बट मुझे लगता है कि आगे आने वाले 10 सालों में हम देखेंगे कि मध्य एशिया की वाकई में कितनी बड़ी भूमिका इस भू राजनीतिक व्यवस्था जो एशिया की उसमें है, और SCO जैसे संगठन के माध्यम से कैसे उनकी एक तरह से केंद्रीय भूमिका होती है जब वो महाशक्तियों के साथ, भारत, चीन और रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और तीसरा, भारत का जब विकास हो रहा है इतनी तेज रफ्तार से और भारत एक विकसित महाशक्ति बनने की राह पर है 2047 तक, तो हम आगे आने वाले 10 सालों में देखेंगे कि मध्य एशिया कैसे इसमें एक बड़ा योगदान देता है। और जो हमारी हजार साल का जो एक बहुत समृद्ध इतिहास रहा है दोनों ही पक्षों के बीच में संबंधों का, मुझे लगता है इस पूरी यात्रा के दौरान, 10 और आगे आने वाले समय की यात्रा के दौरान, इन तमाम बातों को फिर से हम रेखांकित कर पाएंगे और अपने इतिहास को फिर से पुनर्जीवित कर पाएंगे।
1: जी राहुल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किर्गिज गणराज्य यात्रा, SCO की भूमिका और भारत मध्य एशिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर अपने सार्थक विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बहुत धन्यवाद।
1: इसके साथ आज के सुर्खियों में कार्यक्रम से मुझे दीजिए अनुमति, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए विश्लेषण के साथ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण किर्गिस्तान गणराज्य यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे हैं। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप मेहताब आलम से आलमी खबरें सुनिए। وزیر اعظم نریندر مودی کرغزستان کی راجدھانی بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم SCO کی سربراہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ممبر ملکوں پر زور دیا کہ دہشت گردوں کے لیے سرمایہ فراہم کرنے اور انہیں محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنے

0: पर मुल्क के हिसार को भी तस्लीम किया। निर्मला सीतारमन ने भारत को एक मुतहरिक और फौरी इकदाम करने वाली मईशत करार दिया जो बाहरी चैलेंजों से निमटने की सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा कि भारत खाम तेल और पेट्रोलियम अशिया दरामद करने वाले दुनिया के बड़े मुल्कों में शामिल है। वजीर खजाना ने इस बात को उजागर किया कि भारत ने दुनिया के हालात वाकयात के तनाजुर में अपनी इक्तसादी कारकर्दगी की बदौलत अपनी तरक्की की रफ्तार बरकरार रखने की सलाहियत का मुजाहरा किया। सरकारी इरादोशुमार में भारत की जीडीपी की शरह तरक्की 7.8% रहने के इंकशाफ के बाद अमरीका ने भारत को एक वलवला अंगेज मजबूत और मुस्तहकम मईशत वाला मुल्क करार दिया है। एक खबर रसा एजेंसी के साथ इंटरव्यू में व्हाइट हाउस के सीनियर डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी कुश मिसाई ने कहा कि शरह तरक्की के इरादोशुमार से ट्रंप इंतजामिया के इस नुक्ते नजर की तस्दीक होती है कि भारत तेजी के साथ तरक्की करने वाली इकतसादी कुवत है। उन्होंने कहा कि भारत की वसी और वसत हासिल करने वाली मईशत से अमरीकी कंपनियों और सरमायाकारों के लिए बड़े मौके सामने आ रहे हैं। अमरीकी इंतजामिया भी भारत में अमरीकी सरमायाकारी की हौसला अफजाई करने और अमरीका में और ज्यादा भारतीय शहरी और ज्यादा भारतीय सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने आलमी बैंक की जानिब से दरियाए सिंध से मुतालिक आबी माहदे के बारे में सांसी अदालत के फैसले को सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया है। भारत ने मस्कुरा ट्रिब्यूनल की अथॉरिटी को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उसके फैसले कानूनी एतबार से काबिल कबूल नहीं है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारते खारजा ने कहा है कि भारत ने कभी भी सालसी से मुतालिक इस पैनल को तस्लीम नहीं किया और वही इसकी कार्रवाई में हिस्सा लिया और इसके फैसलों का पाबंद नहीं है। भारत ने यह बात दोहराई है कि दरिया सिंध से मुतालिक आबी मुआहदा अब भी मुअत्तल है। ये बयान हेग में सालसी से मुतालिक अदालत के इस फैसले के बाद सामने आया है कि मस्कुरा मुआहदे को मौकूफ रखने की भारत की वजूहात के हवाले से इसे मुअत्तल रखने या खत्म करने को सही नहीं ठहराया जा सकता। मस्कुरा पैनल ने भारत से कहा था कि वो 1960 के पानी में हिस्सेदारी के समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता रहे। भारत ने अदालत में दलील पेश करते हुए फैसले को खारिज कर दिया कि मस्कुरा पैनल ही मुआहदे की शरायत के खिलाफ वर्जी करते हुए कायम किया गया था। वजारत खारजा ने कहा है कि मुआहदे के ताल्लुक से भारत के अगदाना फैसलों या बुनियादी ढांचों के उसके प्रोजेक्टों के ताल्लुक से पैनल का कोई दायरा अख्तियार नहीं है। भारत ने पिछले साल अप्रैल में पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के बाद दरिया सिंध से मुतालिक आबी माहदे को मुअत्तल कर दिया था। भारत ने कौमी सलामती को लाहिक तशवीश और सरहदपार से दहशतगर्दी जारी रहने का हवाला दिया था। नेपाल में बचाव टीमें उन 600 से ज्यादा कारकुनों तक पहुंचने के लिए भरपूर कोशिश कर रही हैं जिनके बारे में यह ख्याल है कि वो त्रिशूली 3A पर बिजली प्रोजेक्ट के मकाम पर मिट्टी और गाद से भरी हुई टनल में फंसे हुए हैं। बचाव टीमों के अहलकार टनल का रास्ता साफ करने के लिए धमाका खेज मादों भारी मशीनरी और एयर पंप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जिंदा बच जाने वाले कारकुनों को तलाश किया जा सके। नेपाल में अचानक तबाहकुन सैलाब से मरने वालों की तादाद 239 तक पहुंच गई है जबकि 3925 अफराद अब भी लापता हैं। 592 गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं। बिजली प्रोजेक्टों के मुकाम से अब तक 279 अफराद को बचाया गया है जबकि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से मजमूई तौर पर 11,000 से ज्यादा लोगों को बचाकर बाहर लाया गया है। लियोनेल मेसी ने बैन अल-अक़वामी फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। इस तरह उनका अर्जेंटीना के खिलाड़ी के तौर पर 21 साल के कैरियर का इख्तिताम हो गया है जिसमें वर्ल्ड कप की फतह दो कोपा अमेरिका खिताब और अपने मुल्क के लिए 207 मैच खेलने का रिकॉर्ड शामिल है। आखिर में खास खबरें एक बार और। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी किर्गिज़िस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम SCO की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मेंबर मुल्कों पर जोर दिया कि दहशतगर्दों के लिए सरमाया फराहम करने और उन्हें महफूज पनाहगाहें फराहम करने के पूरे इको निजाम का खात्मा किया जाए। मौजूदा माली साल की पहली सिमाही के दौरान मुल्क की GDP की शरह तरक्की 7.8% रही जबकि रिजर्व बैंक ने इसके 7% रहने का अंदाजा लगाया था। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। फिल्म करीब का टोटल बजट 6.50 करोड़ था, जबकि इसकी कुल कमाई 12.93 करोड़ की हुई थी। और फिल्म के संगीत की अगर बात करें तो इसे संगीत अनु मलिक ने दिया था और गीत राहत इंदौरी जी के लिखे थे। इस फिल्म के सारे गीत लोकप्रिय हुए और आज भी लोग इसे बेहद चाव से सुनते हैं। यह फिल्म बॉलीवुड की एक बेहद मासूम और खूबसूरत प्रेम कहानी मानी जाती है।

श्रोताओं, फिल्म करीब की कहानी की अगर बात करें तो फिल्म झूठ, प्रेम और पश्चाताप पर आधारित है। बिरजू यानी बॉबी देओल एक मस्त मौला और झूठ बोलने वाला लड़का है, जो एक सीधी साधी लड़की नेहा यानी शबाना रजा से पहली नजर में प्रेम कर बैठता है। बिरजू नेहा को इम्प्रेस करने के लिए तरह तरह के झूठ बोलता है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और दोनों को प्रेम हो जाता है। जब नेहा को बिरजू के झूठ के बारे में सच्चाई पता चलती है तो वो अंदर से टूट जाती है। इसके बाद नेहा बिरजू से दूर चली जाती है। बाद में बिरजू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो एक सच्चा इंसान बनने का फैसला करता है। अंत में बिरजू का बदलाव देखते ही नेहा उसे माफ कर देती है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं।

श्रोताओं, इस फिल्म के लिए बॉबी देओल को चुना गया था क्योंकि बॉबी देओल का लुक विधु विनोद चोपड़ा जी के हिसाब से उनके जवानी के दिनों से काफी मिलता जुलता था और फिल्म की मुख्य अभिनेत्री शबाना रजा ने बॉलीवुड में इस फिल्म से डेब्यू किया था और फिल्म के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा जी ने उनका असली नाम बदलकर नेहा कर दिया था, जो फिल्म में उनके किरदार का भी नाम था।

0: श्रोताओं, फिल्म करीब में नेहा के किरदार के लिए मेकर्स की पहली पसंद ममता कुलकर्णी थी, लेकिन बाद में इस रोल के लिए शबाना रजा को फाइनल किया गया। श्रोताओं, इस फिल्म के विजुअल्स काफी खूबसूरत थे। फिल्म में पहाड़ी इलाकों और प्राकृतिक सुंदरता को दिखाने के लिए हिमाचल प्रदेश के विभिन्न प्राकृतिक स्थलों का चयन किया गया था।
1: నా దిన్నా తక తక తున్నా నా దిన్నా.

इसके साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आशा करती हूँ फिल्म से जुड़ी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। अब अपनी होस्ट और दोस्त रिया को दीजिए।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक विच शंघाई सहयोग संगठन के 26वें सम्मेलन नूं संबोधन किया। श्री मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी बारे दोहरे मापदंडा लई कोई जगह नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की 7.8% की आर्थिक विकास दर 140 करोड़ देशवासियों की सख्त मेहनत और समूह संकल्प का नतीजा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि भारत

0: for items which are not covered under the Drugs and Cosmetics Act 1940. It said eligible applications will now be considered for automatic issuance in accordance with the prevailing framework without being routed for manual scrutiny. The automated mechanism is expected to reduce processing time for a significant category of FSC applications and lower the compliance burden associated with the earlier manual process. The initiative is expected to make the issuance of free sale and commerce certificates more efficient, transparent, and predictable for exporters and administering authorities. Prime Minister Narendra Modi has said India's economic growth of 7.8% is a reflection of the hard work and collective resolve of 140 crore citizens. Sharing a video in a social media post today, Mr. Modi said India is progressing at a fast pace despite global problems like ongoing wars and instability since the COVID-19 pandemic.
1: देशवासियों को बहुत-बहुत बधाई 7.8% ग्रोथ देश खुशियों से भर गया देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए उनके पुरुषार्थ के लिए एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है दुनिया युद्ध में डूबी हुई है चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही विश्व संकटों से घिरा हुआ है सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है
0: India has shown that it can adjust to changes in the global economy without allowing its growth to be derailed, Union Minister for Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman has said, while acknowledging the country's dependence on imported energy and fertilizers. Finance Minister Sitharaman described India as a vibrant and responsive economy capable of managing external challenges. India is among the world's large importers of crude oil and petroleum products. It also imports several fertilizers and their inputs. Despite having some domestic production capacity, the finance minister said, Sitharaman highlighted India's economic performance demonstrated its ability to respond to developments overseas and protect its growth momentum.
2: I'm extremely pleased with the numbers, not because all the numbers are gold and whatever. It's more to say the hard work of the Indian citizens, even against extreme challenges. And the challenges don't seem to die down at all. Despite these global challenges, if Indian economy is still growing at 7.8% in the first quarter, it's heartening that the people's hard work is bearing fruit. The GDP is growing in every sector.
0: The finance minister said the Reserve Bank of India also periodically issues its assessment of the economy with the indicators moving in a positive direction. Ms. Sitharaman also highlighted India's recorded growth of 7.8% in the first quarter of the 2026-27 financial year. This is Akashvani giving you the news. For news at your fingertips, follow us on X at AIR News Alerts and join our WhatsApp channel, Akashvani News. Welcome back to the Midday News. The death toll from the devastating flash floods in Nepal rose to 987 today, with security forces recovering more bodies from 8 districts of the country, officials said. Rescuers struggled to trace those stranded amid intermittent rainfall and a fresh flood alert as water levels rose in rivers across several districts. Around 4,000 people, including 583 foreigners and several security personnel, still remain missing, while nearly 12,000 have been rescued, the National Disaster Risk Reduction and Management Authority said. The Nepalese authorities have provided details of the procedures for identification and handing over of the mortal remains of foreign nationals who died in the recent devastating flash floods, the Indian Embassy in Kathmandu said today. In a statement, the embassy said the government of Nepal has outlined a series of procedures that need to be completed before the mortal remains of foreign nationals can be handed over. According to the embassy, the process includes documentation of the mortal remains, recorded photographs and details, post-mortem examination and verifying the cause of death. The authorities will also formally establish the identity of the deceased, collect fingerprints, DNA and other forensic samples and verify the passport. Akashwani's FM Gold is celebrating its 25th anniversary today, marking 25 years since its launch on September 1, 2001. Originally known as AIR FM2, the service was introduced as an infotainment channel combining news, current affairs and entertainment. More from our correspondent.
3: FM Gold has evolved into one of Akashwani's prominent radio services, catering to listeners with a mix of information, analysis and entertainment. The channel carries regular news bulletins and headlines along with programs covering current affairs and issues of national importance. Some of its programs include popular shows such as Surkhiyon Mein, Spotlight, Market Mantra, Sports Scan and Countrywide among others. While programs such as Aaj Savere and Parikrama provide listeners with news, current affairs and analysis in a magazine format, reflecting FM Gold's focus on combining information with engaging presentation. FM Gold has also embraced digital platforms to expand its reach beyond traditional radio broadcasting. The channel is available at Akashwani's official live streaming services and the All India Radio Live mobile application, enabling listeners in India and across the world to access its programs anytime, anywhere. This is Vishnu PS for Akashwani News.
0: The India Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for very heavy rainfall to extremely heavy rainfall over Chhattisgarh for the day. Heavy rainfall is also expected over Himachal Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Jharkhand, Odisha, Uttarakhand and parts of northeast India till tomorrow. Heavy rainfall continues across Jharkhand, posing a risk of flooding in several parts of the state. The Met Department has issued orange and yellow alerts for several districts and warned of possible flash floods over the next 24 hours. We have a report.
4: According to IMD Ranchi, cloudy conditions with moderate to heavy rainfall and thunder showers are likely across most parts of Jharkhand today. The department has also warned of a low to moderate risk of flash floods across all districts over the next 24 hours, with waterlogging possible in saturated soils and low-lying areas. An orange alert has been issued for Garhwa, Palamu, Latehar, Lohardaga, Gumla, Simdega and West Singhbhum for heavy to very heavy rainfall. Meanwhile, in Jamshedpur, the water levels of the Kharkai and Subanrekha rivers are rising rapidly due to continuous rainfall and water being released from dams. According to the flood control cell, the Kharkai is flowing 2.52 meters above the danger mark, while the Subanrekha has also crossed the danger level. In Palamu's Husainabad, residents living along the Son River, including farmers and livestock owners, have been advised to remain alert as the river water level continues to rise. Mahesh Rahman, Akashwani News, Ranchi.
0: Benchmark domestic equity indices slipped into the negative zone in the afternoon session today. The Sensex fell 43 points to 76,915, while the Nifty was down by 51 points to 24,030 when reports last came in. World number one Aryna Sabalenka brushed aside Colombia's Camila Osorio 6-2-6-4 in the first round of the U.S. Open at Arthur Ashe Stadium in New York. Top seed Sabalenka's second round clash is against Russia's Polina Yatsenko, as she looks to become only the third woman after Serena Williams and Chris Evert to win three straight U.S. Opens. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi addresses 26th SEO summit, calls for an end to double standards on terrorism. Indian Railways approves 170 crore rupees for coverage 4.0 on the remaining 712 kilometer stretch of Moradabad Division Northern Railway. In Nepal, flood death toll reaches 987 following widespread devastation. Akashwani's FM Gold commemorates its silver jubilee today. IMD issues red alert for Chhattisgarh. Extremely heavy rainfall expected over parts of Jharkhand, Odisha and northeast India till tomorrow. With that, we end the midday news.
5: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Vishal Sharma. समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के लिए गाजियाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट। झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की नीति और दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन सभ्यता संवाद मंच का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इसका पहला सत्र इस वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
5: आज किर्गिस्तान में हुए शिखर सम्मेलन के बाद शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं ने बिश्केक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। संगठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी बिश्केक घोषणा पत्र के साथ साथ सदस्य देशों ने संस्थागत ढांचों को बेहतर बनाने और नए सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के उद्देश्य से व्यापक प्रस्तावों पर भी हस्ताक्षर किए। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत में वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है। इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरती। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। यह भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
1: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा।
5: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 987 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बलों ने देश के 8 जिलों से और शव बरामद किए हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 583 विदेशियों और कई सुरक्षाकर्मियों समेत करीब 4000 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि लगभग 12000 लोगों को बचा लिया गया है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के शवों की पहचान और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी साझा की है। दूतावास ने बताया कि नेपाल सरकार के अनुसार विदेशी नागरिकों के शवों को सौंपने के लिए कई चरणों की आवश्यकता होती है। इनमें शवों का दस्तावेजीकरण, तस्वीरें और विवरण रिकॉर्ड करना, पोस्टमार्टम, मृत्यु के कारण का सत्यापन, औपचारिक पहचान, उंगलियों के निशान, डीएनए और अन्य फोरेंसिक नमूनों का संग्रह, मृतक के पासपोर्ट या पहचान पत्र का सत्यापन और दूतावास या वाणिज्य दूतावास के साथ समन्वय शामिल है। दूतावास ने कहा कि यदि रिश्तेदार और परिवार के सदस्य नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध तस्वीरों और विवरणों के माध्यम से शवों की पहचान कर पाते हैं तो दूतावास शवों को सौंपने और स्वदेश वापसी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने में मदद करेगा।

0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नेपाल त्रासदी के दौरान मानवीय सहायता और बचाव कार्यों में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। बल के शपथ ग्रहण समारोह पर अपने लिखित संदेश में श्री शाह ने कहा कि संकट के समय एसएसबी की त्वरित समन्वित और संवेदनशील कार्रवाई उसके आदर्श वाक्य सेवा सुरक्षा और बंधुत्व का जीवंत प्रमाण है। समारोह में गृह सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा गृह मंत्रालय और सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। एसएसबी के 18 जवानों को वीरता पदक और 5 जवानों को विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए। गृह सचिव ने एसएसबी की आवासीय परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और ज्यादा खबरों के लिए @expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेलमार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कवच स्वदेशी रूप से निर्मित स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए 233 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस आधुनिक प्रणाली से पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नल के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। ये स्वदेशी स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को भी सुगम बनाएगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि सरकार ने 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज के दूसरे वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान में श्री सेठ ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसने भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा उड़ान अहमदाबाद से रवाना होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये उड़ान दिल्ली होते हुए दुनिया भर में अलग अलग स्थानों तक यात्री सेवा उपलब्ध कराएगी।
1: अहमदाबाद में इस फैसिलिटी की शुरुआत के साथ गुजरात का यह प्रमुख शहर भारत के बढ़ते हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में वाराणसी और अमृतसर के बाद तीसरा क्षेत्रीय केंद्र बन जाएगा। यह पहल सरकार की उस व्यापक योजना का हिस्सा है जिसका मकसद छोटे और गैर मेट्रो शहरों से विदेश जाने वाले यात्रियों के हवाई सफर को आसान और सुविधाजनक बनाना है। इजी कनेक्ट सुविधा के तहत यात्री अब अपने आखिरी विदेशी गंतव्य के लिए चेक इन, सामान जमा करने से लेकर कस्टम और इमिग्रेशन जैसी सभी जरूरी औपचारिकताएं सीधे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पूरी कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दिल्ली जैसे प्रमुख हब एयरपोर्ट पर उतरने के बाद यात्रियों को अपना सामान दोबारा लेने, फिर से सुरक्षा जांच कराने या इमिग्रेशन की लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सीधे अपने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के प्रस्थान गेट तक जा सकेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि हर गुजरते साल के साथ एआई समाज में तेजी से शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब कम उम्र के विद्यार्थी भी पढ़ाई और रोजमर्रा के कामों में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री जोशी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के 66वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है। ये चैनल वर्ष 2001 में 1 सितंबर को शुरू हुआ था। ये एआईआर एफएम गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। एफएम गोल्ड पर समाचार, समसामयिक मामलों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। एक रिपोर्ट।
2: श्रोताओं, इस धुन को सुनते ही आपके मन में आकाशवाणी की अमर विरासत से जुड़ा एक अद्भुत उत्साह उमड़ने लगा होगा। जी हाँ, ये वही धुन है जिसने पीढ़ियों को ज्ञान और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी से जोड़ा। पिछले कुछ वर्षों में एफएम गोल्ड आकाशवाणी की प्रमुख रेडियो सेवाओं में से एक बनकर उभरा है। इस चैनल पर नियमित समाचार बुलेटिन और सुर्खियाँ प्रसारित होती हैं। साथ ही इस चैनल पर समसामयिक और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। एफएम गोल्ड के कुछ लोकप्रिय कार्यक्रमों में स्पॉटलाइट, मार्केट मंत्रा, स्पोर्ट्स स्कैन और कंट्री वाइड शामिल हैं। वहीं आज सवेरे और परिक्रमा जैसे कार्यक्रम भी श्रोताओं को खासे पसंद आते हैं। अभी तो बात हुई एफएम गोल्ड के प्रमुख कार्यक्रमों की, लेकिन इसके अलावा भी इस चैनल ने पिछले 2 दशकों में श्रोताओं को मनमोहक संगीत से मनोरंजित किया है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य के साथ आकाशवाणी लगातार जनता के बीच विश्वसनीय और सटीक जानकारी का माध्यम बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और बीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
4: मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर जलभराव के कारण आमजन को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण संपर्क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध है। उधर अल्मोड़ा में भारी बारिश के चलते सोमेश्वर के बड्यूदा में देर रात एक मकान के भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोग की मृत्यु हो गयी। वहीं देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में तेज बहाव में आने से एक वाहन में सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गयी, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: झारखंड में तेज बारिश जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
5: मौसम केंद्र के अनुसार आज झारखंड के लगभग सभी हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में अगले 24 घंटे के लिए कम से मध्यम स्तर के फ्लैश फ्लड का खतरा जताया है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अचानक तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और फ्लैश फ्लड की स्थिति बन सकती है, जिसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं रांची, खूंटी, चतरा और सरायकेला खरसावा में येलो अलर्ट जारी करते हुए कहीं कहीं भारी बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। महेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: घरेलू शेयर बाजारों में आज दोपहर कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 43 अंक की गिरावट से 76,915, जबकि निफ्टी 51 अंक की गिरावट के साथ 24,030 पर कारोबार कर रहा था। अफ्रीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में विश्व वरीयता प्राप्त एरिना सवालेंका ने न्यूयॉर्क में कोलंबिया की कैमिला ओसोरियो को पराजित कर दिया है। सवालेंका का अगला मुकाबला रूस की पोलिना यात्सेन्को से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के 4थे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट। झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर्स अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस वक्त दिन के 2:30 हुए हैं और अब वक्त है आपके मनपसंद का सेगमेंट एक ही कलाकार का। इस कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो श्रोताओं, आज के जो हमारे कलाकार हैं वे न सिर्फ उर्दू साहित्य के 4 स्तंभों में से एक हैं, बल्कि भारतीय सिनेमा के एक महान कथाकार, पटकथा लेखक और निर्देशक भी है। आज उनके जन्म दिवस

के अवसर पर हम उन्हीं के गीतों को सुनवाएंगे और साथ ही साथ उनसे जुड़ी कई सारी दिलचस्प बातें भी करेंगे। फिलहाल सुनते हैं ये गीत और मुझे फटाफट से संदेश भेजिए कि हम किस कलाकार की बात कर रहे हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और एक ही कलाकार में हमारे जो आज के कलाकार हैं वो है राजेंद्र सिंह बेदी जी। हाँ, अभी जो आपने गीत सुना सन 1970 में रिलीज हुई फिल्म दस्तक से, जिसमें उन्होंने बतौर निर्देशक के रूप में काम किया, और इस फिल्म के गीतों को आज भी सिनेमा का मास्टरपीस माना जाता है।

श्रोताओं, उनकी लघु कहानियों का पहला संग्रह है दानो दाम, जिसमें उनकी प्रमुख कहानी गरम कोट शामिल है, 1940 में प्रकाशित हुआ था। सन 1942 में उन्होंने लघु कहानियों को का अपना दूसरा संग्रह ग्रहण प्रकाशित किया। सन 1943 में उन्होंने छोटे फिल्म स्टूडियो महेश्वरी फिल्म्स में काम करना शुरू किया। हालांकि डेढ़ साल बाद वे ऑल इंडिया रेडियो लौट आए और उन्हें जम्मू में तैनात किया गया, जहां उन्होंने सन 1947 तक काम किया। विभाजन के समय तक राजेंद्र सिंह बेदी कई और लघु कथाएं प्रकाशित कर चुके थे और एक विपुल लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। उनके उर्दू उपन्यास एक चादर मैली सी, जिसका अंग्रेजी अनुवाद खुशवंत सिंह ने आई टेक दिस वुमेन के रूप में किया था, इसको सन 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। बाद में इस पुस्तक का हिंदी, कश्मीरी और बंगाली में अनुवाद भी किया गया।

श्रोताओं, हमारे पास भर भर के संदेश आ रहे हैं। चलिए उन संदेशों को पढ़ते हैं। हमारे पास जो पहला संदेश आया है वो आया है नितेश देवांगन का। इनके साथ है दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्ण देवांगन, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से। अगला जो संदेश है वो चंदू कुलकर्णी का है, और ये इनके साथ है दुर्गाई से, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं दुर्गाई सेलू से, और इनके साथ है सीआर कुलकर्णी। अगला जो संदेश है वो है ताज मोहम्मद का, इनके साथ है गुलाम साबिर राही, मिराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से। अगला जो संदेश है वो है तुलसी मस्कीन का, और इनके साथ है वीना मस्कीन, डब्बू सम्राट, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिदान खुराना। अगला जो संदेश है मोहम्मद कमर का है, और ये हमें लेकर भेज रहे हैं गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली। अगला जो संदेश है अनिल मोहन का, इनके साथ है उषा मोहन, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। जो अगला संदेश आया है वो आया है सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर, सोनीपत से। धर्मेंद्र छीपा जी ने हमें अगला संदेश भेजा है, भोपालगढ़ राजस्थान से, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार। फारूक अली खान का अगला संदेश है, और साथ ही हमें संदेश भेजा है वंडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। राधेश्याम देवांगन ने हमें संदेश भेजा है भवरपुर बसना से, और इनके साथ है चंपा देवांगन। फागुराम यादव संबलपुर कांकेर से हमें लिखकर भेज रहे हैं, इनके साथ है ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।

बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों जैसे मधुमति, अभिमान, अनुपमा और सत्यकाम के बेहतरीन संवाद और पटकथा राजेंद्र सिंह बेदी ने ही लिखे थे। अगर कुछ उनकी व्यक्तिगत जीवन और आदतों के बारे में बात करें तो उन्हें मीठे पान का शौक बहुत था। बेदी जी को गुलाब की पंखुड़ियों वाले खास मीठे पान और तंबाकू वाले पान का बेहद शौक था। वे अपने पास आने वाले मेहमानों को भी जबरदस्ती पान खिलाते थे और उनके साथ घंटों लतीफे और कहानियां शेयर करते थे। एक बार की जो फिल्म बनी है, जो बेनाम फिल्म बनी है, वो उस एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक बार बेदी जी रास्ते से एक बीमार और लाचार व्यक्ति को अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टर ने उनसे कहा, बेदी साहब आप चुपचाप यहां से निकल जाइए, शायद इस आदमी की हत्या की गई और आप फंस जाएंगे। इसी सच्ची घटना को आधार बनाकर उनके बेटे नरेंद्र बेदी ने अमिताभ बच्चन स्टारर मशहूर सस्पेंस फिल्म बेनाम, जो कि 1974 में बनाई गई थी।

तो अगला संदेश आया दर्शन गौर का, ये मिलकर भेज रहे मेरठ से और इनके साथ है कविता गौर। साथ ही जो अगला संदेश हुआ अनिल मोहन का है, हमें जो लिखकर भेज रहे हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, इनके साथ है उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक। अगला जो संदेश है वो है धर्मेंद्र चीपा का, इनके साथ है कपिल चीपा, ईशान चीपा, पूजा परिहार, गुरमीत सिंह हमें लिखकर भेज रहे हैं साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग से, अशोक कुमार सहगल, इंद्रबान सिंह हमें लिखकर भेज रहे, इनके साथ अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, चिरमिरी कुरासिया कालरी से। अगला जो संदेश है प्रकाश वर्मा में लिखकर भेज रहे, इनके साथ है निखिल वर्मा और इनके अन्य सदस्य, संदीप मक्कर हमें लिखकर भेज रहे, इनके साथ है ज्योति मक्कर, भरत मक्कर, कमल सहानी जालंधर से। और साथ ही जो अगला संदेश है प्रवीण हागोड़े का जी है, इनके साथ है योगिता हागोड़े, कुमारी प्रियाली, पार्थ हागोड़े, साथ ही इनके अन्य परिवार के सदस्य हमें लिखकर भेज रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे मधु मतीत फिल्म का गीत मन्नटे और कोरस की और साथियों की आवाजों में। फिलहाल इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम आज के कलाकार यहीं पर समाप्त होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए विदा, लेकिन कहीं जाइए नहीं, अगले भी कार्यक्रम में मैं आपके साथ बनी रहूंगी। फिलहाल सुनिए ये गीत।

ये में भी 71 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हो चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी। ये आकाशवाणी है, अब आप नई दिल्ली से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शंघाई तआवुन तंजीम की 26वीं सरबरा कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और दहशतगर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त न करने और इस मामले पर दोहरा मयार इख्तियार करने की रविश तर्क किए जाने पर जोर दिया। भारतीय रेलवे ने शुमाली रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन के बकिया 712 किलोमीटर के हिस्से पर कवच निजाम के चौथे मरहले के लिए 170 करोड़ रूपये की मंजूरी दी है। नेपाल के सैलाब में मरने वालों की तादाद बढ़कर 987 हो गई है। और आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल मुमताज नशरियाती खिदमत के 25 साल मुकम्मल होने पर आज अपनी सिल्वर जुबली मना रहा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम की 26वीं सरबरा कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने मेंबर मुल्कों पर जोर दिया कि दहशतगर्दों को सरमाया फराहम करने, उनकी भर्ती, लोगों को शिद्दत पसंदी के रास्ते पर डालने और उन्हें महफूज पनाहगाहें फराहम करने के पूरे इको निजाम को खत्म किया जाए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी के मामले पर किसी तरह के दोहरे मयार की कोई गुंजाइश नहीं है।

0: शहर नामक का ऐलान किया है। सफारत खान के मुताबिक इसमें बाकियात का दस्तावेजी सबूत, रिकॉर्ड की गई तस्वीरें और मुतालिका तफसीलात, पोस्टमार्टम जांच और मौत की वजूहात की तस्दीक शामिल है। मुतालिका हुकाम मरने वालों की शनाख्त का बाजाब्ता तौर पर पता लगाएंगे, उंगलियों के निशान, डीएनए और दीगर फॉरेंसिक नमूने इकट्ठा करेंगे और पासपोर्ट की तस्दीक करेंगे। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड आज अपनी 25वीं सालगिरह मना रहा है। इसकी शुरुआत 1 सितंबर 2001 में की गई थी। शुरुआत में इसको एआईआर एफएम 2 के नाम से जाना जाता था, जिस पर खबरों, ताजा हालात और तफरी के प्रोग्राम नशर किए जाते थे। पिछले कुछ वर्षों में एफएम गोल्ड आकाशवाणी की एक अहम रेडियो सर्विस बनकर उभरा है, जो अपने सामईन के लिए इत्तलात, तजिए और तफरी पर मबनी प्रोग्राम नशर करता है। सुर्खियों में स्पॉटलाइट, मार्केट मंत्रा, स्पोर्ट्स स्कैन और कंट्री वाइड एफएम गोल्ड के कुछ मकबूल प्रोग्राम हैं। आज सवेरे और परिक्रमा जैसे प्रोग्राम खबरों और ताजा हालात और तथ्यों पर मुश्तमिल हैं, जिससे एफएम गोल्ड के इत्तला और तफरी को यकजा करने के नजरिए की अक्कासी होती है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आज बताया है कि यूक्रेन पर रूस के ताजा हमलों में हलाक होने वाले 12 अफराद में एक भारतीय शहरी भी शामिल है। यूक्रेन पर हुए ताजा हमलों में रिहायशी इमारतों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के कई शहरों में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से ये हमले किए गए हैं। ओडिशा और उसके मुजाफाती इलाके को गाइडेड बमों और ड्रोन हमलों से निशाना बनाया गया, जिसके सबब हजारों घरों को बिजली की सप्लाई नहीं मिल सकी। जनरल ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर आज ये जानकारी दी। न्यूयॉर्क में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आलमी नंबर 1 बेलारूस की एरिना साबालेंका पहले राउंड में कोलंबिया की कैमिला ओसोरियो को 6-2 और 6-4 से हरा दिया। अब दूसरे राउंड में साबालेंका का मुकाबला रूस की पोलिना लार्सेनको से होगा। नंबर 1 खिलाड़ी साबालेंका की कोशिश यह होगी कि वो सेरेना विलियम्स और क्रिस एवर्ट के बाद लगातार 3 यूएस ओपन जीतने वाली तीसरी खातून खिलाड़ी बन जाए। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शंघाई तआवुन तंजीम की 26वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और दहशतगर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त न करने और इस मामले पर दोहरा मयार इख्तियार करने की रविश तर्क किए जाने पर जोर दिया। भारतीय रेलवे ने शुमाली रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन के बकिया 712 किलोमीटर के हिस्से पर कवच निजाम के चौथे मरहले के लिए 170 करोड़ रूपये की मंजूरी दी है। नेपाल के सैलाब में मरने वालों की तादाद बढ़कर 987 हो गई है। और आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल मुमताज नशरियाती खिदमत के 25 साल मुकम्मल होने पर आज अपनी सिल्वर जुबली मना रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश गाइड फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, नगमा निगार शैलेंद्र, मौसीकार एस डी बर्मन।

फिल्मी नगमे के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत प्रोग्राम अदबनुमा। अदबनुमा प्रोग्राम के तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। हजम अमूल अदबनुमा के आज के शुमारे में आप समात फरमाएंगे कलानी शायर के तहत शायर से।

0: का काम किसी तख्लीक से एक अफसाना और एक गजल मौसीकी के साथ भी हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सालिम पैदा करते हैं कलाम शायर से। इंसान हमेशा से तरसील का ख्वाहिशमंद रहा है, वो चाहता है उसकी बात कम से कम अल्फाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। वो ये भी चाहता है कि उसका अंदाज़ बयां खूबसूरत हो और दिल पर तादेर नक्श रहे। इसके लिए उसने शायरी का सहारा लिया और धीरे धीरे अपनी बात कहने का उसको सलीका आ गया। शायरी के पैराए में कही गई बात न सिर्फ हमारे जहन दिल पर नक्श हो जाती है बल्कि मुद्दतों एक तासुर कायम रखती है। आज के प्रोग्राम की इब्तदा कर रहे हैं मुनफरिद लबो लहजे के क्लासिकल शायर जनाब मुजफ्फर रजमी के कलाम से। आइए सुनते हैं।
1: गजल का मतलब समाज करें किया है, मोहब्बत का दिया मध्यम न होगा, मोहब्बत का दिया मध्यम न होगा,

सिरज किया है, दिलों में शक्ति गुंजाइश जब तक, दिलों में शक्ति गुंजाइश है जब तक, ताल्लुक कोई मुसीबत कम न होगा, ताल्लुक

तिरस्कृतम खुलेंगे जब अलम इंसानियत के, खुलेंगे जब अलम।

गजल का आखिरी शेर, मेरा एक शेर फख्र जिंदगी है, मेरा एक शेर फख्र

उनके हाथ में जरूर होते। फिर एक दिन इनायत साहब घर आए और कहने लगे, आरिफा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी में काम करो, मैं तुमको इंटीरियर डेकोरेटर का ऑफर दे रहा हूँ, मैंने तुम्हारे खाके देखे, मुझे बहुत अच्छे लगे, तुम बहुत हुनरमंद हो, क्रिएटिव हो, मेरी कंपनी को तुम जैसी काबिल डेकोरेटर की जरूरत है, क्या तुम्हें मंजूर है? मैं खुशी के मारे फूली नहीं समाई। इनायत की कंपनी बहुत अच्छी थी, कंपनी में मेरे काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, उनमें से एक रोजी थी। एक दिन हम दोनों कैंटीन में साथ में लंच कर रहे थे, तब अचानक बातचीत का रुख इनायत की तरफ मुड़ गया। रोजी खुशी खुशी अपने सर की बात कर रही थी, इनायत सर की बदौलत आज हमारी कंपनी का शुमार हिंदुस्तान की गिने चुने कंस्ट्रक्शन कंपनियों में आता है, इनायत सर कितनी मेहनत व मशक्कत से काम करते हैं, हर काम को तकमील के साथ अंजाम देते हैं, आतिरा कितनी खुशनसीब है, वैसे दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है ना? आतिरा? आतिरा कौन? मैंने घबराहट में पूछा। अरे तुम्हें हमारे साथ काम करते हुए साल भर होने को आ रहा है और तुम आतिरा को नहीं जानती? वो इनायत सर की होने वाली बीवी है, दफ्तर में एक दो बार आ चुकी है, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। आतिरा का जैसा नाम है वैसे गुण, मुझे पूरा यकीन है वो इनायत सर के घर को खुशियों से महका देगी। रोजी आतिरा के गुण गा रही थी और मुझे अपने दिल के टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरे दिमाग में तरह तरह के सवाल उठने लगे, इनायत ने मुझे आतिरा के बारे में क्यों नहीं बताया? इनायत और मेरी दोस्ती इस एक साल में और गहरी, मजबूत और पुख्ता हो गई थी, फिर मुझे आतिरा के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या वो मुझे गैर समझते थे? अब अचानक ऐसा लगने लगा कि मैं दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। गर्मी के दिन वापस आ गए थे और गर्मी के साथ फिर से वही परेशानियां वापस आ गई थी, मेरी जिंदगी एक बार फिर दर्द अंगेज बन गई थी। आरिफा आज रात की प्रेजेंटेशन तैयार है ना? मैंने चौंकर इनायत को देखा। जी सर बिल्कुल तैयार है, मैंने जवाब दिया। अरे चौंक क्यों गई? इनायत ने पूछा। कुछ नहीं, यूं ही, रोजी से मेरी बातचीत एक महीने पहले हुई थी, वो दिन था और आज का दिन है, तब से सब कुछ बदल गया, मेरा किसी भी चीज में दिल नहीं लगता, मुझे ये महसूस होता है कि मेरी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती। जब से रोजी ने मुझे आतिरा के बारे में बताया, मैं रातों को सो नहीं सकती, रोती रहती हूँ। आज रात इनायत और मैं एक अंग्रेजी क्लाइंट के साथ नोएडा में शाम का खाना खाने जा रहे हैं। ये क्लाइंट नोएडा में हमारी कंपनी की मदद से एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बना रहा है, इसका डेकोरेशन मेरे सुपुर्द है। इस सिलसिले पर गुफ्त शुनीद करने के लिए इनायत मुझे अपने साथ ले जा रहा है। मेरे दिल में कई दिनों के बाद खुशी की एक अजीब सी लहर दौड़ रही थी। इतने चुप क्यों हो? इनायत ने पूछा। कुछ नहीं, यूं ही, मैंने खामोशी से जवाब दिया। कुछ नहीं, यूं ही, इनायत ने मेरी आवाज की नकल उतारते हुए कहा। इस पर मुझे हंसी आई और मैं जोर से हंसने लगी। बस हमेशा ऐसे ही हंसते रहना, तुम्हारी हंसी मौसीकी की तरह है, इनायत ने मेरी तरफ संजीदा लहजे में कहा। क्या? मैंने चौंक कर पूछा। कुछ नहीं, यूं ही, इनायत ने जवाब दिया। हम लोग इनायत की गाड़ी में नोएडा जा रहे थे और हम दोनों बिल्कुल चुप थे। इनायत ने एक बार फिर टोका। काफी दिनों से तुमको देख रहा हूँ, इतनी गुमसुम से क्यों रहने लगी हो? ऐसा लगता है आरिफा आरिफा नहीं है, कोई प्रॉब्लम है? मुझे बताओ, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हूँ। हमेशा नहीं रहोगे, बस यही प्रॉब्लम है, मैंने दिल ही दिल में कहा। लेकिन इनायत को देखकर मैंने सिर्फ इतना कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इनायत ने एक लंबी सी सांस ली, फिर मौजू बदलते हुए कहा, आसमान पर बादल छाए हुए हैं, लगता है मौसम बदलने वाला है, काश ऐसा हो, गर्मी बहुत परेशान कर रही है। इतने में हम होटल पहुंच गए, डिनर बहुत अच्छा गया, क्लाइंट को मेरी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी लगी, अब तो बस काम शुरू करने की देर थी। अचानक मौसलाधार बारिश होने लगी और देखते देखते हर जगह पानी ही पानी नजर आने लगा। इनायत और मैं डिनर के बाद खुशी खुशी दिल्ली वापस लौट रहे थे, पानी की वजह से गाड़ी चलानी मुश्किल थी, हवा भी काफी तेज चल रही थी। कुछ दूरी पर एक पुलिस वाले ने गाड़ी रोकी।

0: और हमें बताया कि खराब मौसम की वजह से सड़क पर दरख्त गिर गए थे जिससे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हमें मजबूरन गाड़ी में ही सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। बाहर इतना पानी था कि पैर नहीं रखा जा रहा था। बारिश हो तो मुश्किल, न हो तब भी मुश्किल, इनायत ने कहा। आज रात की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। तुम हर चीज में अच्छी हो, जब तुम्हारे साथ होता हूँ तो हर शय अच्छी लगने लगती है। मैं इसी तरह तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। आरिफा, मेरी शरीके हयात बनोगी? इनायत के हाथों में एक अंगूठी थी जो वो मेरी तरफ बढ़ा रहा था। तो फिर आतिरा? मैंने हड़बड़ाहट में पूछा। आतिरा? आतिरा क्या? इनायत ने हैरानी से पूछा। तुम्हारी शादी तो उससे होने वाली है, ऑफिस में सबको पता है। ये बात सच है कि हमारे घर वाले एक दूसरे को जानते हैं और इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ आरिफा। जब से मैंने तुमको देखा है तब से मेरी आंखों में तुम ही समाई हुई हो। मैंने अपने वालिदैन को तुम्हारे बारे में बताया है और वो राजी है। रहा आतिरा का सवाल, वो एक अच्छी दोस्त है और उसे तुम्हारे बारे में पता है। तुमने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, लेकिन मैं फौरन हाँ न कर सकी। मेरे कानों में आतिरा के गुण रोजी की आवाज में गूंज रहे थे। मैं बेयकीनी की हालत में इनायत को फटी फटी आंखों से देखते ही जा रही थी कि उनकी बातों का एतबार करूं या न करूं, लेकिन इनायत के चेहरे की नूरानी चमक यकीन का एहसास दिलाने के लिए काफी थी। और न जाने कब मेरे हाथ इकरार में इनायत के हाथों में चले गए। उसने लम्स के एहसास से मुझे चौंका दिया।
1: आबे हयात, अभी आप मोहतरमा बीबी अविनाश से उनका अफसाना सुन रहे थे। और हज़्ब-ए-मामूल अब यानी कि वादे के मुताबिक ये गजल आप तमाम सामईन की समातों की नजर है। शहाब खान की आवाज में कलाम अमीर गजलबाश का है।

फिल्मा दिखाना करो ना बहाना बहाना बहाना करो ना बहाना।

है काबू। वो पैसा जरा लाना, वो पैसा जरा लाना लाना लाना, वो पैसा जरा लाना, आज पहली तारीख है, कुछ है कमाना।

सामने आए मेहमान है, बड़े ही करीब है, पुराने मेहरबान है, बड़े ही करीब है, पुराने मेहरबान है। अरे देश को बचाना बचाना बचाना, देश को बचाना।

जी को गम है कि पैसों चलो हाथ से, अरे लुटेगा खजाना खजाना खजाना, टूटेगा खजाना आज पहली तारीख है।

0: मजेदार है। आगा है भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता बाली है, अशोक कुमार है, नर्गिसा कपूर है, दिलीप कुमार है। गीतों का तूफान है, नाच की बहार है, नाच की बहार है।
1: पाताने का दसाना, पाताने का दसाना, पाताने का दसाना।
0: अरे वापस नहीं जाना, जाना जाना, वापस नहीं जाना।

तारीख है, खुश है जमाना, आज पहली तारीख है, पहली तारीख जी पहली तारीख है, दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है, खुश है जमाना, आज पहली तारीख है, पहली तारीख जी पहली तारीख है।

दिल है तेरा।

दिल है तेरा तेरा।

तेरा दिल है मेरा, तेरा दिल है मेरा, जब से हमने दिल बदले।

पिछले कई फिल्म दिन अखबार सुन रहे थे अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण की आवाजों में गुगन गाते समीर मौसीकार नदीम शरवान और अपनी त्रिदेव फिल्म का नगमा आवाजें हैं अमित कुमार सपना अवस्थी और साथियों की नगमन गारन बशी मौसीकार विजू शाह।

रहे थे मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। नगमनिगार थे आनंद बख्शी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल। और सामने सुनिए दर्शन नगमा उदित नारायण की आवाज में।

मुझे फिल्म के अलावा आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और चितल कर की आवाजों में नगमा निगार थे राजेंद्र कृष्ण मुस्कार श्री रामचंद्र। इस नगमे के साथ ही आज का फिल्म मौसीकी का प्रोग्राम अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 4:50 हुए हैं। अब खबरें नशर होंगी। ये आकाशवाणी है। अब आप माजिद अली से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शंघाई तआवुन तंजीम की 26वीं सरबरा कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और दहशतगर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त न करने और इस मामले पर दोहरा मयार इख्तियार करने की रविश तर्क किए जाने पर जोर दिया। दिफा के वजीर मामलकत संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत की दिफाई शोबे में बढ़ती हुई खुद इनसारी का इजहार होता है। भारत ने सिंधु आबी मुआहदे पर सालिसी की अदालत के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। नेपाल में भारतीय सफारतखाने ने शहरियों की शनाख्त और उनके जसद खाकी वतन वापस लाने के तरीकेकार का खाका पेश किया है और आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल मुमताज नशरियाती खिदमात के 25 साल मुकम्मल होने पर आज अपनी सिल्वर जुबली मना रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम की 26वीं सरबरा कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वजीर आजम ने मेंबर मुल्कों पर जोर दिया कि दहशतगर्दों को सरमाया फराहम करने, उनकी भर्ती, लोगों को शिद्दत पसंदी के रास्ते पर डालने और उन्हें महफूज पनागाहें फराहम करने के पूरे इको निजाम को खत्म किया जाए। जनाब मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी के मामले पर किसी तरह के दौरे मेयार की कोई गुंजाइश नहीं है। शंघाई तआवुन तंजीम SCO के मेंबर मुल्कों के रहनुमाओं ने तंजीम के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर बिश्केक ऐलानिये पर दस्तखत भी किए। इसके अलावा मेंबर मुल्कों ने मुख्तलिफ करारदादों पर भी दस्तखत किए जिनका मकसद इदारा जाती फ्रेमवर्क को बेहतर बनाना और सिक्योरिटी को लायक जदीद तर्ज के खतरात से निमटना है। शंघाई तआवुन तंजीम की सरबरा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी टकराव और लड़ाई के मामले पर तश्वीश का इजहार भी किया। जनाब मोदी ने कहा कि जंग और महाआजाराई किसी मसले का हल नहीं है और सभी तनाजात बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल किए जाने चाहिए। वजीर आजम ने कहा कि भारत उन सभी कोशिशों की हिमायत करता है जिनके जरिए मार्केट्स को बाहम मुंसलिक किया जाए, तिजारत में सहूलत पैदा हो और तरक्की के नए रास्ते खुले। साथ ही उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि इस तरह की कोशिशें करते वक्त सभी मुल्कों के इख्तदार आला और इलाकाई सालमियत का पूरा एहतराम किया जाना चाहिए। सरबरा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले साल शंघाई तआवुन तंजीम के तहजीबी मुज़ाकरात फोरम की तजवीज पेश की।

थी। वजीर आजम ने इस बात पर मसर्रत का इजहार किया कि इसका पहला इजलास इस साल भारत में होगा। दिफा के वजीर ममलिकत संजय सेठ ने आज कहा है कि हुकूमत ने सालाना दिफाई पैदावार के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का हदफ तय किया है और 2029 तक दिफाई बरामद को 50,000 करोड़ रुपए करने का हदफ रखा गया है। मुश्तरका जंगी मुताले के लिए मरकज का दूसरा सालाना ट्राइडेंट लेक्चर के प्रोग्राम में खिताब करते हुए जनाब सेठ ने कहा कि मुल्क की दिफाई पैदावार तकरीबन 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि भारत की दिफाई ताकत एक बड़ी तब्दीली का मुशाहिदा कर रही है और मुल्क तेजी से मुल्क में ही तैयार किए गए दिफाई निजाम और दिफाई सलाहियतों पर इनसार में इजाफा कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करते हुए जनाब सेठ ने कहा कि उस ऑपरेशन से भारत की दिफाई शोबे में बढ़ती हुई खुद इनसारी का इजहार होता है। महकमे खजाना और कॉरपोरेट उमूर की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत ने यह दिखा दिया है कि वो अपनी तरक्की से मुतासर हुए बगैर आलमी मीशत में होने वाली तब्दीलियों का सामना कर सकता है। साथ ही उन्होंने दरामद की जाने वाली तवानाई और कीमियावी खाद पर मुल्क के इनसार को भी तस्लीम किया। महतरमा सीतारमन ने भारत को एक मुतहरिक और फौरी इकदाम करने वाली मीशत करार दिया जो बाहरी चैलेंजों से निपटने की सलाहियत रखती है। उन्होंने कहा कि भारत खाम तेल और पेट्रोलियम अशिया दरामद करने वाले दुनिया के बड़े मुल्कों में शामिल है। भारत ने आलमी बैंक की जानिब से दरिया सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे के बारे में सालिसी अदालत के फैसले को सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया है। भारत ने मस्कूरा ट्राइब्यूनल के अथॉरिटी को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उसके फैसले कानूनी एतबार से काबिल कबूल नहीं है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत खारजा ने कहा है कि भारत ने कभी भी सालिसी से मुतालिक इस पैनल को तस्लीम नहीं किया और न ही इसकी कार्रवाई में हिस्सा लिया और वो इसके फैसलों का पाबंद नहीं है। भारत ने यह बात दोहराई है कि दरियाए सिंध से मुतालिक आदि मुआहदा अब भी मुअत्तल है। यह बयान एक में सालिसी से मुतालिक अदालत के इस फैसले के बाद सामने आया है कि मस्कूरा मुआहदे को मौकूफ रखने की भारत की वजूहात के हवाले से इसे मुअत्तल रखने यह खत्म करने को सही नहीं ठहराया जा सकता। मस्कूरा पैनल ने भारत से कहा था कि वो 1960 के पानी में हिस्सेदारी के समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता रहे। भारत ने अलबत्ता यह दलील पेश करते हुए फैसले को खारिज कर दिया कि मस्कूरा पैनल ही मुआहदे की शराइत की खिलाफ वर्जी करते हुए कायम किया गया था। वजारत खारजा ने कहा है कि मुआहदे के ताल्लुक से भारत के आजादाना फैसलों या बुनियादी ढांचे के उसके प्रोजेक्टों के ताल्लुक से पैनल का कोई दायरा इख्तियार नहीं है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नेपाल के हुकाम ने उन गैर मुल्की शहरियों की शनाख्त और उनके जसद खाकी हवाले करने के तरीकेकार की तफसीलात फराहम की हैं जो हाल ही में अचानक तबाहकुन सैलाब से आने से हलाक हुए हैं। काठमांडू में भारतीय सफारतखाने ने आज ये जानकारी दी है। एक बयान में सफारतखाने ने कहा है कि नेपाल सरकार ने गैर मुल्की शहरियों के जसद खाकी हवाले करने से मुतालिक तरीकेकार को पूरा करने की जरूरत के ताल्लुक से इकदाम का ऐलान किया है। सफारतखाने के मुताबिक इसमें बाकियात का दस्तावेजी सबूत, रिकॉर्ड की गई तस्वीरें और मुतालिक तफसीलात, पोस्टमार्टम जांच और मौत की वजूहात की तस्दीक शामिल है। मुतालिक हुकाम मरने वालों की शनाख्त का बाज़ाब्ता तौर पर पता लगाएंगे, उंगलियों के निशान, डीएनए और दीगर फोरेंसिक नमूने इकट्ठा करेंगे और पासपोर्ट की तस्दीक करेंगे। नेपाल में आए तबाहकुन सैलाब में मरने वालों की तादाद बढ़कर 987 हो गई है। हुकाम ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क के 8 जिलों से मजीद लाशें बरामद कर रही हैं। कई जिला की नदियों की आबी सतह में इजाफा हो गया है और एक अचानक सैलाब का अलर्ट और रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से बचाव के काम में खलल पड़ रहा है। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड आज अपनी 25वीं सालगिरह मना रहा है। इसकी शुरुआत 1 सितंबर 2001 में की गई थी। शुरुआत में इसको AIR FM 2 के नाम से जाना जाता था जिस पर खबरों, ताजा हालात और तफरी के प्रोग्राम नशर किए जाते थे। पिछले कुछ वर्षों में एफएम गोल्ड आकाशवाणी की एक अहम रेडियो सर्विस बनकर उभरा है जो अपने सामईन के लिए इतलात, तजिये और तफरी पर मबनी प्रोग्राम नशर करता है। सुर्खियों में स्पॉटलाइट, मार्केट मंत्रा, स्पोर्ट्स स्कैन और कंट्री वाइड एफएम गोल्ड के कुछ मकबूल प्रोग्राम हैं।
आज सवेरे

0: और परिक्रमा जैसे प्रोग्राम खबरों और ताज़ा हालात और तर्जियों पर मुश्तमिल हैं, जिससे एफएम गोल्ड के इत्तला और तफरी को यकजा करने के नजरिए की अक्कासी होती है। भारतीय रेलवे ने शुमाली रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन के बाकी 712 किलोमीटर रूट पर कवच 4-0 के लिए 170 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। रेलवे की वजारत ने कहा है कि इस मंजूरी से मुल्क में ही तैयार किए गए ऑटोमेटिक रेल हिफाजती निजाम के जरिए रेलवे के हिफाजत के बुनियादी ढांचे को मजबूती हासिल होगी। शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल बैन अल्कवामी हवाई अड्डे पर बैन अल्कवामी परवाजों से मुतालिक हब एंड स्पोक खिदमत का इफ्तिताह करेंगे। इजी कनेक्ट खिदमत की इफ्तिताही परवाज AI-1121 अहमदाबाद से परवाज करेगी। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शंघाई तआवुन तंजीम की 26वीं सरबरा कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और दहशतगर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त न करने और इस मामले पर दोहरा मयार इख्तियार करने की रविश तर्क किए जाने पर जोर दिया। दिफा के वजीर ममलिकत संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत की दिफाई शोबे में बढ़ती हुई खुद इनसारी का इजहार होता है। भारत ने सिंधु आबी मुआहदे पर सालसी की अदालत के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। नेपाल में भारतीय सफारतखाने ने शहरियों की शनाख्त और उनके जसद खाकी वतन वापस लाने के तरीकेकार का खाका पेश किया है। और आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल मुमताज नशरियाती खिदमत के 25 साल मुकम्मल होने पर आज अपनी सिल्वर जुबली मना रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे चाहते हैं यहाँ हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होती है। शाम 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। शब में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम बिरादर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ थी आकाशवाणी का ए अमृतसर केंद्री। नमस्कार, आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस हिंदी ए पंजाबी सेवाई। शाम के 5 बजे ने हम सारी दूजी सभा के प्रोग्राम शुरू होंगे ने। स्वामीन सब तो पहला तुसी समात फरमाओगे सराय की प्रोग्राम जोक माही दी।

0: मैं नीरू दुआ आप सबनु राम राम जी करेंदी हां ते आप सब दे सामने एक सिराए की लोक कहानी पेश करेंदी पई हां जिसका नाम है सोने दे धागे। गहरे घाटे जंगल दे एक पासे एक जई छोटी जई सल्तनत थी। जंगल दी बहुत सारी कहानियां उत्थां दे बाशिंदे सुना के चस गिंदे हन। सल्तनत दे लोग बहु खुश रहंदे हन। सल्तनत दा एक नौजवान बादशाह है। सल्तनत विच एक गरीब आदमी अपनी धी दे नाल रहंदा है। ओ धी बहु ही हसीन ते खूबसूरत है। ओ शख्स बहु बातूनी है। आवन वंजन वाले लोगों को लंबे लंबे झूठे किस्से सुनेंदा है। हूं शख्स ने कई बारी लोगों को बेवकूफ बनाया। लोग हुंदी शिकायत बादशाह सलामत को करेंदे हन। हेकड़ी बादशाह ने हूं शख्स को सबक सिखावन किते अपने दरबार विच सड़वा गिद्दा। बादशाह ने अपने गुलाम को पैगाम दे के गरीब शख्स दे घर पठा। गुलाम शख्स को अपने नाल घिन के दरबार च आए। गरीब शख्स ने बादशाह को सलाम पेश करेंदे वे आखा के बादशाह सलामत आप मेरे बारे विच किवें जानदे है ते मेरा फर्ज है कि मैं आपदा शुक्रिया अदा करा ते आपको अपने ते अपनी बेटी बारे दसा। बादशाह ने आखा जरूर दसा। गरीब शख्स ने बहु ही नरम अल्फाज विच बोलना शुरू कीता। मेडी एक बच्ची है ते ओ दुनिया दी सब तो हसीन बच्ची है ते ओ कख विचो सोना कड्डन दा हुनर भी जान दी है। बादशाह को ए गल बहु पसंद आई। बादशाह ने आखा जेकर तेडी धी इतनी हुनरमंद है ते वल हुकू मेडे नाल महल विच घिन के आ। मैं उन्दा इम्तिहान घिनना चांदा। गरीब शख्स ने बादशाह दा हुक्म कबूल चा कीता ते दरबार विच इम्तिहान वास्ते धी को घिन के आवंदा वैदा कीता। ओ शख्स परेशान हाल विच घर गया ते सारा माजरा धी को सुनाया। धी ने नाराज थींदे वे आख्या लाला जी मैं पहले भी कित्ती बारी तो आकुम आखेम के झूठ ना बोला करो। हुन देखो तुसा अपने झूठ विच आप फस गए वे। हुंदे प्यू कोल अल्फाज कहना हन ते ओ बहु शर्मिंदा थींदा पिया है। डूवे अपनी तबाही को देख दे वे महल वल टुर पे। बादशाह ने डूवे को खुशामदीद आख्या ते लड़की दी खूबसूरती दी तारीफ कीती। आओ आओ प्यारी बच्ची तू वाकई बहु हसीन है। मेको उम्मीद है तू कख विचो सोना कड घिन से। वजीर वक्त जाया नहीं मिसी करेंदे आओ मेडे नाल। बादशाह उन्ने को एक कमरे विच घिन के गया। उथा बहु सारे घास फूस दे तिनके ते एक मशीन है। बादशाह ने लड़की को हुक्म दिता के हुन तू अपने काम ते लग वंज। जेकर सवेल थीवन तक तू कख विचो सोना ना कड्डा ते मैं तेकू ते तेडे प्यू को मार घते सा। बादशाह ने अपने पहरेदार को खास निगरानी कीते हुक्म दिता कि थई डूवे भज ना वंजन। हुन बिचारी लड़की को पता कहना हा कि ओ क्या करे। हुन दी परेशान इतनी वद गई कि ओ रोवण लग पई। इतने विच एक रोशनी नमुदार थई ते एक सोनी शकल दा बोना बंदा रोशनी विच नजर आवन लग गया। बोने ने लड़की दे रोवण दी वजह पुछी। लड़की ने रोंदे रोंदे आख्या कि मेकू इन्ने कखा नाल सोना बनावना है ते मैं कहना जान दी कि ए कम मैं किवें करे सा। बोने ने सुनदे ही जवाब दिता जेकर मैं तेडा ए कम कर घिना देवा ते तू मेकू के शैडे से। मैं तेकू ए हार दे सकदी हां। ए आके अपना हार बोने आदमी को दे दिता। बोना आदमी मशीन दे अगू बैठिया। हुने त्रै दफा मशीन दा पहिया घुमाया ते सोने दे धागे कढ दित्ते। ही तरह हूं के घास फूस दे तिनके चाते ते उन्ना को सोने दे धागे विच तब्दील कर दिता। ही तरह सवेर तक हूं अपना काम जारी रखिया। हेक हेक करके सारे तिनके खत्म थी गए ते ओ सोने दी गोलियां दी शकल विच तब्दील थी गए। लड़की बहु खुश थी गई। ए सब देख के हूं पुछया कि ए नन्ने बोने आदमी तू कौन हाई ते तेडा ना क्या है। बोना खिलदा रिया ते गायब थी गया। सवेर थींदे ही बादशाह आ गया। जेड़े वेले हूं ने सोने को डिठा ते ओ हैरान थी गया। ओ मेडे खुदाया मेकू लगदा पिया है के तेडा प्यू मेडे अगू कूड़ मरेंदा पिया है। हुन तू वंज के आराम कर मैं अज शाम वेले तेकू मिल सा। लड़की ने सोचा के बादशाह खुश थी के असा को इनाम देसी ते राजी खुशी उन्ना को घर वंजन देसी। लेकिन लालची बादशाह अग लेडी उन्ना को एक बड़े कमरे विच घिन के गया जिथा ढेर सारे तिनके पए हन। ते ओ कमरा पहले कमरे कन्नो वड्डा है। बादशाह ने हुक्म दिता के जेकर तेकु अपनी ते अपने प्यू दी जिंदगी नाल प्यार है ते इन्ने सारे घास फूस को रातो रात सोना बना। लड़की कहना जानदी है कि ओ क्या करे, हूं वला रोना शुरू कर दिता। अचानक ओ सोना बोना आदमी वरना मुदार थिया, रोना बंद कर लड़की ते मेकू ए डसा के मैं जेकर तेडा ए कम भी कर देवा ते तू मेकू के शेडे से। लड़की ने थोड़ी देर सोचा ते अपनी अंगुली च पाती हुई अंगूठी को दिता ते हुंदे को ले आखिरली कीमती शय है जेड़ी ए हुको दे सकदी है। लड़की ने आख्या के मेडी अंगुल कन्नू ए अंगूठी कड गिन। हूं बोने शख्स ने ओ अंगूठी गिन गिदी ते मशीन दा पहिया वल घुमावन लग पिया। पहले वांगू ही बोने शख्स ने सारे घा दे तिनके सोने विच तब्दील कर दिते। लड़की दी सा विच सा आ गया, ओ हुन बहु खुश थी गई। हुने शुक्रिया अदा कीता ते पुछया, ओ रैम दिल बोने शख्स तू कौन है ते तेडा नाम क्या है। बोना शख्स खिलदे खिलदे पहले वांगू गायब थी गया। बादशाह जड़े वेले कमरे विच दाखिल थिया ते हुंदी खुशी दा कोई ठिकाना ना रिया। तू ते साड़ी सल्तनत वास्ते तोहफा है, मेडी तारीफ वास्ते मेडे कोल अल्फाज कहे नी। हुन तू आराम कर ते शाम वेले मैं तेकू वल मिलसा। जिवे तिवे शाम थई ते बादशाह लड़की को मिलन आया ते हुके एक बड़े वड्डे कमरे विच घिन गया। उथा भी घा फूदा बहु वड्डा ढेर है। बादशाह ने आख्या ए काम भी रातो रात मुकम्मल थी वंजना चाहिदा है। जेकर ए काम भी तू पूरा कर दिता ते मैं तेकू अपनी मलिका बना घिनसा, क्योंकि तेडे कन्नू बेहतर लड़की मेकू पूरी दुनिया विच नहीं मिल सकदी। हूं रात भी लड़की को कल्ला छोड़ दिता गया। लड़की ने वल रोमना शुरू कर गिदा ते ओ कुछ देर बाद ओ नन्ना आदमी वल नमुदार थिया। बोने ने लड़की कन्नू पुछा ही वारी तू मेकू कै शेडे से जे मैं सारे तिनके सोने विच तब्दील कर देवा। लड़की रोंदे रोंदे अखेंदी रही हे वारी डेवन वास्ते हुंदे कन्ने कोई शे कहनी। बोने ने लड़की को तसल्ली दित्ती के तू बस कर रोना ते मेडे नाल हिक वैदा कर के तू मलिका बनन दे बाद पहले बच्चे को जन्म दे से ते ओ बाल मेकू डे दे से। लड़की कोल हां आखन दे अलावा कोई चेहरा करना है। बोना शख्स ने आखा के मेकू पूरी पूरी उम्मीद है के तू अपना वैदा कदाए ना भूल से। लड़की ने वैदा कीता ते बोने ने पहले कन्नू जल्दी नाल काम करना शुरू कर दिता। जल्दी जल्दी मशीन घुमावनी शुरू कीती ते जल्दी सारे तिनके सोने विच तब्दील थी वंजने शुरू हो थी गए। जल्दी झटखन विच काम खत्म थी गया। वल खिलदे खिलदे बोना गायब थी गया। अगले सवेर जड़े वेले बादशाह कमरे विच दाखिल थिया ते हूं डिठा के सारा काम मुकम्मल थी गया है। बादशाह ने मोहब्बत नाल आखा के मेडी प्यारी तू अपनी काबिलियत दा सबूत दे दिता है ते मैं तेरे नाल कल शामी शादी करन आला हां। अगले दिन बहु धूमधाम नाल शादी थई। महल विच बहु रौनक आई। गरीब आदमी दी धी बादशाह दी मलिका बन गई। एक साल थींदे ही हुने एक बाल को जन्म दिता ते ओ बोने शख्स नाल कीते बए वैदे को भूल गई। एक दिन ओ अपने कमरे विच बिल्कुल ही कल्ली है। अचानक कमरे विच रोशनी दे नाल ओ बोना शख्स नमुदार थिया। मलिका हुक्कू देख के घबरा गई। बोने शख्स ने आखा कि क्या तू अपना वैदा भूल गई है मलिका। मलिका ने दुखी थी के रोंदे वे जवाब दिता नहीं मेकू अपना वैदा पूरी तरह याद है, पर मैं अपने बच्चे नाल बहु प्यार करें दिया। क्या मैं तेरे कोल कुछ मंग सकती हां। मैं हुन मलिका हां, तू मेरे कोल ही बच्चे दे अलावा कुछ भी मंग सकदा है, जो मंग से मैं तेकू दे सकदी हां। बोने शख्स का जवाब है मेकू ही कायनात दे सारे खजाने कोल ज्यादा एक जिंदा चीज दी जरूरत है, समझी मलिका आलिया। मलिका रोवन लगी हे नन्ने आदमी मैं तेरे को इल्तजा करें दिया कि मेहरबानी करके मेरे बच्चे को छोड़ दे। बोने शख्स को तरस आ गया। हुन्ने एक कड़ी शर्त रखी जेकर मलिका बोने शख्स का नाम दस दे सी ते ठीक, अगले त्रैडी विच जेकर मलिका बोने शख्स का नाम ना दस सगी ते हुकू अपना बाल बोने शख्स दे हवाले करना पोसी। मलिका दे चेहरे ते कुछ खुशी आई। शुक्रिया नन्ने आदमी मैं तेरा नाम पता कर गिनसा। जरूर पता करके मैं ते को दस देसा। नन्ना बोना अगले दीवार मिलना दा वादा करके गायब थी गया। मल्लिका सारी रात सुम ना सकी। ओ रात भर सुचेंदी रही के हूं अपनी जिंदगी विच केड़े केड़े नाम सुने वे हन। हूं अपने गुलाम को हुक्म दिता के ओ पता करे के केड़े केड़े नाम थी सकदे हन। सारा डी गुलाम नाम कठे करेंदा रह गया। रात थींदे ही रोशनी दे नाल छोटा बोना शख्स वल हाजिर थी गया। बोने ने मल्लिका को पूछया के क्या मेरा नाम पता चल सके। मल्लिका लिखे वे नाम पढ़ दी गई के क्या तेरा नाम भोला है। बोने ने इनकार चकीता ते खिलन लगा। मल्लिका ने दूजा नाम टांकन दास आखा। ओ भी बोने ने मना कर दिता के ए नाम हुंदा कहनी। मल्लिका ने हेक हेक कर सारे नाम बोले, परमा, सोम, शीतल, रबड़ी, जीवन, पर बोना हर नाम सुनके खिलदा ते इनकार चा करेंदा। जितने भी नाम मल्लिका दी जानकारी विच हन ओ खत्म थी गए। बोने ने आख्या आज वास्ते इतना ही, मैं कल वल आसा, तुसा अपनी जानकारी मुकम्मल रखाए। अगले दीवार मल्लिका ने अपने गुलाम को हुक्म दिता के ओ आसे पासे दे बय इलाके विच वंच के बय नाम कठे करके लिख के आवे। गुलाम सारा डी घूम फिर के ढेर सारे नाम कठे कर घिन आए। उन्ना बेनामा दी लिस्ट बना के मल्लिका को डेर दिट्टी। शाम थी वंदे बाद नन्ना शख्स बोना वल आ गया। मल्लिका अपनी फेरिस्त चाके खड़ी हाई, शायद तेरा नाम गुलाब है। बोने ने खिल देवे इनकार कीता ए मेरा नाम कहनी। मल्लिका ने बे कुछ नाम पड़े, सीरी, छोटू, चंदू, पर हर बार बोने शख्स दा इक्को जवाब आई के ए मेरा नाम नहीं। फेरिस्त विच लिखे गए सारे नाम बोने शख्स दे कहना हन। बोने ने आख्या हुन कल दा डी आखरी डी है, मैं कल वल आसा, मेकू नहीं लगदा के तुसा अपने बच्चे को मेडे कोलू बचा घिनसो। मल्लिका परेशान थी गई। अगले डी मल्लिका ने अपने सिपाही कन्नू एक अजीब जई गल सुनी। सिपाही ने आख्या के ओ एक वी नवा नाम ना गोल सग्या, पर जेड़े वेले ओ जंगल विच गुजरदा पिया हाई, हुने एक पहाड़ी डिठी ते हुंदे नाल एक छोटा जिया घर हाई। घर दे बार भा बलदी पई हाई ते हूं भा दे नाल एक छोटा जिया बोना शख्स एक लत दे उत्ते नचदा पिया हाई ते नाल नाल गावन भी गांदा हाई। अज मैं नचसा ते कल मैं गासा, क्योंकि कल मेरे कोल मल्लिका दा बच्चा हो सी, मेरे को खुशी है कि कोई भी नहीं जानदा कि मेरा नाम रंपल स्टील है। ओ बहु देर तो नी नचदा टपदा रह गया। मल्लिका ए सुन के बहु खुश थी गई ते आख्योस मेरे काबिल सिपाही ते को नहीं पता के कितनी वड्डी खुशखबरी है, मेरे को ए सुन के कितना सुकून मिलया, मैं डस निम्मी सकदी। मल्लिका ने खुशी खुशी अपने गले तू हार लहाया ते फोहरन अपने सिपाही को दे दिता। सिपाही दे वेंदे ही कुछ देर बाद ओ बोना शख्स रोशनी दे नाल वल नमुदार थिया ते पुछया हाँ मल्लिका आलिया, ते दसो के क्या है मेरा नाम। मल्लिका ने पहले जान बुझ के एक गलत नाम दसा, तेरा नाम है जय। बोना खिलन लगा नहीं ए मेरा नाम कहनी। अच्छा वल हैरी तेडा नाम है, मल्लिका ने आख्या। बोने दा जवाब भाई बिल्कुल नहीं। हुन मल्लिका ने बोने को आख्या के तेडा नाम है रंपल स्टील। रंपल स्टील सुनदे ही बोना शख्स हैरान थी गया, तो आकू मेडा नाम कैं डसाया। उस गुस्से नाल अपना पैर जमीन ते मारा ते हुंदा गोडा टूट गया ते ओ जमीन ते ढह पिया। वल्ला हूं अपने खब्बे पैर को इतनी जोर नाल छिकया के ओ दू हिस्सा विच तकसीम थी गया। हूं वेले ही रोशनी दी दल लकीर चमकी ते रंपल स्टील दा खात्मा थी गया। मल्लिका अपने बाल ते बादशाह नाल खुशी खुशी रावण लग गई।
1: मैं जालचंद नारायण तुहाडे सामने समाजिक अंधारे कुछ पेश करना चाहना, जरा आप गौर से सुनेंगे। तो पहला अंधारा हया कहनी, वफा कहनी, गरीबां ते दया कहनी, इथा लुट मार डाढ़ी है ते मिलदी भी सजा कहनी, ते हुंदी कोई नहीं सुनदा जिने मुंह विच अला कहनी, अंधारा ही अंधारा है किसे भी सोझला कहनी। एक बया अंधारा सुनो, इलेक्शन विच ते नारे हन असा पैरस बना दे सू, असा सिवर पवा दे सू, नवे सड़कां बना दे सू, उहा है चाल बेढंगी जो पहले है वो अब भी है। वह चाल बेडंगी ਕਿਸੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਧਾਰਾ ਹੀ ਅੰਧਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਝਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਅੰਧਾਰਾ, ਕਦੇ ਵਸਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਵਸਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਆਲੂ ਆਲੂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਵਸਲ ਵਸਲ ਪਿਆਜ਼ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਵਸਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਦੇ ਆਲੂ ਦੇ ਹਿਲ ਲਾ ਲੇ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਾਹ ਦੇ ਵੀ ਕਰੇ ਲੋਕ ਗੋਟਾ ਲੇ, ਕਦੇ ਵਸਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਦੇ ਆਲੂ ਦੇ ਹਿਲ ਲਾ ਲੇ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਾਹ ਦੇ ਵੀ ਕਰੇ ਲੋਕ ਗੋਟਾ ਲੇ, ਹਰੇਕ ਜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਧਾ ਦੁਲਿਆ ਕਹਿਣੀ, ਅੰਧਾਰਾ ਹੀ ਅੰਧਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਝਲਾ ਕਹਿਣੀ, ਵਿਆਹ ਅੰਧਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਮਾਰ ਦੂਸੇ ਦਾ ਬਣੇਦਾ ਪੇ ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਮਾਰ ਦੂਸੇ ਦਾ ਬਣੇਦਾ ਪੇ ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ, ਲੁੜੇ ਨੇ ਭੈਣ ਕੁੱਟੇ ਨੇ ਭੈਣ, ਕਰੇਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹਿਣੀ, ਅੰਧਾਰਾ ਹੀ ਅੰਧਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਝਲਾ ਕਹਿਣੀ, ਇੱਕ ਅੰਧਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਸੰਧਿਆ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਮੈਂ ਹਮਨ ਸੰਧਿਆ ਕਰੇਂਦਾ ਨੀ, ਹਮਨ ਸੰਧਿਆ ਕਰੇਂਦਾ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਾਲਿਆ, ਹਮਨ ਸੰਧਿਆ ਕਰੇਂਦਾ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਾਲਿਆ, ਉਮਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਲਦੇ ਆਖਦੇ ਆਤੀ ਕਾ ਖੱਡਾ ਲਾ, ਹਮਨ ਸੰਧਿਆ ਕਰੇਂਦਾ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਾਲਿਆ, ਉਮਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਲਵੀ ਆਖਦੇ ਆਤੀ ਕਾ ਖੰਡਾ ਲਾ, ਜਿਥਾਂ ਦੇਖੋ ਹੈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਕਹਿਣੀ, ਅੰਧਾਰਾ ਹੀ ਅੰਧਾਰਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਸੋਝਲਾ ਕਹਿਣੀ, ਇੱਕ ਅੰਧਾਰਾ ਬੜਾ, ਨਾ ਮਾਰੋ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਮਾਰੋ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਨਾ ਮਾਰੋ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰ

मैं बनूंगा मैं तेरा, खुदाई दे दिल में ठिकाना है मेरा, तू खलकत दा बन जा, बनांगा मैं तेरा। तू कह कू है आखिर चढ़ावे चढ़ाता, अंदर जाके चढ़ावे चढ़ाते तो फिर मनता मन, तू कह कू है आखिर चढ़ावे चढ़ाता, के कू फूल के कू भेंट फूला दे दे के रिझाना, बन के फरे भी गुनाह छुपादा, बन के फरे भी गुनाह छुपादा, तू मेकू भी आकर है रिश्वत खवेंदा, तू मेकू भी आकर है रिश्वत खवेंदा। इंसाफ दा घर है थाना नहीं है, इंसाफ दा घर है थाना नहीं है, इथा रिश्वत दा ठिकाना नहीं है। कदई कोई रूठा मनाया है तै दस, कदई कोई रूठा मनाया है तै दस, कदई कोई डठा उठाया है तै दस, कदई कोई बुढ़दा बचाया है तै दस, कदई कोई रोंदा हसाया है तै दस। जेकर जख्म कोई ना है हुण तक सीता, फकत फेरी माला न कुछ भी है कीता, जेकर जख्म कोई ना हुण तक सीता, फकत फेरी माला न कुछ भी है कीता। नारंग तू गुलशन दी रौनक बधा ले, नारंग तू गुलशन दी रौनक बधा ले, फुला वांग अपनी खुशबू लुटा ले, खुश थी के तू खुश थी के हर के को खुशियां दिखा दे, रुखे बंदे दुखड़ा मिटा दे। इया तेरी भक्ति इया बंदगी है, के दुनिया ते आवन दा मकसद ही है। नेकी कर न संग संगोड़, जोदम जिवें खीर बलोड़, नेकी कर न संग संगोड़, जोदम जिवें खीर बलोड़, नेकी करत खूए झट, नेकी करत खूए झट, चंगा कम तू कर झटपट, गंदे कम विच सोच विचार, गंदी संगत देसी बोर, नेकी कर न संग संगोर। मां प्यो को न समझी बोझ, मां प्यो हो एक निम दा पेड़, मां प्यो को न समझी बोझ, मां प्यो हो एक निम दा पेड़, ठंडी वादे देसन झोले भावे कितने न दौड़ त्रोड़। मां प्यो को बोझ न समझे भाई, ये नीम दा पेड़ है कि जिस तरह सारी उम्र तुहाडे हवाले जैसी और दंदवाणी जैसी दातुन को ना। मां प्यो को न समझी बोझ, मां प्यो हो एक नीम दा पेड़, ठंडी वादे देसन झोले भावे कितने दंदवण त्रोड़। नेकी कर न संग संगोड़, पानी विच न मार मधाणी, पानी विच न मार मधाणी, ए दुनिया ए ख्वाब कहानी, हथ मरे नी चार चुफेरे, हथ मरे नी चार चुफेरे, औतरक दिना वड्डी जोड़। नेकी कर न संग संगोड़, सूरत दा तू माण करे नी, सूरत दा तू माण करे नी, सीरत को प्याले दे, सीरत को प्याले दी धक्के दे नी, सूरत दा तू माण करे नी, सीरत को प्या धक्के दे नी, जेनी खातिर पाप करे नी, ओ भी देसन ते कुछ होर। जोदम जी में खीर बलोड़, जोदम जी में खीर बलोड़, हर हर कम में तू खोड़ करे नी, हर कम में तू खोड़ करे नी, चंगे कम में जंग अड़े नी, चंगे कम में जंग अड़े नी, डूमो आए ए संसार आपस दे विच रखो प्यार, हिक आखे ते दूजा मने डूआ दिए हिको डोर। नेकी कर न संग संगोर, इंग्लिश विच न कर गिट पिट, इंग्लिश विच न कर गिट पिट, अपनी बोली कर तू हिट, अद वलोड़ी लस्सी पी तू, जो दम जी में खीर बलोड़, नेकी कर न संग संगोर। आखिरी बन नारंग बन तू भी इंसान, नारंग बन तू भी इंसान, झिके दिए उच्ची शान, नारंग बन तू भी इंसान, झिके दिए उच्ची शान, घर बैठे ना कुर्सा किस्मत, इथा को नहीं कम दी थोड़, नेकी कर न संग संगोड़, जो दम जी में खीर बलोड़, जो दम जी में खीर बलोड़। विसाखी आने वाली विसाखी का पुरग मना, विसाखी का पुरग बनाओ, ढोल ढमाके भंगड़े पाओ, रल मिल गीत खुशी दे गाओ, दुखे का भी दर्द मिटाओ, बुढ़दी बेरी कंधे लाओ, विसाखी का पुरब निभाओ, ढोल ढमाके भंगड़े पाओ, रल मिल गीत खुशी दे गाओ, लुखे का भी दर्द बनाओ, बुढ़दी बेरी कंधी लाओ। शरबत पियो, शरबत पियो, साल साल तक उम्र जियो, सेब संतरे का रस पियो, खाओ पियो मौज उड़ाओ, बुढ़दी बेरी कंधे लाओ। राम बनो न बनो रावण, राम बनो न बनो रावण, छोड़ो राम बनो ना बनो रावण, गाल गाल दे कसमा चावण, ब्लड प्रेशर को ना बधाओ, बुढ़दी बेरी कंधी लाओ, बुढ़दी बेरी कंधी लाओ। रू बच्चे
ਵੋ ਬੱਚੇ

0: 봐서 오느라 채, 누가 채 봐서 오느라 채, 가나비나 삼골 받채, 제 까르가 아도 하고 제채, 우리 베이 건디라오, 우리 베이 건디라오, 힌두 무슬림 바이차라, 힌두 무슬림 바이차라, 핵 루제다 버누 사하라, 핵 루제 벤나이 구자라, 라우면 삽대 바르마나오, 우리 베이 건디라오, 우리 베이 건디라오, 젠다 서달레 란다라웨, झंडा सदा लहरांदा रावे दुश्मन इतना पैर न पावे झंडा सदा लहरांदा रावे दुश्मन इतना पैर न पावे बारना अपने खेत को खावे ही झंडे की शान बधाओ उड़दी बेरी कंधी लाओ उड़दी बेरी कंधी लाओ नारंग कुछ है फर्ज भी साडा नारंग कुछ है छोड़ो राम बनो ना बनो रावण गाल गाल दे कसमा चावण ब्लड प्रेशर को ना बढ़ाओ उड़दी बेरी कंधी लाओ उड़दी बेरी कंधी लाओ रू बच्चे बस होना अच्छे रू बच्चे बस होना अच्छे खाना पीना सब कुछ बच्चे जे कर गाल तो आकू जचे उड़दी बेरी कंधी लाओ उड़दी बेरी कंधी लाओ हिंदू मुस्लिम भाईचारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा एक दूजे का बड़ो सहारा एक दूजे बिन नहीं गुजारा रल में सब त्योहार मनाओ उड़दी बेरी कंधी लाओ उड़दी बेरी कंधी लाओ झंडा सदा लहरांदा रावे झंडा सदा लहरांदा रावे दुश्मन इतना पैर न पावे झंडा सदा लहरांदा रावे दुश्मन इतना पैर न पावे बारना अपने खेत को खावे ही झंडे की शान बधाओ उड़दी बेरी कंधी लाओ उड़दी बेरी कंधी लाओ नारंग कुछ है फर्ज भी साडा नारंग कुछ है फर्ज भी साडा सिर तो उतरे भार है साडा नारंग कुछ भी फर्ज है साडा सिर तो उतरे भार है साडा जान तू वड्डी शान हिंद दी जान तू वड्डी शान हिंद
1: सामीन होने तो से समाज फरमारे सी सराइकी प्रोग्राम जोक माहिरी ते हुन बेरा हो गए प्रोग्राम देश पंजाब का।

0: तमाशा खेल तमाशा कुछ उदासी कुछ को हासा जिन्ना लच्छो करन कमाल मारो दोवे पुट्ठी जा
1: लच्छो ये सड़िया होया मदारी किन्नी कु देर छाड़ा मरवादा रहेगा सातो
2: जिन्नी देरी दी दिहाड़ी नी बनती जुम्या
1: ओ लच्छो एनो कह बस करे बस करे
2: मूर्ख जुम्या अपन बांदर आ एनु साडी भाषा समझ नहीं आउंदी
1: वैसे माफ करना डार्लिंग एक्सप्रेशन भी नहीं समझ सकता है
2: तू कोई उल्टा सीधा एक्सप्रेशन ना दे दी इन्हें डंडे ना सानू कुट सुटने
0: खेल तमाशा खेल तमाशा बंदर समझे मेरी भाषा चल भई जुम्मे छेती जा सोनी मेम व्या के लिया आ गया लंदन चल भी लच्छो हो जा तैयार लैण आ गया साडा यार ए लच्छो तैयार है
2: तू केड़ा खेला छड़ना है तैयार हां
0: लो भाई मेहरबान कदरदान लच्छो तैयार है चल भाई जुम्मे ले ले नाल
3: जुम्मा तो रुस गया
0: ओ भाई क्यों रुसिया गल की हुई है कान च दस दे हैं उत्तरी ओए ता कहंदा दाज लाऊंगा
3: उल्लुआ तू भी आम बंदे वर्गा ही हो गया की कहना की लेगा कार ओ भी बस ट्रक भी नहीं
0: ओए होए ओए फिर लाएगा की मेरे साहब

0: बड़ा मंदिर
1: हाँ
2: वही ता है पर लच्छू इदे पिछे छप्पड़ हुंदा सी
1: हाँ
2: वो किथे गया दरखत ता नजर ही नहीं आउंदे वो फल छावां खोड़ा वो मौज मस्ती
1: हाँ ते तेरे साथी बांदर किथे गए होंगे जंगल तो बगैर जनौर किथे रहंदे होंगे
2: कमाल है देख लच्छू कि मैं तू आई तू हाँ नदी दाता नामो निशान ही नहीं पानी कितो पिंदे हो गए जनौर
1: सवेर हो गई मैं तो भूख लग पई है
2: और मेरे पैर नाल की नजर डार्लिंग लच्छू आले आले सेब की होया
1: एटा कटिया से
2: देखकर नो तो बड़ा सोना लगता है
1: देख ले इस बंदे ने इस इंसान ने फल फ्रूट भी एहो जी बनाते जो बस देखने ही सोने ने अंदर मसाले केमिकल हवारा जहर बदबू

0: ਐਵੇਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣ ਬਣ ਬਹਿੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੈੜੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੈੜੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ।
1: लो जी, इस गीत तो बाद अगला गीत बिल्कुल तैयार है। सुनना चाहते ने मलोट तो जगतार गिल, परमजीत कौर गिल, गैवी, अमन ते इना दा पूरा परिवार। ये सुनना चाहते ने जी मीनू पुरुषोत्तम ते दिलराज कौर दी आवाज दे विच नी मैं हो गई जहां जवान। अखां विच अखां पा के देख, अखां विच अखां पा के देख, एक बारी मैनू चाह के वेख, दसा तेनू प्यार की हुंदा, एक बारी अपना के वेख, एक बारी अपना के वेख।

दोस्तों इस गीत की फरमाइश की थी पक्की खुर्द तो सतनाम सिंह गुरिंदर गुरलीन तेगिल परिवार ने। लो जी हुण आखरी गीत इस प्रोग्राम दा थानू सुनाउण लगे हां। ए गीत गाया है मोहम्मद रफी ते शमशाद बेगम होरा ने। इस गीत की फरमाइश की है राजपुरा दी पूरी पंचायत ने जिन्होंने लिखा है। तुहानू सारयां नू सत श्री अकाल जी। हरदीप सिंह जगवीर सिंह ज्वाला सिंह धर्मवीर ते जगसीर सिंह ए सुनना चाहुंदे ने तेरी कणक दी राखी मुंडिया हुण मैणा बहिंदी। लो जी फिर असीं वी गीत सुनदे आं मोहम्मद रफी ते शमशाद बेगम होरां दी आवाज़ दे विच।

0: मैं क्या संधु साहब कारियों लंघ आइए
1: आजो आजो फौजी साहब लंघ आओ
0: आगे जी आगे आगे आगे आगे पहुंच गए जी।
1: जय हिंद कबूल करो फौजी साहब।
0: जय हिंद जी जय हिंद।
1: सुनाओ की हाल चाल है।
0: हाल चाल तो बहुत बढ़िया, बस पिंड का हाल देखने निकले जी थोड़े वाल।
1: अच्छा की गल तुहानू वधिया लगी पिंड दे विच? फिर
0: बस पिंड दी सत तों देखदा सीगा, पिंड दी सत च रौनक उदनिया हैगियां कि नहीं जिवें पहिलियां सी। फौज च रहिंदियां तां बहुत देर हो गई, मैं कहा चल हुण पिंड दी सत दा नजारा वी लै लईए।
1: हां बिलकुल बिलकुल जी, देखो गल एदां हुण भाजी साहब कि जदों तुसीं फौज दी नौकरी करदे हो
0: जी जी
1: बड़ी डिसिप्लिनड लाइफ हुंदी हैगी।
0: बिलकुल ओह तां है जी।
1: तां जदों आपां कहिंदे आं वी सिविलियन च आ जांदे आं तां थोड़ा जिहा फिर ओह घाट महसूस हुंदी है वी बंदा सोचदा आ तुसीं तां बहुत रखदे हो अपने आप च।
0: फर्क तां बहुत पैंदा फौज दी नौकरी दा ते पिंड दे विच घुमण दा। तुसीं देखो इत्थे सत्थां च बैठे ने, आराम नाल सवेरे रोटी पानी खादा ते सत्थ च बहि गए आके। फौज च कम किथे मिलदा? फौज तां डिसिप्लिन पालदी आ, हर चीज टाइम ते चाहिदा। हुण घर दे विच ओह डिसिप्लिन बनाउण दी कोशिश तां करदे आ, साडा बनिया भी रहिंदा, पर फिर भी कितें ना कितें तुहानूं पता घर दे किथे मन नहीं करदे, कहिंदे फौजी आ फौज च साडा आउंदा चीजां।
1: गल इदां हुंदी है कि देखो ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ।
0: ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ
1: ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
0: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋਗੇ। ਸਿਹਤ ਕਾਇਮ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਸਹੀ ਹੈ।
1: ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਲੋਕ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
0: ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
2: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को बंद करने और जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम में दर्ज प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन में उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री ने उपक्रमों से बदलते परिदृश्यों के बीच रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार करने को कहा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। इसका मुख्य उद्देश्य देश के चिन्हित 100 जिलों में योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाना, विभिन्न योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करना और जिला स्तर पर बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करना है, ताकि किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सके। सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख

शहरों में 2,250 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत ने वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर बल दिया है। कनाडा में हिंदू विश्व बंधु कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दुनिया की विभिन्न भाषाओं, परंपराओं और उपासना पद्धतियों का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि ये विविधता ही हमारी एकता का आधार है। अफगानिस्तान के साथ 3 टी20 मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में मौका मिला है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 और तीसरा 17 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज। शाम के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
3: कार्यक्रम किसान वाणी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। मेरे साथ में है
4: नीलम वर्मा
3: और आप सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। नीलम जी, आज आधुनिकता की दौड़ में मानव खुद की परवाह किए बिना दिन रात सब कुछ भुलाकर बस दौड़ता चला जा रहा है। इस दौड़ में दौड़ना गलत नहीं है बल्कि सबको समय के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आधुनिकता के नाम पर खुद के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना गलत है। इसीलिए भारतीय समाज स्वस्थ रहे और आने वाली पीढ़ियां निरोगी रहें, क्योंकि स्वस्थ पोषण ही पीढ़ियों के स्वास्थ्य का आधार होता है। इस बात को जानते हुए भारत सरकार एवं महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाता है। पोषण के प्रति ये जागरूकता अभियान राष्ट्रीय स्तर पर सितंबर के प्रथम सप्ताह में चलाया जाता है, इसी कारण इसे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कहा जाता है, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है क्योंकि आज है 1 सितंबर।
4: बिल्कुल, हर वर्ष भारत सरकार एवं महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा सितंबर माह के पहले सप्ताह यानी कि 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। हर वर्ष इस सप्ताह का उद्देश्य अधिकाधिक लोगों को पोषण के प्रति राष्ट्रीय मंच से जागरूक करना होता है और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह एक ऐसा माध्यम है जो आपको जागरूक करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है।
3: और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का मुख्य उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के समाज में पोषण के प्रति जन जागरण करना होता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के माध्यम से भारत सरकार का उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा और उनकी बेहतरी में उचित पोषण के महत्व की जानकारी को प्रदान करवाना होता है।
4: बिल्कुल, और पोषण युक्त आहार को देकर और इसकी जानकारी प्रदान करवाकर नागरिकों को मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियों से बचाया जा सकता है। भारत सरकार एवं महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा मानव शरीर में उचित पोषण के महत्व और कार्य पर जोर देकर नागरिकों को अच्छा जीवन प्रदान करना

0: होता है।
1: तो कहने का मतलब यह है कि पोषण सप्ताह का उद्देश्य यही होता है कि आप पोषण के प्रति जागरूक रहें, और खासकर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, अक्सर उनमें खून की कमी देखी जाती है, तो वो अपने पोषण का जरूर ध्यान रखें। साथ ही साथ नीलम जी, हमारे जो किसान भाई हैं वो भी पूरे देश के पोषण का ध्यान रखते हैं, क्योंकि इस समय जिन किसान भाइयों ने अपने खेतों में धान की फसल उगाई होगी, उससे हमें चावल मिलता है, तो वो पोषण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमारे किसान भाइयों की जो धान की फसल है वो अच्छी हो, और इस समय उनको क्या कुछ समसमय कार्य करने चाहिए, कैसे देखभाल करनी चाहिए ताकि वो देश में पोषण की भरपाई में सहयोग करें, तो इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कुमार जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। तो सबसे पहले डॉक्टर दिनेश कुमार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: धन्यवाद, और सभी किसान भाई और बहनों को भी मेरा नमस्कार। हम सकुशल हैं और आशा करते हैं कि हमारे जो किसान भाई बहन है वो भी सकुशल होंगे।
1: बिल्कुल, और हमको भी उनकी फसल की चिंता होती है, तभी तो आज आपको कार्यक्रम में आमंत्रित किया है कि ताकि हमारे जो किसान भाइयों की धान की फसल है वो अच्छी रहे। तो अगर डॉक्टर साहब हम बात करें इस समय की, तो क्या स्थिति है धान की फसल की?
2: इस समय धान चाहे आपने रोपाई विधि से लगाया हो, चाहे आपने सीधी बिजाई की हो, दोनों ही परिस्थिति में धान अब जन्मिक अवस्था की तरफ अग्रसर है। किसान भाइयों, धान की दो प्रमुख अवस्थाएं होती है। एक वानस्पतिक अवस्था होती है जब इसमें ब्याद बनता है, कल्ले बनते हैं, और फिर इसमें जो है वो पौधों की लंबाई बढ़ती है। ब्याद पूरा होने के बाद धान की फसल तुरंत अपनी जन्मिक अवस्था की तरफ शुरू होती है, यानी बाल बननी उसमें शुरू हो जाती है। किसान भाइयों, जब आप निकली हुई बाल देखते हैं उसके एक महीना पहले पौधे के अंदर बाल बनना शुरू हो जाती है। ये सारी की सारी जन्मिक अवस्था कहलाती है, और जिस दिन बाल निकलती है, जैसे ही बाल निकलती है तुरंत उसमें फूल भी बनने लगते हैं, यानी फूल उसके खिल जाते हैं और उसमें परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो इसी अवस्था में इस समय आपकी फसल है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, धान की जो फसल होती है उसको पानी की आवश्यकता होती है, तो किस तरह से हमारे जो किसान भाई हैं अपनी धान की फसल में जल का प्रबंधन करें?
2: देखिए, देश के बहुत बड़े तबके में, बहुत बड़े क्षेत्र में धान की फसल को उगाया जाता है। वर्तमान आंकड़ों को देखें हम तो 50 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र से ज्यादा क्षेत्रों में धान उगाया जाता है, और देश का ऐसा कोई राज्य या भाग नहीं है जिसमें धान नहीं उगाया जाता। और अच्छी बात यह है कि कुछ भागों को छोड़कर ज्यादातर भागों में जहां धान उगाया जाता है वहां पे बहुत अच्छी बरसात हुई है। यानी कहने का मतलब यह है कि सिंचाई की धान में इस समय आपको कम आवश्यकता होगी अगर आपकी बरसात अच्छी हुई है तो। हाँ, अगर कहीं पे ज्यादा बरसात होगी, बाढ़ आ गई, तो वहां धान से आपको पानी को निकालना पड़ेगा। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने बताया कि धान अब जन्मिक अवस्था में, तो भाइयों बहनों मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि इस समय पे धान की फसल में पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर पानी हर समय हमारे धान की फसल में होना चाहिए। एक दिन के लिए भी पानी या 2 दिन के लिए भी पानी नहीं होगा तो उसका हमारी फसल की पैदावार पर उल्टा असर होगा। अतः इस दिशा में आप ध्यान रखें, आवश्यकता अनुसार समय समय पर अपने खेत में पानी बनाए रखें, कम से कम छिछला पानी आप उसमें बनाए रखें।
1: बिल्कुल, तो किसान मित्रों आप जरूर ध्यान दें इस बात पर कि आपको जल का प्रबंधन ठीक तरह से धान की फसल के लिए करना है। और सब फसल कोई भी हो, खरपतवार आते ही आते हैं, तो उनका नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी है, तो कैसे कर सकते हैं?
2: जी, जो ये अवस्था है, आज की अवस्था है धान की, जो ज्यादातर जन्मिक अवस्था है, इस अवस्था पे खरपतवार पहले ही किसान भाई नियंत्रित कर लेते हैं, और अगर इस समय भी किसी किसान भाई के खेत में खरपतवार है तो इस समय पे कोई भी खरपतवार नाशी दवाई नहीं है जो धान की फसल में खरपतवारों का नियंत्रण कर सके। अगर इस अवस्था पे आपके खरपतवार आते हैं, चाहे वो चौड़ी पत्ती के हों चाहे सकरी पत्ती के हों, उनको आपको निकाई द्वारा हाथ से ही आपको उनको उखाड़ के बाहर खेत के फेंकना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है।
1: बिल्कुल, तो इस तरह से किसान मित्रों आप अपने धान की फसल से जो खरपतवार है उनको उखाड़ के फेंक सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे खरपतवार आते हैं तो फसलों में रोग कीट भी आते हैं, तो जो अभी आपने जो अवस्था बताई है धान की फसल की, तो कौन कौन से कीट के आने की संभावना होती है और क्या हानि वो पहुंचाते हैं?
2: निश्चित तौर पे इस समय पे कीटों की अगर हम बात करें तो तना छेदक एक कीट होता है, वो तो हर साल आता ही है धान में, और वो अवस्था को नहीं देखता, वो वनस्पति की अवस्था में भी आता है और जब बालियां निकलती हैं तब भी आता है। इसी तरीके से पत्ती लपेटक कीट है, ये भी कभी भी

0: आ सकता है, खास करके शुरुआती अवस्था में काफी आता है। तीसरा महत्वपूर्ण कीट है धान का, जो भूरा फुदका कहते हैं, ब्राउन प्लांट होपर। ये भूरे फुदके होते हैं, ये पौधे के तने पे बैठते हैं नीचे और फसल को नुकसान कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे चल के जब आपके दाने में दूध बनेगा, अभी तो शायद वो अवस्था नहीं आई है, तब आपके गंधी कीट भी आ सकता है। इसके अलावा और कई सारे कीट है जो धान की फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बात यही है कि आपको देखना है कि कहीं आपकी धान की फसल को इन कीटों द्वारा नुकसान तो नहीं हो रहा। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि खेत में आप जाएं सुबह या शाम और अपनी फसल को गौर से देखें और पौधों को हिलाएं, कहीं कोई कीड़े मकोड़े आपको उड़ते तैरते हुए दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो आप तुरंत उनका समाधान करें।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बात की थी तना छेदक कीट की और पत्ती लपेटक कीट की, तो किस प्रकार ये फसल को हानि पहुंचाते हैं और इनकी रोकथाम वो कैसे की जा सकती है?
0: जी, ये दोनों कीट लगभग साथ साथ ही धान की फसल में आते हैं। और पहले हम तना छेदक की बात करते हैं। इसकी जो सूंडी या इल्ली होती है वो जमीन की सतह से पौधे के तने में घुस जाती है, धान के तने में घुस जाती है और अंदर के पदार्थों को खाती रहती है। तो ऊपर की जो बीज की पत्तियां होती हैं वो भूरी होकर सूख जाती हैं। इसको हम मृत केंद्र कहते हैं, डेड हर्ट्स कहते हैं। इसके अलावा अगर तना छेदक बाली अवस्था पे आता है तो ये सूंडी अंदर ही अंदर बाली को काट देती है। और फिर आप अगर इस तरह की बाली को देखेंगे तो उसका रंग सफेद हो जाएगा, उसमें दाने नहीं भरेंगे, खाली उसमें जो है दाने दिखाई देंगे आपको और बाली का रंग सफेद होगा। कुछ किसान भाई इसको सफेद बाली रोग भी कहते हैं, हालांकि ये रोग नहीं है, कीट द्वारा हानि होती है। इस तरह की बाली को आप जब खींचेंगे तो बड़ी आसानी से वो खींच जाती है और इससे पैदावार में काफी हानि होती है। और आपने दूसरा सवाल पूछा कि भाई ये पत्ती लपेटक क्या करता है, तो इसकी भी सूंडी नुकसान करती है। ये करती क्या है, पत्ते पे पहुंच जाती है और पत्ते को जो किनारे होते हैं दोनों तरफ से उनको सिल देती है और अंदर एक सुरंग सी बना लेती है। इसको लीफ रोलर भी कहा जाता है और अंदर से ये क्लोरोफिल को खा जाता है। किसान भाइयों, आपकी फसल के जो पत्ते हैं वो सफेद रंग के हो सकते हैं और इसकी अवस्था अगर ज्यादा उग्र हो जाए, बहुत ज्यादा इसका हमला हो जाए, तो पूरा खेत हमें ऐसे दिखाई देगा जैसे चूने से किसी ने पुताई कर दी हो। जगह जगह आपको सफेद पत्ते दिखाई देंगे। तो ये इन दोनों कीटों के लक्षण हैं। इनकी रोकथाम भी एक जैसी है, दोनों को मतलब एक दवाई से आप नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए आप ध्यान से सुने, कार्बाफ्यूरान 3CG है, ये CG जो जी है उस पर बैन लग गया है, लेकिन कार्बाफ्यूरान 3CG जो है बाजार में मिलती है, इसकी 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप बुरक सकते हैं, छिड़क सकते हैं। इसी तरीके से एक दूसरा ग्रेनुल होता है, दानेदार दवाई होती है, जिसको कारटॉप हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं। इसकी 4G मात्रा होती है, 4% ग्रेनुल आते हैं, दाने आते हैं, इसका आप बुरकाव कर सकते हैं। इसकी मात्रा भी लगभग 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास है। इसके अलावा क्लोर पारीफास दवाई आती है, उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके लिए 2 ग्राम क्लोर पारीफास आती है, प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से इन कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, कीटों के नियंत्रण करने के लिए आपने जो दवाइयां बताई हैं, छिड़काव के बारे में आप बता रहे हैं, तो किस समय छिड़काव करना चाहिए ताकि उसका असर सही तरह से हो?
0: बिल्कुल, ये वाजिब सवाल है आपका, क्योंकि इस समय पे बरसात भी होती रहती है। तो अगर हमारी छिड़कने वाली दवाई है, अगर हम पर्णीय छिड़काव कर रहे हैं, यानी हम स्प्रेयर मशीन से छिड़काव कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमें मौसम की जानकारी लेना चाहिए। अगर हमें पता है 4 घंटे बाद बरसात होगी, तो इस तरह के छिड़काव को आप टाल दें। जब आपको मौसम साफ दिखाई दे और उम्मीद हो कि अगले 6-7 घंटे बरसात नहीं होनी, तब आप इस तरह की दवाई का छिड़काव करें। दूसरी तरफ मैंने दानेदार दवाई जैसे आपको बताई है, इनमें खास ध्यान यही रखना कि खेत में ज्यादा पानी ना भरा हो और ज्यादा बारिश की संभावना ना हो। छिछला पानी हो, हल्का पानी हो, तब ये दानेदार दवाई ज्यादा प्रभाव डालती है, क्योंकि इनकी मात्रा थोड़ी कम होती है। तो इसमें आप रेत में मिला के आप इस तरह के दानेदार दवाइयों को अपने खेत में बुरक सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, दवाई अगर हमारे किसान भाई अपने खेतों में लगा रहे हैं, खास करके कीट नियंत्रण की, तो अपने स्वास्थ्य का उस समय किस तरह से ध्यान रखना उनको आवश्यक है?
0: जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी होता है कि किसान भाई जब भी इन दवाइयों का छिड़काव करें, प्रयोग करें, तो कुछ सावधानियां आपको बरतनी पड़ती है। जैसे सबसे पहले अपनी आपको आंखों को बचाना है, इसके लिए आप एक चश्मा लगाएं, आपके सर में, बालों में एक टोपा या कोई इस तरह की चीज ओढ़ें और आपके अपने चेहरे को भी बचाएं, हाथों में दस्ताने हों, आपके ग्लव्स हों, आप कोशिश करें कि ये पदार्थ जो अब आप प्रयोग में लाते हैं खेत में, आपके शरीर पे ना आए, आपके किसी अंग में न जाए। जो किसान भाई, हालांकि बीड़ी बाड़ी नहीं पीनी चाहिए आदमी को, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, फिर भी

0: कोई किसान अगर इस तरह के कार्य को करता है तो आपको छिड़कने के बाद तुरंत बीड़ी ना पिए, अपने मुंह पे अपनी उंगलियों को ना लगाएं, इससे भी आपको हानि हो सकती है। और साथ ही साथ मौसम का आपको ध्यान रखना है, और ये जो इसकी पैकिंग होती है, जो डब्बे होते हैं या पैकिंग होती है, उसको खेत के आसपास ना रखें, खेत से दूर ले जाके उनको नष्ट कर दें। और अगर घर में आप इस तरीके की जहरीली दवाई रखते हैं तो उनको बच्चों की पहुंच से दूर रखें, और किसी कारणवश अगर आप इस दवाओं को सांस में ले लेते हैं या किसी तरीके से निकल जाते हैं, खा लेते हैं, तो तुरंत किसी चिकित्सक से आप संपर्क करें और अपना इलाज कराएं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है, और इसी बात से एक बात जोड़ते हुए मैं एक और जानकारी आपसे चाहूंगा कि जो भी हमारे किसान मित्र अपने खेतों के लिए दवाइयां खरीदते हैं, चाहे वो कीटनाशक हो या रोगों के लिए खरीदते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? कई बार नकली दवा भी आ जाती है।
0: जी बिल्कुल, देखिए अभी कई बार किसान भाई सवाल करते हैं, भाई मैंने खरपतवार नाशी डाला, कीटनाशी डाला, तो असर नहीं हुआ। किसान भाइयों, आजकल बाजार में बहुत नकली दवाएं, नकली चीजें मिल रही हैं। पहली बात तो यह है कि आपको किसी दुकानदार पर निर्भर नहीं होना है। आप दुकानदार को समस्या कुछ बताएंगे, वो दवाई कुछ दे देगा। पहली बात तो दवाई का चयन ही गलत हो जाता है, और दूसरी बात वहां पर संभावना होती है कि आपको नकली दवाई मिल जाए। थोड़ी महंगी जरूर मिलेगी, लेकिन अच्छी कंपनी की आप दवाई लें। और जो दूसरा प्रमुख हिस्सा है वो ये है कि आप रसीद जरूर लें, पक्की रसीद लें। आजकल हर दवाई के डिब्बे पे नंबर होता है, उसका उससे पहचान हो सकती है कि वाकई ये कंपनी ने बनाई है, उसकी जांच की जा सकती है, और QR कोड वगैरह से स्कैन करके उसका सारा डिटेल हम पता कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि एक्सपायरी डेट देखें, उस पर कहीं उसकी म्याद तो खत्म नहीं होगी दवाई की। कई बार ऐसा होता है कि दवाई हमारी की म्याद खत्म होगी, एक्सपायरी होगी, और फिर हम उसको प्रयोग में लाते हैं तो वो प्रभावी नहीं होती, इसका ध्यान रखें।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बात आपने बताई कीटों का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, और बात वर्तमान समय की करी रहे हैं, तो इस समय क्या जो सूत्रकृमि होते हैं वो भी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं?
0: जी हाँ, सूत्रकृमि किसान भाइयों क्या होते हैं, छोटे छोटे सूत्र के आकार के कीड़े होते हैं, नन्हे नन्हे कीड़े होते हैं, जैसे कि धागा होता है सफेद रंग का, और ये मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, और कई बार ये धान की जड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। वहां प्रवेश करने के बाद ये अपनी बढ़वार करते हैं, और धान की जड़ों में सफेद रंग की छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, और ये जब गांठें बनती हैं तो पौधा हमारा पोषक तत्वों को नहीं ले पाता, यहां तक कि पानी को भी नहीं ले पाता। ये खास करके उन दशाओं में आता है जब हमने धान की सीधी बिजाई की हो, या खेत में पानी का प्रबंधन कम हो, पानी कम लगाया हो हमने। अब क्या होता है, निमेटोड या सूत्रकृमि जब जड़ में गांठे बना लेते हैं तो पौधे की बढ़वार रुक जाती है, उसकी पत्तियां पीली हो जाती है, और कई बार तो उस पर बालियां नहीं आती। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों आप कार्बाफ्यूरान का तुरंत प्रयोग करें, और जांच पहले करें, हर पौधे को उखाड़ के देखें कुछ पौधों को, और अगर उसमें जड़ों में गांठे दिखाई दें तो आप कार्बाफ्यूरान 3 सीजी इसकी 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टर के हिसाब से बोरक दें, या फिर आप 250 किलोग्राम नीम की खली प्रति हेक्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं, इससे निमेटोड रुकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये कीटों के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी है, सूत्रकृमि के बारे में आपने बताई, अब बात करते हैं रोगों के बारे में
0: जी।
1: तो कौन कौन से रोग आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है इस मौसम में, किस तरह से उन पर नियंत्रण किया जा सकता है?
0: जी देखिए, इस समय पे 4 रोग या 5 रोग प्रमुख होते हैं, जैसे कि एक ब्लास्ट होता है, बदरा रोग होता है, वो आ सकता है। दूसरा शीत ब्लाइट, जिसको हम आवरण झुलसा कहते हैं। तीसरा हमारा बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, यानी जीवाणु पत्ती झुलसा हो सकता है। और एक हमारा फाल्स स्मट या आभासी कंड होता है। इसके अलावा कहीं कहीं पर बकानी रोग के आने की भी संभावना रहती है।
1: तो डॉक्टर साहब, किस तरह से हमारे किसान भाई इन रोगों को पहचाने और किस तरह से वो उनका जो उपचार करें?
0: जी बिल्कुल, जैसे रोग, जैसे ब्लास्ट रोग होता है, बदरा रोग कहा जाता है, इसमें क्या होता है बदरा रोग में कि धान के पौधों पे आग के आकार के धब्बे बन जाते हैं, और ये धब्बे फिर बढ़ते जाते हैं और पूरी पत्ती को भूरा रंग कर देते हैं, इससे काफी नुकसान होता है। और ये जो रोग है, बदरा रोग है या ये ब्लास्ट रोग है, ये धान के कई भागों में आता है, कई बार नोड पे आ जाता है, जो गांठें होती हैं धान के तने पे उस पे भी आ जाता है, पत्तों पे भी आ जाता है, यहां तक कि धान की जो ग्रीवा होती है, जिसको हम गर्दन कहते हैं, धान की बाली का वो भाग जो तने से जुड़ता है उसको गर्दन कहा जाता है, जैसे हमारी गर्दन होती है, इस पे भी कवक का आक्रमण हो जाता है, जिसकी वजह से बाली सड़ सी जाती है वहां से और टूट के लटक जाती है। किसान भाइयों, कई बार तो हमने ऐसा देखा है कि शाम को किसान ने देखा कि खेत ठीक है, और जब वो सुबह अपने खेत में गए तो उन्होंने देखा कि 20-30% तक बालियां अपने स्थान से लटक जाती है, यानी उस पर कवक का हमला हो चुका है। तो इस तरह के जो नेक ब्लास्ट है या गर्दन तोड़ किसान भाई कहते हैं, इसके इलाज के लिए आपको क्या करना है, एक मिक्सचर आता है जो हमारे कवर

0: कीटनाशी होते हैं उसमें एजोक्सीस्ट्रोबिन, ध्यान से सुने, एजोक्सीस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल, ये जो दो दवाइयों का मिश्रण आता है और इसकी 500 मिलीलीटर या सिर्फ आधा लीटर मात्रा लेनी है और 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टर के हिसाब से छिड़क दें तो आपका ये नियंत्रण हो जाता है इसका रोग का, नेक ब्लास्ट का। इसके लिए साथ ही आप बावेस्टीन का भी प्रयोग कर सकते हैं जिसको कार्बेंडाजिम कहते हैं, या प्रोपेकोनाजोल या हेक्साकोनाजोल का भी प्रयोग किया जा सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जीवाणु पत्ती अंगमारी कई बार हमारी जो धान की फसल है उसको काफी नुकसान करता है, इसके लक्षण और कंट्रोल के बारे में आप किसान भाइयों को क्या जानकारी देना चाहिए?
0: बिल्कुल, और मेरी अभी कुछ दिनों पहले कुछ किसानों भाइयों से बातचीत भी हुई थी तो कई जगह मध्य भारत में खास करके इस बार जो जीवाणु पत्ती झुलसा है वो आ रहा है और उसके आने की संभावना है। किसान भाइयों, पहले आपको इसके लक्षण पहचानने के लिए सबसे पहले ये होता है कि पौधे की वृद्धि रुक जाती है। दूसरा, पौधे के जो किनारे होते हैं, पत्तों के जो किनारे होते हैं, नोक से पीलापन शुरू होता है और जो मार्जिन होते हैं, जो पत्ती के दोनों किनारे होते हैं, इसमें लंबे लंबे लहरदार पीले रंग की जो है पट्टियां सी बन जाती हैं और फिर ये पट्टियां बड़ी होकर पूरा पत्ता भी पीला हो सकता है, पत्ता हमारा सूख सकता है। धान के कई पत्ते एक साथ सूख जाते हैं, कई बार तो पूरे की पूरी फसल हमारी नष्ट हो सकती है। इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो सबसे पहले आप जांच कराएं कृषि विज्ञान केंद्र से या विश्वविद्यालय से कि कहीं ये रोग जीवाणु पत्ती झुलसा तो नहीं है। अगर ये कंफर्म हो जाए तब तुरंत इस रोग का आप इलाज करें। इसके लिए यहां से हम ये सुझाव देते हैं कि आप एक मिक्सचर होता है बना बनाया, इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट, ध्यान से सुने, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 9% होता है और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड ये 1% होता है और इसके अलावा आपके कापर ऑक्सीक्लोराइड, सो ये मिश्रण बना बनाया आता है तीन दवाइयों का, मैं दोबारा बता रहा हूँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट, टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इस मिश्रण की आप 2 ग्राम मात्रा लें और प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के आप छिड़क दें। अगर ये रोग आपके खेत में फिर भी दिखाई देता है तो आप इस छिड़काव को दोहराएं। और एक चीज का खास ध्यान रखना कि इस खेत से जो प्रभावित खेत है इससे पानी का जो बहाव है वो स्वस्थ खेत में ना जाने दें, क्योंकि पानी के माध्यम से दूसरे खेतों में रोग फैलता है। और दूसरी बात यह कि नाइट्रोजन का प्रयोग आपको कम से कम करना है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, धान की फसल में इस समय जो आवासीय कंड है वो भी अक्सर दिखाई देते हैं, फसल में आ जाते हैं, तो इसके लक्षण और इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है?
0: जो फाल सिस्मेटिक किसान भाइयों, इसको हल्दी गांठ रोग भी आप लोग कहते हैं, हिंदी में इसे आवासीय कंड कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब दाने निकलते हैं और दाने में दूध बन रहा होता है तो उस समय दाने के अंदर जो कवक होता है, एक खास प्रकार का कवक होता है, उसके बीजाणु बनने शुरू हो जाते हैं और वो धान के दाने को पीला रंग कहते हैं, इसलिए आप हल्दी गांठ कहते हैं। दाना फूल जाता है, 2-2.5 गुना हो जाता है, शुरू में वो दाना पीले रंग का दिखाई देगा या ऑरेंज कलर का दिखाई देगा, फिर वो काले रंग का हो जाता है। इससे धान की गुणवत्ता काफी प्रभावित होती है, उसकी क्वालिटी में गिरावट आती है, हालांकि पैदावार पर कोई खास असर नहीं पड़ता, लेकिन जब तक आप पहचान पाते हैं इस रोग को तब तक काफी देरी हो चुकी होती है, क्योंकि इसका जो बीजाणु है, इसका जो फाइफा है फंगस का, वो पौधे के अंदर पहले से ही मौजूद रहता है, सिर्फ आखिर में दिखाई देता है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दें तो आप कापर ऑक्सीक्लोराइड, ध्यान से सुने, कापर ऑक्सीक्लोराइड, इसकी 1.25 किलोग्राम मात्रा 500 लीटर पानी में घोल बनाकर तुरंत छिड़क दें तो इस रोग का नियंत्रण काफी हद तक आप कर सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि जो किसान भाई जिनकी धान की फसल लगी हुई है खेतों में, किन किन बातों का ध्यान दें, किस तरह से अपनी फसल की देखभाल करें ताकि उनको अच्छी पैदावार मिले?
0: निश्चित तौर पे अगर आपने अभी भी नाइट्रोजन की खुराक नहीं दी है, धान आपने पछेती लगाया था, तो जो तीसरी और अंतिम खुराक है धान की वो जरूर उसमें लगा दें। प्रायः ये गाभे पे लगाई जाती है जब उसमें पेनिकल का बनना, जो बाली का बनना पौधे के अंदर शुरू हो जाता है। उचित जल प्रबंधन करना है, जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है, जननिक अवस्था है, इसमें आपको खेत में 1 से 2 सेंटीमीटर पानी हमेशा रखना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि अपनी फसल की लगातार निगरानी आपको करते रहना है, खेत में आते जाते रहना है और समस्या ध्यान से आपको देखनी है। अगर कोई समस्या दिखाई दे तो उसका आप वैज्ञानिकों से सलाह लें और जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां से सलाह लें और दुकानदार से आप सलाह ना लें, मेरा ये मानना है, और फिर आप उसका उपचार करें, उसका निदान करें। तो आशा करता हूं कि अगर इन बातों पर आप ध्यान रखोगे तो धान की अच्छी पैदावार आप ले पाओगे।
1: बिल्कुल डॉक्टर दिनेश कुमार जी, आपकी बातों का हमारे जो किसान भाई हैं जरूर ध्यान रखेंगे, उसी तरीके से अपने फसल में समय कार्य करेंगे, देखभाल करेंगे। कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी

0: देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: उतना बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल पहलाती थी, शुद्धता चलती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: और अब नीलम जी, हमारे किसान बहन भाई इंतजार कर रहे होंगे मौसम आधारित कृषि सलाह का, ताकि वो उसके अनुसार अपने कृषि कार्य हैं उनको अच्छे से संपन्न कर पाएं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार आप किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस मौसम में धान की फसल को नष्ट करने वाली ब्राउन प्लांट होपर का आक्रमण आरंभ हो सकता है। इसलिए आप किसान भाई खेत के अंदर जाकर पौध के निचले भाग के स्थान पर मच्छरनुमा कीट का निरीक्षण करें।
5: और इस समय धान की फसल मुख्यतः वानस्पतिक वृद्धि की स्थिति में है, अतः फसल में कीटों की निगरानी करें।
0: और इस मौसम में आप किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि स्वीट कॉर्न यानी कि माधुरी बिन ऑरेंज और बेबी कॉर्न की बुवाई मेड़ों पर करें।
5: और इस मौसम में टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूल गोभी और पत्ता गोभी की पौध तैयार है, तो इस मौसम को मद्देनजर रखते हुए पौधों की रोपाई मेड़ों पर करें।
0: कद्दू वर्गी सब्जियों को ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था करें, ताकि वर्षा से सब्जियों की बेलों को गलने से बचाया जा सके।
5: और कद्दू वर्गी एवं अन्य सब्जियों में मधुमक्खियों का बड़ा योगदान है, क्योंकि वे परागण में सहायता करती हैं, इसलिए जितना संभव हो मधुमक्खियों के पालन को बढ़ावा दें। कीड़ों एवं बीमारियों की निरंतर निगरानी करते रहें, कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क रखें और सही जानकारी लेने के बाद ही दवाइयों का प्रयोग करें।
0: तो किसान भाइयों, ये तो थी मौसम आधारित कृषि सलाह। और अब श्रोताओं, आपको बताते हैं दिल्ली की आजादपुर मंडी का फल सब्जी का भाव। तो श्रोताओं, सबसे पहले बात करें सब्जी की, तो आलू बिका 12 रुपए प्रति किलोग्राम, प्याज बिकी 25 रुपए प्रति किलोग्राम, टमाटर बिका 25 रुपए प्रति किलोग्राम, बैंगन बिका 17 रुपए प्रति किलोग्राम और खीरा बिका 22 रुपए प्रति किलोग्राम। अगर हम भिंडी की बात करें तो वो बिकी 40 रुपए प्रति किलोग्राम, मटर बिकी 75 रुपए प्रति किलोग्राम और तोरई बिकी 19 रुपए प्रति किलोग्राम।
5: और अब बात करते हैं फलों के भाव की, तो सेब बिका 90 रुपए प्रति किलोग्राम, केला बिका 20 रुपए प्रति किलोग्राम, अमरूद का भाव रहा 45 रुपए प्रति किलोग्राम और मौसमी बिकी 29 रुपए प्रति किलोग्राम, पपीता बिका 23 रुपए प्रति किलोग्राम और तरबूज बिका 15 रुपए प्रति किलोग्राम।
0: तो श्रोताओं, आपने जाना फल सब्जी का भाव। और देखिए, अब नीलम जी घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अपने श्रोताओं से अनुमति ली जाए, लेकिन अनुमति लेने से पहले अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि आपको आज का किसान वाणी कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप कोई भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। तो इसी के साथ कार्यक्रम किसान वाणी के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति, आप सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
2: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
3: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
2: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
3: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
2: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:35 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं गजलों पर केंद्रित ये कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजलों पर केंद्रित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 7:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे प्रादेशिक समाचार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में आज दिल्ली सौर ऊर्जा नीति 2023 के द्वितीय संशोधन को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम बिना किसी शुरुआती खर्च के मिलेगा। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा विधानसभा परिसर में अत्याधुनिक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच नीट पेपर लीक के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी निरस्त करने का आदेश दिया। केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए दिल्ली को 1000 मीट्रिक टन प्याज आवंटित करने का फैसला लिया और दिल्ली यातायात पुलिस ने मोटर कारकेड रिहर्सल के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी करते हुए बताया कि कल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मुख्य रास्तों पर यातायात बाधित रहेगा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आज दिल्ली सौर ऊर्जा नीति 2023 के द्वितीय संशोधन को मंजूरी दी गई। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके अंतर्गत 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम बिना किसी शुरूआती खर्च के मिलेगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि सरकार इसे पूरी तरह से इंस्टॉल करके देगी और उपभोक्ताओं से कोई शुल्क भी नहीं लिया जाएगा।
4: सोलर रूफ सिस्टम जो है पूरी तरीके से सरकार द्वारा बिना किसी राशि लिए लगाया जाएगा। ये ऐतिहासिक होगा, जिसके लिए हमने टारगेट लिया है कि 2,30,000 हाउसहोल्ड पर ये रूफ टॉप सोलर प्लांट पूरी तरीके से मुफ्त उसमें लगाया जाएगा।
3: मुख्यमंत्री ने बताया कि बिजली पर मिलने वाले मौजूदा सब्सिडी जारी रहेगी, जिससे परिवारों को सब्सिडी के फायदे और सोलर पावर से होने वाली बचत दोनों का लाभ मिल सकेगा।
4: हमारा टारगेट हाई है, हमने दिल्ली की जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उन सभी पे ऑलरेडी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने का काम जारी है और वेंडर जो है इसमें पहले 5 सालों तक फ्री O&M देगा। हमारा फोकस जो है लॉन्ग टर्म इफेक्टिव फंक्शनिंग पे है, रेजिडेंशियल सोलर नेट मीटरिंग प्रोसेस से जो पहले प्रोसेस होता था 75 दिन का, उसको भी हमने घटा के 25 दिन पे ले आए हैं ताकि इस सारे प्रोसेस को एक्सपीडाइट हम कर सकें।
3: इस अवसर पर दिल्ली सरकार में ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मुफ्त बिजली का इस्तेमाल राजनीतिक डर फैलाने के लिए किया, जबकि वर्तमान भाजपा सरकार इसे दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और परिवारों के सशक्तिकरण का माध्यम बना रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज राजधानी के यशोभूमि में भारत इलेक्ट्रिसिटी पावर जेन इंडिया और इंडियन यूटिलिटी वीक के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि ये कार्यक्रम देश के ऊर्जा संक्रमण, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु लचीलापन तथा विकसित भारत के विजन पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि विधानसभा परिसर में एक अत्याधुनिक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों को इस ऐतिहासिक स्थल के समृद्ध इतिहास, संवैधानिक विरासत और स्थापत्य धरोहर को जानने समझने का अवसर प्रदान करेगा। एक रिपोर्ट।
5: विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सचिवालय के युवा संपर्क कार्यक्रम के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं से संवाद करते हुए जानकारी दी कि परिसर को आम जनता के लिए शैक्षिक

0: गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित संग्रहालय में दुर्लभ ऐतिहासिक कलाकृतियों, अभिलेखीय दस्तावेजों और आजादी से पूर्व तथा आजादी के बाद विधानसभा के विकास क्रम को दर्शाने वाली संवादात्मक प्रदर्शनी को प्रदर्शित किया जाएगा। वर्ष 1912 में निर्मित इस ऐतिहासिक स्थल के कुछ हिस्सों को सुव्यवस्थित और विषय वस्तु आधारित सार्वजनिक स्थान के रूप में विकसित कर सचिवालय का उद्देश्य आगंतुकों को राष्ट्र के विधायी अतीत के महत्व पूर्ण और आधारभूत पड़ावों से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी निरस्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने इन मामलों में आगे जांच न करने का आदेश दिया है।
2: न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम के दायर आवेदनों में उल्लेखित छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं। न्यायालय के अनुसार यह आदेश उन विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दिया गया है जो सद्भावना के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। न्यायालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 20 से 25 जुलाई के बीच प्रदर्शन की घटनाओं से जुड़ी कोई नई प्राथमिकी दर्ज न करने को कहा। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में मौजूद 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी, जिन पर पहले से ही संगीन आपराधिक मामले हैं। पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बयान दर्ज किया। उन्होंने कहा कि नीट यूजी 2026 परीक्षा के रद्द होने के कारण आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए 3 महीने के भीतर एक नीति बनाई जाएगी। पीठ ने कॉकरोच जनता पार्टी का बयान भी दर्ज किया, जिसमें पार्टी ने इस महीने की 5 तारीख को दिल्ली में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन वापस लेने की घोषणा की थी। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: केंद्र सरकार ने राजधानी में प्याज की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए दिल्ली को 1000 मीट्रिक टन प्याज आवंटित करने का फैसला लिया है। इस फैसले के अंतर्गत उचित मूल्य वाली दुकानों के जरिए ग्राहकों को 35 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज मिलेगा। इसके अलावा सभी 13 जिलों में उचित मूल्य की दुकानों और वैन के माध्यम से भी प्याज बेचा जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार प्याज की उपलब्धता और कीमतों पर कड़ी नजर रख रही है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि सरकार की कोशिश है कि राजधानी में किसी भी हाल में प्याज की कमी न हो और लोगों को जरूरी खाने पीने की चीजें सही कीमत पर मिलती रहें। इस बीच देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सुरक्षित भंडार से प्याज बाजार में भेजना शुरू कर दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। मंत्रालय ने बताया कि नासिक से भेजी गई पहली कांदा एक्सप्रेस 450 मीट्रिक टन प्याज लेकर दिल्ली पहुंच चुकी है। इसके अलावा सड़क मार्ग से भी लगभग 1000 मीट्रिक टन प्याज प्रमुख बाजारों में भेजा जा रहा है। चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए सरकार ने चीनी के भंडारण की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार संशोधित नियमों के तहत कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। सरकार ने भरोसा दिया है कि इस फैसले से बाजार में चीनी की कमी नहीं होगी और कीमतें काबू में रहेंगी। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने आज दिल्ली नगर निगम और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा आयोजित नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि राजधानी में हर दिन भारी मात्रा में कचरा निकलता है, इसलिए नए 4 बिन सिस्टम यानी 4 डिब्बे वाली व्यवस्था के जरिए कचरे को स्रोत पर ही अलग करने पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से कचरे को डंपिंग साइट पर फेंकने की सोच को बदलकर कचरे से संपदा बनाने की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली नगर निगम के मध्य और बाहरी उत्तर क्षेत्र की टीमों ने अपने अपने उपायुक्त की अगुवाई में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को मजबूत करने और पहचाने गए हॉटस्पॉट पर आगे की कार्रवाई के लिए मिलकर एक समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली नगर निगम ने बताया कि इस दौरान मिलकर प्लानिंग करने, असरदार तरीके से काम लागू करने और

0: साफ हवा तथा सेहतमंद शहरी माहौल के लिए लगातार कोशिशें करने पर चर्चा की गई। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कल नई दिल्ली में प्रवर्तन कार्यबल ईटीएफ की 138वीं बैठक आयोजित की। इस बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण और नियमों के पालन की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि 16 दिनों की रिपोर्टिंग अवधि के दौरान आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड ने प्रमुख क्षेत्रों में 121 निरीक्षण किए। आयोग ने निर्धारित मानदंडों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रवर्तन को मजबूत करने, समय पर जांच करने और काम करने वाली एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने पर बल दिया। आयोग ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए औद्योगिक इकाइयों, निर्माण तथा विकास कार्यों, डीजल जनरेटर सेट और सड़क निर्माण कार्यों सहित सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में त्वरित परिवर्तन कार्रवाई, सख्त अनुपालन निगरानी और निरंतर निरीक्षण पर विशेष बल दिया। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बस चलाने वाले सभी ऑपरेटर्स के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। यातायात विभाग से जारी निर्देशों के अंतर्गत यात्रियों की सुरक्षा के लिए निर्धारित सुरक्षा मानक और संचालन संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अंतर्गत बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, पैनिक बटन, फायर एक्सटिंग्विशर और फर्स्ट एड किट रखना जरूरी है। इसके अलावा सभी बसों में अग्निशमन यंत्र और प्राथमिक उपचार किट का अनिवार्य रूप से होना जरूरी है। साथ ही बस ड्राइवर और स्टाफ के लिए शराब तथा नशीले पदार्थों का सेवन कर गाड़ी चलाना सख्त मना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के पुलिस आयुक्तों और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर तथा मैनपुरी के पुलिस अधीक्षकों को ग्रेटर नोएडा से बस में सवार हुई एक लड़की के साथ चालक और कंडक्टर द्वारा कथित यौन उत्पीड़न के मामले में नोटिस जारी किया है। यह घटना पिछले महीने की 4 तारीख को हुई थी। आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें जांच की स्थिति और पीड़िता को दिए गए मुआवजे का विवरण शामिल हो। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए ये नोटिस जारी किए हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने आज बताया कि डॉक्टर आरपी सेंटर फॉर ऑप्थाल्मिक साइंसेज के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय नेत्र बैंक ने पिछले साल 2200 से ज्यादा कॉर्निया दान किए, जिनमें से लगभग 82% कॉर्निया का इस्तेमाल किया गया। 41वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर आकाशवाणी समाचार से बातचीत में डॉक्टर आरपी सेंटर की प्रमुख डॉक्टर राधिका टंडन ने कहा कि सेंटर का इस्तेमाल दर राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है।
2: ऑलमोस्ट 1700 पेशेंट्स को कॉर्निया ट्रांसप्लांट मिला है। ये देश का सबसे ज्यादा है, क्योंकि नेशनल एवरेज है अबाउट 50% यूटिलाइजेशन, क्योंकि हम रेफरल सेंटर है और हम आधुनिक तरीके से ऑपरेशन करते हैं, प्लस हमारे पास फुल रेंज ऑफ पेशेंट्स होते हैं, उनके बीमारी के अनुसार ट्रांसप्लांट होता है।
0: दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी में कल आयोजित होने वाले मोटर कारकेड रिहर्सल के मद्देनजर एक यातायात परामर्श जारी किया है। यातायात परामर्श जारी करते हुए पुलिस ने बताया कि कल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक राजधानी के मुख्य मार्ग पर यातायात बाधित रहेगा, जिनमें सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, मथुरा रोड, जनपथ और 12 खंबा रोड सहित अन्य सटे मार्ग शामिल हैं। यातायात पुलिस ने यात्रियों, विशेषकर रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और अस्पताल जाने वालों को यात्रा से पहले योजना बनाने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। साथ ही वाहन चालकों से यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने और संभावित देरी को ध्यान में रखते हुए यात्रा करने की अपील की गई है। यात्री संबंधित यातायात अधिक जानकारी दिल्ली यातायात पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में आज दिल्ली सौर ऊर्जा नीति 2023 के द्वितीय संशोधन को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम बिना किसी शुरुआती खर्च के मिलेगा। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा विधानसभा परिसर में अत्याधुनिक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच नीट पेपर लीक के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी निरस्त करने का आदेश दिया और दिल्ली यातायात पुलिस ने मोटर कार के रिहर्सल के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम गीत मालिका में मैं चेतना आप सभी का स्वागत करती हूं। रात्रि के 8 बजे हैं स्टूडियो की घड़ी के अकॉर्डिंग और रहेंगे आपके साथ लगभग लगभग पूरे 45 मिनट तक। फिलहाल हमें कार्यक्रम की शुरुआत करनी होगी एक खूबसूरत गीत के साथ और फिर लौट कर आते हैं, करेंगे ढेर सारी बातें।

जी हाँ दोस्तों, अभी आपने गीत सुना फिल्म खामोशियां से ही अरिजीत सिंह की आवाज में, और इस गीत को लिखा रश्मि सिंह ने और संगीत दिया जीत गांगुली ने। आप जुड़े हुए कार्यक्रम गीत मालिका से, और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त चेतना। रोजमर्रा की भागदौड़ जिंदगी में जहां हर तरफ शोर है, ट्रैफिक की आवाज, फोन की घंटियां और काम की ढेर सारी जिम्मेदारियां, आज हम एक अलग सफर पर निकलने वाले हैं दोस्तों। एक ऐसा सफर जहां पर शब्द कम है और एहसास ज्यादा है। आज की हमारी महफिल सजी है जी आवाज के नाम, जो सुनाई नहीं देती है लेकिन सबसे ज्यादा समझ में आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खामोशी की। और किसी ने खूब ही कहा है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता, और कुछ खामोशियां ऐसी होती हैं जिनका कोई हिसाब नहीं होता। तो लगभग हम आधे घंटे से ज्यादा के सफर पर निकलेंगे और खामोशी के सन्नाटे में कुछ गीतों का आनंद लेंगे, और सुकून से बैठकर हम खामोश भी रहेंगे और गीतों का मजा भी उठाएंगे।

जी हाँ दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि ये खामोशी भी गुनगुनाने लगती है? जी हाँ, वो भी बोलने लगती है। आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है आपके जहन में खामोशी का नाम सुनते ही? एक खामोशी वो भी होती है जो दो पुराने दोस्तों के बीच में होती है, जहां कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, भाई हम इशारों से ही समझ जाते हैं सारी बातें। एक खामोशी वो होती है जब दो प्रेमी आपस में बात करते हैं, वही इशारों की बातें। और एक खामोशी वो भी होती है हमें जो किसी पहाड़ को देखकर फील होती है, या फिर किसी समुद्र के किनारे खड़े होकर फील होती है, जब हम खुद से मिलते हैं। एक वो भी खामोशी होती है, और कहा जाए कि वो भी एक बातचीत भी हो सकती है। तो खामोशी की जो है ना, वो परिभाषा बहुत अलग अलग है। और किसी ने ठीक ही लिखा है कि एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं।

जी हाँ दोस्तों, रूप कुमार राठौर की आवाज में अभी आपने की सुना और खामोशी की बात चल रही है। खामोशी का मतलब ये नहीं कि आप और मैं चुप हो जाए, जी नहीं, खामोशी जो है ना वो कहीं ना कहीं आपस में बात जरूर करती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब हम एकदम से शांत बैठ जाते हैं तो हमें अपने दिल की धड़कन सुनाई देती है। हमें धड़कन सुनाई देने के साथ साथ हमारी सांसों की आवाज हमारे कानों तक जाती है। यही खामोशी की सबसे बड़ी ताकत है कि कोई भी शोर नहीं होता, लेकिन फिर भी आपके अंदर से एक आवाज जो आपके कानों तक जाती है वो आती है। चुप हम रहे। आज की डिजिटल दुनिया में जहां हमारे हाथ में हर वक्त फोन रहता है, हर वक्त हमारे दिमाग में सैकड़ों विचार घूमते रहते हैं, लेकिन अपने लिए एक साइलेंट टाइम आप जरूर निकालिए। आंखें बंद कीजिए और कोई आपके आसपास स्क्रीन ना हो, कोई भी आपके हाथ में फोन गैजेट ना हो, खामोशी को सुनिए, देखिए

जी हाँ, बेखुदी को बेखुदी से बात करने दो। आई एम करीम और चित्रा सिंह की आवाज में अभी आपने गीत को सुना, बेहद बेहद खूबसूरत। और इस गीत को लिखा निदा फाजली ने, संगीत दिया एम एम करीम ने ही। और फिल्म की बात करें तो इस रात की सुबह नहीं आएगी, जी हाँ ये रही फिल्म। और खामोशी सिर्फ शब्दों की कमी नहीं होती, बल्कि ये एहसास की है गहराइयों का। जब अगली बार आपको किसी बात का जवाब न सूझे ना, जब आपको कोई बात समझ में ना आए, तो मुस्कुराइए और खामोश हो जाइए। कभी कभी बहुत अच्छा सा जवाब मिल जाता है।

जी हाँ श्रोताओ, अभी आप गीत सुन रहे हैं फिल्म बंटी और बबली से, और कार्यक्रम है आपका अपना गीत मालिका। आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना। हम बात कर रहे थे खामोशियों की। तो दोस्तों, खामोशी जो है ना, अगर कहें कि हमारी बेबसी नहीं होती है, कभी कभी हम चुप हो जाते हैं तो हम अगला इंसान ही सोचता है कि शायद कोई बेबसी है या लाचारी है तो ये चुप है। लेकिन कभी कभी एक गहरे एहसासों, सुकून और आत्मसम्मान का प्रतीक भी होती है खामोशी। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझिए इंसान, गुमनाम समंदर के में ही अक्सर तूफान लाया करते हैं। तो अगली बार अगर आपने आसपास अगर किसी व्यक्ति को आप खामोश देखें तो भाई समझ जाइए, वो समुद्र है, ये वो समंदर है जो शांत है अभी, और तूफान कभी भी आ सकता है।

जी हाँ दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम गीत मालिका से, और कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना। समय बता दें आपको, रात्रि के 8:33 हो चुके हैं, और भाई खामोशी के साथ कुछ शब्दों के साथ हम गीतों का आनंद ले रहे हैं, और उम्मीद करती हूँ कि कार्यक्रम को आप पसंद भी कर रहे होंगे। अपनी प्रतिक्रियाएं भेजना ना भूलें। हम दूसरों की बात तो जनाब सुन लेते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं कि हमारी बात सुने, लेकिन खुद के अंदर की आवाज सुनने के लिए हम कभी भी तैयार नहीं रहते। अगर कम शब्दों में कहूं कि हमें डर लगता है अपनी अंदरूनी आवाज से, लेकिन खामोशी वो आईना होता है जिसमें इंसान को अपना असली चेहरा दिखाई देता है। आप दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट निकालिए, शांत बैठिए, और दिमाग के जो शोर है दिमाग के आसपास, उसे बिल्कुल भूल जाइए, और देखिए अपने आप से बात करिए, उस खामोशी को महसूस कीजिए।

और खामोशी हमें सिखाती है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहकर मुस्कुरा देना ही एक खूबसूरत जवाब होता है।

जी हाँ दोस्तों, अलका याग्निक की आवाज में अभी आपने गीत सुना कि भाई हमने खामोशी से आपको अपने दिल में बसाया। कितनी खूबसूरत पंक्तियां। और समय जो है वो इशारा कर रहा है कि भाई जाने का वक्त हो गया है कार्यक्रम से, लेकिन आपसे मिलूंगी 11:10 पर लेकर कार्यक्रम फिल्म संगीत का। और घड़ी की सुइयां फिलहाल मुझे ये इशारा कर रही है कि भाई चेतना, अब आपको जाना होगा इस कार्यक्रम से। लेकिन विदा लेने से पहले आपसे यही कहूंगी कि रात को सोने से पहले कम 2 मिनट जो है ना वो कमरे की

श्रोता अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय रात्रि के 8:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित एससीओ युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और एससीओ युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: सम्मेलन 13 प्रमुख निर्णयों के साथ संपन्न हुआ। ये निर्णय आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सहयोग से संबंधित हैं। इसके अलावा 4 समझौता ज्ञापनों और 20 से अधिक निर्णयों को भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा प्रगति और समृद्धि के लिए मजबूत और भरोसेमंद कनेक्टिविटी की पहल महत्वपूर्ण है। भारत ऐसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़े, व्यापार को बढ़ावा दें और विकास के नए अवसर खोलें। हालांकि ऐसी पहलों में देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। श्री चौहान ने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। एक रिपोर्ट।
4: योजना के 6 लक्ष्यों के आधार पर 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 में 22.54 से बढ़कर जुलाई 2026 में 38.85 हो गया, जो 16.31 अंकों के सुधार को दर्शाता है। यह योजना 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ राज्य की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मिलाकर लागू की जा रही है। वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की निगरानी के लिए 36 योजना में कुल 121 संकेतक निर्धारित किए गए हैं। समीक्षा में निगरानी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। शिवांग मिश्रा के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपूर्ति और बढ़ने से दाम पूरी तरह स्थिर हो जाएंगे और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकी भी रद्द कर दी और राज्य को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
5: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। सीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए रहा। इसमें 1,29,000 करोड़ रुपए का योगदान रक्षा उपक्रमों का था। उन्होंने इस उपलब्धि को आत्मनिर्भर रक्षा औद्योगिक आधार के निर्माण की दिशा में देश की महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक बताया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT 6 दशकों से अधिक समय से विशेष रूप से अपनी पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में परिषद के 66वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा में सुधारों के लिए एक ढांचा प्रदान किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को नुकसान और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट और साझा प्रयासों की जरूरत है। नई दिल्ली में भारत जर्मनी पर्यावरण मंच में उन्होंने कहा कि भारत के विकास के अनुभव ने यह साबित किया है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों एक साथ चल सकते हैं।
6: क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर।
7: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और अपने लिए

0: जलवायु अनुकूल भविष्य बनाने के लिए आपसी सहयोग बेहद जरूरी है। भारत इस दिशा में जर्मनी के साथ अपनी साझेदारी को विशेष महत्व देता है। दोनों देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग कई वर्षों से जारी है और समय के साथ पर्यावरणीय शासन के नए क्षेत्रों तक इसका विस्तार हुआ है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में मध्यम जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। वस्तु और सेवा कर के संग्रह पिछले महीने बढ़कर 1,99,853 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये अगस्त 2025 के 1,74,116 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 15% अधिक है। केंद्र सरकार ने ईंधन निर्यात करों की अपनी ताजा पाक्षिक समीक्षा के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार पेट्रोल पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 1.5 रूपये प्रति लीटर और डीजल पर बढ़ाकर 25 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क घटाकर 19 रूपये प्रति लीटर किया गया है। अधिसूचित ये संशोधित दरें आज से लागू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के दमदना में अर्जुन वाहिनी नामक एक विशेष आपदा मोचन दस्ते का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तर्ज पर गठित इस बल का उद्देश्य राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को और अधिक मजबूत बनाना है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों के समन्वय से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल 30 सितंबर कर दी है। अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार और शासन में एमए की डिग्री दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में मौका मिला है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 और तीसरा 17 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। संगठन का शिखर सम्मेलन आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग। This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9.

अब ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 9:17 हो चुके हैं और अब उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है। आप हमारी नशरियात समाप्त कर रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के जरिए और DD फ्रेश पर। पेश है आज की इस तीसरी मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। अब से कुछ ही देर में 9:20 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गजलों के प्रोग्राम एक फनकार के तहत हरिहरन की आवाज में गैर फिल्मी गजलें। रात 9:45 पर खबरें नशर होंगी और 9:55 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम हेल्थ टिप्स के तहत यूरिनरी इन्फेक्शन के हवाले से कुछ जरूरी बातें डॉक्टर अंजुम आरा से। रात 10:00 प्रोग्राम मार्केट मंत्रा नशर होगा और 10:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी नकों का प्रोग्राम तामील इरशाद। इसी प्रोग्राम के दौरान रात 11:00 खबरें बरसगीर से नशर होंगी और 11:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम सुर्खियों में। 11:45 पर नशर होगा प्रोग्राम बज़्म मौसिकी, जिसके तहत आज आप सुनेंगे ललित जी राव की आवाज में राग कोमल ऋषभ असावरी में ख्याल। रात 12:00 आलमी खबरें नशर होंगी और 12:10 पर आप सुनेंगे इंस्ट्रूमेंटल मौसिकी के प्रोग्राम के तहत उस्ताद नासिर अहमद किया मंडोलिन पर बजाई हुई राग हरिकोन। 12:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी नखों का प्रोग्राम आखिर शब और 12:50 पर खबरें नशर होंगी। रात 1:00 उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पसीर होंगी।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है गैर फिल्मी हौसलों का प्रोग्राम एक फनकार। आइए सुनते हैं हरिहरन की आवाज में मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब, अकबर हैदराबादी, निजाम सारा अख्तर और मुमताज राशिद की लिखी हुई गजलें।

0: ये पेशाब की नाली या रास्ता जिसे कहते हैं, ये क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे कहते हैं,
1: यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बेसिकली इन्फेक्शन है पेशाब की थैली का, और कई बार ये इन्फेक्शन पेशाब की थैली से गुर्दे तक भी पहुंच जाता है। और ये बीमारी औरतों में काफी कॉमन होती है, क्योंकि जो हमारा पेशाब की थैली से जो बाहर तक का रास्ता होता है यूरेथ्रा, वो फीमेल्स औरतों की बड़ी छोटी होती है, 3.5 सेंटीमीटर की होती है, इसीलिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो हैं वो ज्यादा होते हैं
0: क्योंकि
1: हाँ ख्वातीन।
0: अच्छा, तो क्या ये कई किस्म के होते हैं इन्फेक्शन या एक ही किस्म का इन्फेक्शन होता है?
1: ये इन्फेक्शन डिपेंड करता है कि कौन सा बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, और कई कई बार फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये बैक्टीरिया कॉज कर रहा है या फंगल कॉज कर रहा है, उस हिसाब से इन्फेक्शन हम ट्रीट करते हैं।
0: तो डायग्नोस करना पड़ता है
1: जी, इसके लिए हम पेशाब के टेस्ट कराते हैं, जिसे हम यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी और यूरिन कल्चर कहते हैं।
0: एक सवाल और भी आता है, सिर्फ इसकी वजूहत क्या होती है कि इन्फेक्शन हो गया के लिए कुछ समझ में आता है कि बाहर का हिस्सा है उस पर तो बैक्टीरिया या जरासीम असरअंदाज होते हैं, लेकिन अंदर के हिस्से पर कैसे असरअंदाज होते हैं?
1: ये जैसे मैंने आपको बताया कि ख्वातीन में जो रास्ता होता है थोड़ा छोटा होता है, तो इन्फेक्शन को बाहर से अंदर जाना थोड़ा आसान होता है, और ये ज्यादातर उन ख्वातीन में देखा जाता है जो कि ज्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और हाइजीन मेंटेन नहीं करते।
0: अच्छा।
1: या फिर जिनको डायबिटीज हो, क्योंकि डायबिटीज में वैसे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो अगर डायबिटीज है या हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं या पानी कम पीते हैं जो लोग, उनमें ये ज्यादा होता है।
0: यानी पानी का भी हमें ख्याल रखना चाहिए।
1: जी, पानी की कमी का हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जितना पानी हम पीते हैं हमें उतना ही यूरिन प्रोड्यूस करते हैं और उतना ही इन्फेक्शन हम अपनी बॉडी से निकालते हैं।
0: अच्छा, जैसे भी आप जिक्र करें कि इन्फेक्शन ख्वातीन में ज्यादा होता है, तो क्या मर्दों के इन्फेक्शन और खातिन के इन्फेक्शन में कुछ फर्क है?
1: काफी हद तक सिमिलर होते हैं, और जो बैक्टीरिया और फंगल इनको कॉज करते हैं वो भी काफी हद तक सिमिलर ही होते हैं, लेकिन क्योंकि इन्फेक्शन को अंदर जाने के लिए जो रास्ता है वो छोटा है खातिन में, तो इसलिए जल्दी हो जाता है उनको। सेम जैसे कि न्यूली वेड कपल होते हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई है, उनमें हस्बैंड और वाइफ जब सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो फीमेल को जल्दी इन्फेक्शन होता है नस्बत मेल के।
0: इसका इलाज जो है सिर्फ सर्जरी है या?
1: इसका इलाज सर्जरी बिल्कुल नहीं है, ये दवाइयों से ठीक हो जाता है, और कई बार तो अगर आप पानी ज्यादा पीते हैं तो उससे भी काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं।
0: लेकिन एक सवाल मेरे जहन में भी आ रहा है कि जो लोग हमारे नई जैसे आपने कहा नई शादीशुदा जोड़े हैं, वो जब अपने ताल्लुकात बनाते हैं तो क्या ये कोई एहतियात लेनी जरूरी है उस टाइम?
1: एहतियात ये ले सकते हैं कि आप जब भी ताल्लुकात बना रहे हैं उसके बाद आप नीचे का हिस्सा जो है वो पानी से अच्छी तरीके से साफ कर लें, हाँ, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। और अगर आपको लग रहा है कि पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब करते हुए दर्द हो रहा है, तो पहले तो आप खूब पानी पिए, या फिर आप नारियल पानी ले सकते हैं, क्रैनबेरी जूस ले सकते हैं। इन सब चीजों से क्या होता है कि यूरिन ज्यादा प्रोड्यूस होती है तो इन्फेक्शन क्लियर आउट होता है। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो आप डॉक्टर से भी जाके मिल सकते हैं, और अपना बेसिक पेशाब का टेस्ट होता है यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, वो करा लें। और ये टेस्ट बहुत ही आसान है और बहुत आसानी से सारे अस्पतालों में हो जाता है, लैब्स, प्राइवेट लैब, सरकारी लैब सब जगह अवेलेबल है। सिर्फ एक ही छोटा सा टेस्ट आपको बता सकता है कि पेशाब में इन्फेक्शन है, और अगर पेशाब में इन्फेक्शन है तो आप कल्चर करा सकते हैं, और कल्चर के मुताबिक अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। तो अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, अपनी दवाइयां रेगुलर ले रहे हैं, तो आप इस इन्फेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें जो जंक फूड होता है उसमें ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा होती है, और ऑक्सलेट क्या होता है, जब कम पानी पीते हैं तो ये ऑक्सलेट हमारे पेशाब की थैली में, किडनी में बैठ जाता है, जम जाता है और स्टोन बनाता है, और जहां पे भी कोई फॉरेन बॉडी होती है जैसे कि स्टोन, तो वो किडनी स्टोन बनाती है, और स्टोन की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है।
0: तो मेन चीज क्या है, स्टोन को रोकना है, इन्फेक्शन को रोकना?
1: पहले मैं कहूंगी कि पहले स्टोन बनना रोकें, अपना पानी का जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है हमारे दिन का जो कि 8 ग्लास मिनिमम है वो लें। अगर आप पानी ठीक क्वांटिटी में पीते हैं तो आपको वैसे ही स्टोन नहीं बनेंगे, और आपकी पेशाब की थैली, रास्ता सब बिल्कुल एकदम साफ रहे। तो अगर हम अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान लगाएं और अपनी अच्छी आदतों को बढ़ाएं और खराब आदतों को कम करें, और थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी अपनी डे टू डे रूटीन में रखें, और बहुत जरूरी पानी 8 ग्लास मिनिमम पिए। तो अगर हम इन सब चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दें तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे कि यूटीआई भी एक जो है उनमें से, उनको अवॉइड कर सकते हैं।
2: समय भी आप सुन रहे थे प्रोग्राम हेल्थ टिप्स, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आप हमारे साथ संवाद कर रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के जरिए और DD फ्रीडिश पर। पेश है प्रोग्राम मार्केट मंत्रा।
3: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aap sabka swagat hai. स्टूडियो में आज श्रोताओं चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे समक्ष विराजमान हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी शर्मा. डॉक्टर शर्मा कार्यक्रम में आपका
0: वार्म वेलकम.
2: शुक्रिया. थैंक यू.
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले हेडलाइंस.
0: इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स एंड्स फ्लैट. निफ्टी फॉल्स बाय 25 पॉइंट्स. ग्रॉस जीएसटी कलेक्शंस इंक्रीज नियरली 15% टू ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रूपीज इन ऑगस्ट दिस ईयर. ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में आज सेंसेक्स सपाट बंद हुआ. वहीं निफ्टी 25 अंक नीचे आया. कुल जीएसटी संग्रह अगस्त माह में लगभग 15% बढ़कर करीब 2 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया. और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़े.

0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: आइए श्रोताओं अब जान लेते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे शेयर बाजार ने कैसा व्यवहार किया। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 13 अंक फिसलकर 76,944 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 25 अंक लुढ़ककर 24,056 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 लगभग 1.5%, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 0.2% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले भू राजनीतिक तनाव के बीच बाजार गिरावट के साथ खुले, लेकिन शुरुआती नुकसान से उबरकर सकारात्मक दायरे में आ गए। हालांकि सत्र के दूसरे भाग में बाजार ने बढ़त गंवा दी, साथ ही निफ्टी वायदा और विकल्प की साप्ताहिक समाप्ति ने उतार चढ़ाव को और बढ़ा दिया।
0: Benchmark domestic equity indices ended marginally lower today. The Sensex declined 13 points to close at 76,944. The Nifty dropped 25 points to settle at 24,056. In the broader market, on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index fell 1.4%, while the Small-Cap 100 Index dipped over 0.2%. Earlier, the markets opened lower amid ongoing geopolitical tensions but recovered from their initial losses and turned positive. However, they failed to sustain their upward momentum during the second half of the session, with the weekly expiry of Nifty futures and options contracts adding to the volatility.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे अधिक नुकसान में रहने वाली कंपनियों के शेयरों में मारुति 4.2%, वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिगो और बजाज फिनसर्व में लगभग 2.5% की गिरावट दर्ज की गई। इसके विपरीत आईटीसी 4%, एचसीएल टेक 3.2% और इंफोसिस में 2.5% से अधिक का उछाल आया।
0: The sectoral indices on the BSE 21 out of 28 sectors edged downward. Among the top underperformers

0: Farmers, auto declined 1.4%, consumer durables over 1.2%, and telecommunications as well as realty dipped over 1%. In contrast, information technology rose over 1.2%, focused IT gained 1.2%, and energy added over 0.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,563 companies declined, 1,760 advanced, and 236 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 22 पैसे मजबूत होकर 94.95 रूपये पर बंद हुआ। डॉक्टर शर्मा, आज की अगर चाल देखें बाजार की, तो इसे आप कैसे देखते हैं? एकदम सीधे सवाल से कार्यक्रम शुरुआत करते हैं।
2: देखिये, बाजार में जो रुख है, खास करके जो एक कंसोलिडेशन का रुख है
1: जी,
2: जो इन्वेस्टर है वो कोई मेजर मूव नहीं लेना चाहता, यहीं पे कंसोलिडेट करना चाहता है, या फिर जहां पे प्रॉफिट आ रहा है उसको थोड़ा बुक करके, या फिर किसी और स्टॉक में जहां पे कुछ मुनाफे के चांस बन सकते हैं तो उसमें खरीदारी करना चाहता है। तो एक कोई मूव, जैसे एक मेजर इन्वेस्टमेंट मूव
1: जी,
2: ऐसा कोई बाजार में रुख नहीं है, क्योंकि अनसर्टेनिटीज जो है ग्लोबल लेवल की, एक तो क्रूड प्राइसेस जो एक मेजर अनसर्टेनिटी है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, अगर वापस एक यूएस और ईरान में एस्केलेशन आती है तो प्राइसेस जंप ले सकते हैं, जिसका सीधा असर जो है एनर्जी प्राइसेस के ऊपर जाएगा, इन्फ्लेशन के ऊपर जाएगा। और फिर दूसरा जो बॉन्ड यील्ड, जो ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स में एक राइज है, जिसकी वजह से कंपैरेटिवली जो इन्वेस्टमेंट शिफ्ट होती है, तो वो एक कारण है। और तीसरा जो एक अनसर्टेनिटी जो ग्लोबल लेवल पे, जो चाहे आप ग्रोथ को लेके कहें या दूसरे फैक्टर जो है, जो वॉर रिलेटेड हेडविंड्स है, और जो अभी रशिया और यूक्रेन में भी एस्केलेशन हुई है कुछ युद्ध में, तो ये सभी फैक्टर जो है मार्केट के सेंटिमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज जो देखा जाए, अगस्त के महीने में काफी तेज जो है इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, एफआईआईस का काफी फ्लो आया है, तो कुल मिला के जो इंडिया की जो स्थिति है मार्केट की, उसको मैं एक बैलेंस्ड इन्वेस्टर सेंटिमेंट कहूंगा कि इन्वेस्टर नेगेटिव भी नहीं है और वो कोई मेजर मूव भी आगे नहीं लेना चाहता बिकॉज ऑफ द हेडविंड्स।
1: लेकिन हमने पिछले तीन हफ्ते में लगातार देखा कि मार्केट जो है एक तरीके से स्लाइड डाउन ही करता हमें नजर आ रहा है।
2: देखिए, उसमें क्या है, पहले इसी तरीके से मार्केट ने थोड़े बढ़त भी ली थी, तो कुल मिला के जो रेंज है मार्केट की, जैसे मैंने पहले भी अपने इसी कार्यक्रम में बताया था कि अभी हम पिछले एक साल से लगभग देख रहे हैं कि जो मार्केट की रेंज है वो लगभग कोई 23,500 से लेके 25,500 तक, 2,000 के पॉइंट, और बीच में जो मेन जो 1,000 का जो मूवमेंट है जो लगभग कोई 24,000 के बीच में मार्केट जो ऊपर जाती है 24,500 के आसपास, तो एक मुनाफा वसूली आती है, क्योंकि मार्केट को कोई और आगे एक ऐसी ब्रेक थ्रू नहीं मिलती बिकॉज ऑफ द ग्लोबल हेडविंड्स। और जब मार्केट डिसेलरेट करती है तो उसको सपोर्ट मिल जाती है बिकॉज ऑफ अवर स्ट्रांग फंडामेंटल्स। तो ये एक ऐसा रुख बना हुआ है, जब ऊपर जाती है तो ग्लोबल फैक्टर्स सामने आते हैं, ग्लोबल कोई जो रिस्क है, जो अनसर्टेनिटीज है, वो मार्केट के सेंटिमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, और मार्केट नीचे कोई डीप करेक्शन में भी नहीं जाना चाहती बिकॉज वी आर फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रांग। हमारा चाहे वो कोई भी नंबर हो, हमने जीडीपी नंबर्स, जैसे हम पहले कई हर एक बार हम बात करते हैं कि हमारे जीडीपी इज वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और दूसरे जो फंडामेंटल्स हैं बहुत स्ट्रांग है, और एक्सटर्नल सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, तो मार्केट उनके साथ भी ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करके मार्केट डिसलिरेट हो या डीप करेक्शन में जाए, ऐसा भी नहीं है।
0: डॉक्टर शर्मा, यू मेंशन द जीडीपी ग्रोथ, वी हैड अ स्ट्रांग जीडीपी ग्रोथ नंबर 7.8%, इवन दैट डिड नॉट ट्रांसलेट इनटू अ क्लियर रैली टुडे। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हाउ मार्केट्स आर प्राइसिंग ग्रोथ वर्सेस रिस्क टुडे?
2: Yes, Mr. Lake, there is no direct correlation between the market rise and the GDP growth, because both are the different segments. Markets are on the basis of sentiments, and GDP is on the basis of our strong fundamentals. But in the long run, both are very correlated, because when GDP grows significantly, like during the last 4-5 years, we observed that GDP is growing more than 7% on an average, 7.5% on an average, and the markets are also in the same move. Markets are increasing significantly year after year. But in the shorter period, on the day-to-day basis, or weekly movements, or the monthly movements, these are not observing. Because, as I mentioned to Prachi, that when the markets go up, then they observe the global fundamentals, global uncertainties. When the markets go down, there is some correction because of those negative fundamentals from the global side. Then the markets are supported by the domestic fundamentals. Markets don't want to
1: go beyond a line.
2: Markets always remain at a level that this is the level despite the global headwinds. Markets should remain here.
0: Okay, point taken. How important are the FII selling pressure and global fund flows in explaining the recent 3-plus week underperformance of the Sensex?
2: I don't see FIIs are that much significant now in the recent years, because our markets are supported by the retail segment and our DIIs majorly. But the FIIs support the rally. But their contribution or their support or their dependency on them is not that much high, because when the markets go up, markets make new highs, or markets are in the strong bull run, then the FIIs also come to invest in India. So FIIs always look at the opportunities, because they have the hot money. They invest, then they book profit and they go away. Again they come and they again invest when the market opportunity is there. When there is a great correction, then the FIIs comes to invest in India, because they know about India's story. They know about India's long-term story, that India is a promising growth story. But when the markets rise, they observe the global uncertainties, then they book profit and
0: So how do you view the IT's relative outperformance today, and also that of the banking, which is heavily represented in the index? How do rising oil and potential rate path change feed into credit growth, margins and asset quality over the next 2 to 3 quarters?
2: Yes, Mr. Lake, I would say the sectoral movements are always there. When there is a bull run or the bear run, or the markets are stable, the sectors, sometimes the profit booking happens in one sector, and the people shift from one to another sector to observe the opportunities existing in that particular sector. But the growth, like the bank credit or the other segments, are very strong. Like recently, bank credit is growing in the double digits, and IIP numbers are also very strong at 6.7% for the month of July. Exports are very strong at 13% during the last 5 months, starting from April to July. 4 months. So this double digit trajectory is indicating a strong growth momentum, or the economic momentum in the coming quarters also. So this is the, I believe, fundamental scenario of the Indian economy.
1: Dr. Sharma, jaisa abhi Rajesh ji ne bhi bataya ki auto sector ko lekar ke, usi tarike se banking sector ko lekar ke, jo aaj humne thoda sa usme jo giravat dekhi hai, to iska koi vishesh karan hai, ya aap jaisa bata rahe hain ki bas ek rotation hai, ये ऐसा, या कोई फ्यूचर में कुछ ऐसा?
2: कोई ऐसा नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन यूएस में आगे फेड रेट कैसे मूव करता है, वो स्टेबल पॉलिसी स्टांस रखता है या फिर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है, वो डिपेंड करेगा. दैट विल बी सम क्रूशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ अवर मूवमेंट इन द बैंकिंग सेक्टर और द फाइनेंशियल सेक्टर, बिकॉज व्हेन दे इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, देन देयर आर एक्सपेक्टेशन दैट इफ इन्फ्लेशन गोज अप, then that happens in other countries also.
1: तो आप तो आपके लिहाज से अभी अगर हम एक आम निवेशक की तरफ से अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि कौन से ऐसे प्रमुख आपकी नजर में जो हों, जो सेक्टर्स हों, जो क्षेत्र हों जहां पर इन्वेस्ट किया जा सकता है, इन्वेस्ट करना जहां पर समझदारी मानी जाएगी आज की तारीख में, जबकि हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकली चीजें जो हैं काफी अस्थिर हैं, तो ऐसे में आप कौन से सेक्टर्स जो है वो बताना चाहेंगे अपनी तरफ से?
2: देखिए वैसे तो प्राची

0: मैं बताता हूँ, इंडिया इज ए प्रॉमिसिंग स्टोरी, इंडिया में ही इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ी चीज है. और उसमें भी पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो जो मेन ग्रोथ सेंट्रिक सेक्टर्स हैं लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक भारत की जो विकसित भारत की जो बुनियाद है, विकसित भारत को आगे प्रमोट कर रहे हैं. सो ये एक बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर है. इसके अलावा जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग है, सरकार ने कितनी मैन्युफैक्चरिंग रिफॉर्म्स की हैं, पीएलआई स्कीम दी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर रिफॉर्म्स हो रही हैं, और मैन्युफैक्चरिंग हमारा डबल डिजिट में ग्रो भी कर रहा है अभी, और एक्सपोर्ट्स बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विद इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आर ऑल्सो वेरी वेरी प्रॉमिसिंग. देन द बैंकिंग, देन एनर्जी सेक्टर, ऑल दी सेक्टर्स आर आई बिलीव वेरी स्ट्रांग part of our growth trajectory.
1: So if we were to look at the geopolitical scenario, if Iranian barrels are further squeezed out of the market, how large an incremental supply shock are we talking about, and who are the marginal buyers and sellers who would be adjusting?
0: I think jo the major markets, the major emerging economies are in the major limelight. Actually they are the stakeholders in the buying and selling segment, but the monopolistic powers sometimes used and are in their vested interests, that is impacting the whole trajectory of the world natural resources. But I would say there must be a great balance between the such things. Yeah.
2: पिछले महीने वस्तु और सेवा कर के संग्रह में वृद्धि हुई और ये 1,99,853 करोड़ रुपए तक पहुंच गया. ये अगस्त 2025 के 1,74,116 करोड़ रुपए के मुकाबले सालाना आधार पर 14.8% की बढ़ोतरी है. वित्त मंत्रालय के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार कुल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,37,249 करोड़ रुपए रहा, जो एक वर्ष पहले की तुलना में 9.3% अधिक है. आयात से होने वाला जीएसटी संग्रह 29% बढ़कर 62,604 करोड़ रुपए हो गया है, जिससे कुल मासिक संग्रह को बढ़ावा मिला. डॉ शर्मा, आंकड़े तो काफी लुभावने हैं, अच्छे आए हैं. क्या ये इंगित करते हैं कि आने वाला जो तिमाही का जो परिणाम जो हो सकता है वो शायद बेहतरी की तरफ ही हो?
0: जी बिल्कुल प्राची, देखो जीएसटी एक सप्लाई साइड इंडिकेटर है जो बताता है कि जो हमारी सप्लाईज हैं वो इंटैक्ट है, हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज एक्सपेंड हो रही है, अवर प्रोडक्शन प्रोसेसेस आर इंक्रीजिंग. और दूसरा डिमांड साइड फंडामेंटल्स, जैसे हमारा ऑटो सेल्स हो गया या फिर हमारी एफएमसीजी की ग्रोथ होगी, उनसे पता चलता है कि हमारी डिमांड स्ट्रांग है. तो ये इंडिकेटर्स हमें बता रहे हैं कि ये जो महीने हैं जुलाई अगस्त सितंबर, दीज आर ऑल्सो वेरी स्ट्रांग. हमें अगस्त तक का तो पता चल ही रहा है कि जीएसटी नंबर्स आर वेरी स्ट्रांग. अभी एक्सपोर्ट का डेटा आएगा, उसमें भी हम पॉजिटिव हैं कि बहुत अच्छा एक्सपोर्ट नंबर भी आएगा हमारा, जैसे पहले 13% का भी हो चुका है. और इसके अलावा जो आईआईपी नंबर्स हैं, जैसे मैंने बताया कि 6.7% पे आईआईपी जुलाई में ग्रो किया है और अगस्त में भी बेहतर रहने की उम्मीद है. तो ये जो जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टर है, इसके इंडिकेटर भी जो काफी स्ट्रांग है, तो ये इनसे जो हमारा क्वार्टर टू के नंबर्स आएंगे जीडीपी के, वो भी काफी स्ट्रांग हो सकते हैं. यहां से ये हम एक इंडिकेशन है कि वी आर ग्रोइंग सिग्निफिकेंट,
2: पॉजिटिव इंडिकेशन हमें मिल रहा है.
0: हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ बनेगा इस वर्ष के लिए 26-27 के लिए, वो 7% से ऊपर ही रहना चाहिए.
2: जी. आगे बढ़ते हैं श्रोताओं. भारत के विनिर्माण क्षेत्र में अगस्त में बढ़ोतरी दर्ज की गई, वहीं विकास की गति 5 साल के निचले स्तर पर आ गई. आज जारी की गई एचएसबीसी इंडिया विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने जुलाई में यह सूचकांक 53.5 से गिरकर 52.8 हो गया. मंदी के बावजूद सूचकांक विस्तार और संकुचन यानी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को अलग करने वाले महत्वपूर्ण 50 अंकों के स्तर से ऊपर बना रहा. उत्पादन और नए ऑर्डर में वृद्धि 5 साल के निचले स्तर पर आने के कारण विनिर्माण पीएमआई अपने दीर्घकालिक औसत 54.2 से नीचे आ गया.

0: कंपनियों ने पिछले महीने मांग में नरमी की सूचना दी, जिसके परिणाम स्वरूप खरीद स्तर और स्टॉक में भी कम वृद्धि हुई। डॉक्टर शर्मा, जब विस्तार से अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं तो ये समझ पाते हैं कि इसी रिपोर्ट में एक ये भी कारण दिया गया है कि बिक्री में नरम माहौल के कारण अगस्त में रोजगार में मामूली गिरावट देखी गई, जो ढाई साल में पहली बार हुआ है। तो ये किस तरीके से इम्पैक्ट करती है इसको?
1: देखिए, इसमें प्राची ऐसा है कि जो ग्लोबल लेवल पे हम अनसर्टेनिटी देख रहे हैं तो उसमें फ्लक्चुएशन आना स्वाभाविक है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म वी आर वेरी स्ट्रांग, जो शॉर्टर टर्म में ऐसी फ्लक्चुएशन होती है वो सेंटिमेंटल होती है, तो उसी की वजह से फंडामेंटल्स में भी मामूली तौर पे कई बार शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन आती है। लेकिन जैसे आपने बताया, हमारा जो पीएमआई इंडेक्स है अभी भी जो एक बेंचमार्क है जो 50 अंक का, उसे कहीं ज्यादा
0: ऊपर है जी।
1: और मैन्युफैक्चरिंग में ही जैसे आपने बताया कि अभी भी काफी ऊपर है, अगर चाइना तो 50 से नीचे फिसल चुका है। इसी सब मंदी के दौर को देखते हुए जो चाइना का पीएमआई फॉर द मंथ ऑफ अगस्त और मैन्युफैक्चरिंग वो 50 से नीचे है, लेकिन हम काफी ज्यादा ऊपर है 50 से। तो एक ऐसी स्थिति में वी आर डूइंग वेरी गुड कंपैरेटिवली ग्लोबल लेवल पे भी, ये ग्लोबल इंडेक्स है। तो मैं समझता हूं कि एक दो महीने की या कुछ ही देर की बात है, जब तक ये कोई सेटलमेंट होगा, जब वेस्ट एशिया क्राइसिस सेटल होगा, दिस विल अगेन बिकम वेरी रोबस्ट इन द कमिंग मंथ्स।
2: Moving on, India is preparing further customs and banking reforms, including risk-based import screening and a high-level review of the banking sector's role towards building a developed India. In an interview to a news agency on the sidelines of the G20 finance ministers meeting in Nashville, Union Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman said the next phase would build on changes already made in direct and indirect taxation. Sitharaman also stated that the government is working to make the movement of imported goods through Indian ports more seamless. In this regard, the key proposal involves deploying scanners and concentrating checks on high-risk importers. The approach would allow customs authorities to focus their scrutiny on higher-risk imports while facilitating faster clearance in other cases. Sitharaman said confidence in the Indian banking system was reflected in foreign deposits and investments made by Indians living overseas. The indicators showed a positive story about trust in Indian banks and the country's macroeconomic position. Now, that the last line is extremely important, Dr. Sharma, that the story is very positive because it talks about the trust in Indian banks and the country's macroeconomic position. And on top of that, the reforms that the minister is talking about will certainly boost the banking sector.
1: Yes, because reforms are very, very, very crucial for the growth of the economy, and government has undertaken many reforms, plethora of reforms during the last many years, particularly during the COVID and in the post-COVID years. That's why we are becoming more and more resilient. And our numbers, like the GDP numbers of first quarter at 7.8%, are now indicating that reforms are becoming visible. And this is the effect of effective and meaningful reforms undertaken by the government. Yeah.
0: आगे बढ़ते हैं, अन्य खबरों में है। सरकार ने कहा है कि देश में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता है और मौसमी कीमतों के दबाव को नियंत्रित करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के जरिए बफर स्टॉक को चरणबद्ध और लक्षित तरीके से जारी करना शुरू कर दिया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रक भेजे गए हैं, जिससे 19 शहरों में खुदरा बाजार में हस्तक्षेप के प्रयास काफी बढ़ गए हैं। और अब जान लेते हैं एशियाई बाजारों के हाल। एशियाई शेयर बाजार में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी आज 0.2% से अधिक बढ़ा और जापान के निकेई सूचकांक में 0.1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।
2: Global crude oil prices rose today as the resumption of fighting between the US and Iran in West Asia renewed fears of supply disruptions. Brent crude was trading 1.5% up at 91.

0: $1.88 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 2.1% higher at $87.54 per barrel when reports last came in. Dr. Sharma, with Brent, with these figures that I just read out, what is your base case oil price range for Q4 2026 if U.S. pressure on Iran intensifies?
1: Mr. Lake, I think nobody can predict the prices for in such a scenario. But if the escalation comes next time, then I would say prices can go past 100 per barrel in the international market.
0: Okay.
1: Yeah.
2: आगे बढ़ते हैं। सराफा बाजार में सोना 1.7% की गिरावट के साथ 1,53,183 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था और चांदी 2.8% लुढ़ककर 2,30,419 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी। डॉक्टर शर्मा, सोने और चांदी को लेकर के खासी दिलचस्पी होती है भारतीय लोगों की, हम लोगों की, तो इसके जो दाम है उस पर मैं आपसे एक टिप्पणी चाहूंगी।
1: देखिए प्राची, जो सोने के दाम है और या चांदी के दाम है, उन्होंने बहुत बड़ी मूवमेंट दिखाई है इस साल में। अभी हाई किया $5,500 पर ट्रायंस इन इंटरनेशनल मार्केट इन जनवरी फरवरी, और फिर वो 4,000 को भी टच किए। अब देखिए कि कितना बड़ा मूवमेंट $1,500 का एक ऑन्स के मुकाबले में रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इनका जो इंटरनेशनल मार्केट में एवरेज है फॉर द करंट ईयर, that will be at around somewhere between 4,500 to 4,700.
2: Current factors ऐसे क्या मतलब रहे होंगे जिस वजह से, अगर मैं आपसे चाहूं कि आप इस पर भी प्रकाश डालें।
1: देखिए जो फैक्टर्स हैं वो एक तो बाइंग है, स्ट्रांग बाइंग बाय द सेंट्रल बैंक्स, एंड सेकंड जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं, एंड दैट क्रिएट इंटरेस्ट फॉर द सेफ हेवन। लेकिन इसमें फ्लक्चुएशन आती है जब डॉलर मजबूत या कमजोर होता है, क्योंकि डॉलर भी बहुत तेज गति से फ्लक्चुएशन लेता है बिकॉज ऑफ द प्रेस्टिज क्राइसिस। तो गोल्ड के प्राइसेस भी उसी तरीके से मूव करते हैं, लेकिन इसका एवरेज जो रहेगा, मैं ये समझता हूं कि $4,500-4,600 पर ट्रायंस इस साल में।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी कार्यक्रम में आने के लिए।
0: बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, इन इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स एंड फ्लैट, निफ्टी फॉल्स बाय 25 पॉइंट्स, गर्ल्स जीएसटी कलेक्शंस इंक्रीज नियरली 15% टू ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपीज इन ऑगस्ट दिस ईयर, एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेज राइज। दैट्स ऑल वी हैव इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंथ्स। टिल टुमारो, गुड बाय।
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 PM.
5: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मार्केट मंत्रा।

0: अभी आप सुन रहे थे नगमा निगार आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये नगमा सूरज और चंदा फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसकी तर्ज बनाई थी यानी कि इसके मौसिकी से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में सुनेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम शामिल करते हैं कि इस नगमे की जो हमने सुना है अभी वो किसने फरमाइश की थी, कहां से हम तक ये फरमाइश मौसूल हुई थी। ये फरमाइश हम तक पहुंची थी सुना शाह था बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डेनी पवार और मनीष पवार ने, और सुनने के ख्वाहिशमंद थे अरुण कुमार मालवीय दर्द, त्रिभुवन नाथ मालवीय और अनमोल मानवीय श्लोक, और सुनने के ख्वाहिशमंद थे तृप्ति कुमारी थांडी, डॉक्टर प्रियंका थांडी और प्रशांत थांडी। सुना जा था नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर ने चरौदा छत्तीसगढ़ से, और संबल से छोटे अंसारी सुनने के ख्वाहिशमंद थे, और सुना जा था नवे बेगम नाज, बी फातिमा गाजी और मोहम्मद कलीम जख्मी ने रेलवे रोड गंज लुणवारा से, और सुनने के ख्वाहिशमंद थे हनुमानगढ़ राजस्थान से वीरमिदा अलका मिथा, वैशाली कड़नकर, रमेश कड़नकर और धनंजय कड़नकर ने अकोला गांधीबाग से सुनने के ख्वाहिशमंद थे, और सुना जा था प्रवीण सोनी, कलावती सोनी, प्रथम सोनी गुजरात से, और सुनने के ख्वाहिशमंद थे किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी और भानुप्रिया, गजन येले, नवदीप येले और अशोक येले, सिद्धार्थ नगर दरियापुर बावली से सुनने के ख्वाहिशमंद थे। और ये जो फरमाइश है फिल्म प्रेम पुजारी से, ये सुनना चाहा है अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना और सोनू वसीम ने बरकाकाना कोल सिटी से, और सुनने की ख्वाहिशमंद है लखनऊ ऐशबाग से रानी मुकेश गुप्ता, रानी लक्ष्मी नीलम गुप्ता और राजनगर कांति निकेतन, मधुबनी बिहार से कोशेश्वर कांति गुप्ता, रुद्र गुप्ता सुनने के ख्वाहिशमंद है, और गुजरात से सुनना चाहते हैं अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश भावसार, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा सुनने के ख्वाहिशमंद है, और सुनना चाहते हैं रविन्द्र सिंह छावड़ा, दिलजीत कौर छावड़ा, स्वीटी छावड़ा, टेगोर गार्डन नई दिल्ली से, और सुनने चाहते हैं अली मिर्जा सिद्दीकी, मास्टर मुनव्वर हुसैन अंसारी और फैजुल अमीन सिद्दीकी गंजनवारा से, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायाब और लड्डू सुनने के ख्वाहिशमंद है, और सुनना चाहते हैं संजीव डावेराव, लसिका डावेराव, कौस्तुभ डावेराव आकोत से, हेमंत कुमार भाषंकर, प्रिया भाषंकर और उमी भाषंकर महाराष्ट्र से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनना चाहते हैं अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, श्रीगंगानगर से।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

सामीन अभी आप सुन रहे थे नवा प्रेम पुजारी फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, जिसके नगमागार थे नीरज और मौसीकी थी सचिन देव बर्मन की। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश कोहिनूर फिल्म से, जिसको सुना चाह है मोहम्मद अम्मार, मोहम्मद आमिर और अब्दुल हकीम और समद मोहम्मद ने सिंध से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सी आर कुलकर्णी दुर्गई सेलू से। मंडल महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, अथमा सुरलकर सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और सुनना चाहते हैं बीवी अंसारी, निशा अंसारी, डब्ल्यू अंसारी, इंद्र विहार नई दिल्ली से। अनंत भगत, अरुणा भगत, सुलोचना भगत बस्तानपुर से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा छत्तीसगढ़ से सुनना चाहते हैं। संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, संप्रीत पंचोलिया सुनना चाहते हैं खंडवा से और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं अनिल तमरकर, अमर तमरकर, दिलीप वर्मा कटनी से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, निहारिका वंश बत्ता।

अभी आप सुन रहे थे नौशाद की मौसिकी में, ये नगमा कोहिनूर फिल्म से शकील भजायनी के बोल में, जिसकी आवाज थी लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की। सुनना चाहा था ये नगमा, जैसे कि हमने बताया फरमाइश थी दिलीप रामेकर, हर्षदा मेकर और अक्षरा मेकर की, अमरावती महाराष्ट्र से। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश महेंद्र कपूर की आवाज में, जिसको सुनना चाहा है मच्छिंद्र पाटिल, कल्पना पाटिल और ने बुराला नगर चोपड़ा महाराष्ट्र से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। सुनना चाहते हैं सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने और प्रणय प्रसिद्धि अमरावती से। टीडी मल्होत्रा, टी मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से सुनना चाहते हैं। मनमोहन रजावत, मधुर रक्षित, शाहजहापुर मध्य प्रदेश से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। किशन सबकाल, राय सबकाल, विशाल सबकाल, शास्त्री नगर भी शहर से सुनना चाहते हैं। और कंदकोट से सुहेल अहमद निंदवानी, शाह जीरो जेब निंदवानी सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। विजेंद्र विश्वकर्मा, दादाजी विश्वकर्मा और सोनाली विश्वकर्मा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से सुनना चाहते हैं। और हर्षल पाटिल और मंदाकिनी और कुंजा बिहारी महाराष्ट्र से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। राकेश पेट्रो, सानिका पेट्रो और समय पेट्रो सुनना चाहते हैं कलकत्ता से। मोहम्मद यूनुस खत्री, सारिक खत्री और मोहम्मद यूसुफ खत्री छपा कॉलोनी खंडवा से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। और सुनना चाहते हैं इंतजार अंजुम आलमारा, जाफरगंज, जहानाबाद, बिहार से। बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई वर्मा और अतुल कुमार वर्मा रतलाम मध्य प्रदेश से सुनना चाहते हैं। अजीज मतीन और शेख चंद फारूक तेलंगाना से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा और ज्योति छत्तीसगढ़ से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं।

अभी आपने सुना शमसुल हुदा बिहारी का लिखा हुआ ये नगमा फिल्म कश्मीर की कली से, जिसको मौसीकी से सजाया था ओपी नैयर ने। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश शहरियार का लिखा हुआ ये नगमा, जिसको सुनचा अखंडवा से अब्दुल हक डावर और अब्दुल वफा डावर और जिया उल हक डावर ने खंडवा से। सुनना चाहते हैं फारूक शबनम शहनाज नजफगढ़ से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं कृष्णम मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा भिवानी से, और बाबा साहब अडोड़ा रिचर्ड बिचन बाबा अडोड़ा जरूर वरूद से सुनना चाहते हैं। मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान और मोहम्मद इरफान सुनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश से।

0: सारी नबी आप सुन रहे थे ये नगमा अशरफ हौसले की आवाज में उम्र और जान फिल्म से शबके 11 बज चुके हैं। प्रोग्राम तामिल इरशाद अभी जारी है, आइए इसी दौरान सुनते हैं खबरें बड़े सगीर से।
1: ये आकाशवाणी है, बड़े सगीर की खबरों के साथ मैं तौहीद हक्कानी। सबसे पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शंघाई ताउन तंजीम एससीओ के रुकन मालिक से दहशतगर्दी के पूरे इको निज़ाम के खिलाफ मुत्तहिद होने पर जोर दिया है। एससीओ समिट नताइश पर मबनी 13 मुआहिदों के साथ इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें दहशतगर्दी, आबोहवा से मुतालिक इकदामात और डिजिटल इश्तराक शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान का अपना कामयाब दौरा मुकम्मल कर लिया है। ज़राअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने नतायज पर मबनी निगरानी और किसानों को फवायद की बरवक्त फराहमी पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तलबा के एहतजाज के सिलसिले में मुल्क भर में दर्ज एफआईआर को रद्द करने का हुक्म दिया है। सीजेपी ने मरकज की जानिब से यकीन दहानी के बाद

5 सितंबर का अपना मुझे वीजा मार्च वापस ले लिया है। नेपाल में आए अचानक तबाहकुन सैलाब में मरने वालों की तादाद 1000 से तजावज कर गई है और मर्दों के क्रिकेट में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज के लिए 15 रुकनी भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम की 26वीं समिट 13 अहम नतज के साथ इख्तिताम पजीर हुई। इन नतज में इंसदाद दहशतगर्दी, आबो हवा से मुतालिक इकदाम, तवानाई, कुदरती आफात के बंदोबस्त और डिजिटल इश्तराक का अहाता किया गया है। एससीओ के 15 साल मुकम्मल होने के मौके पर इसमें 4 मुफाहमत नामों और 20 से ज्यादा फैसलों को मंजूरी भी दी गई। ये इकदाम दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, मुनजम जराइम और एक दूसरे के ममालिक में दीगर खतरात से निपटने के सिलसिले में इश्तराक को मुसाकम करेंगे। मंशियात की गैर कानूनी तिजारत की रोकथाम के सिलसिले में भी मुख्तलिफ फैसले किए गए हैं। आबोहवा की तब्दीली और तवानाई के सिलसिले में एससीओ ममालिक ने तवानाई की बचत और मौसर इस्तेमाल के सिलसिले में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। समिट में हंगामी सूरतेहाल से मुतासर ममालिक की मदद के लिए एक बयान भी मंजूर किया गया है। डिजिटल शोबे में रुकन ममालिक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इश्तराक को वसत देने पर इत्तेफाक किया। वजारत खारजा ने कहा है कि ये नतज इलाकाई सलामती, तरक्की और कनेक्टिविटी के मामले में अपनी पोजीशन पर पेशरफ के लिए भारत को एक कलीदी प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं। वजारत खारजा ने कहा कि समिट से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आइंदा 25 वर्षों के लिए एक नक्श राह पर जोर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिज जमहूरिया की राजधानी बिश्केक में मुनक़िदा शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत की कौंसिल की 26वीं मीटिंग में शिरकत की। समिट से खिताब करते हुए वजीर आजम ने सभी रुकन ममालिक पर दहशतगर्दी के लिए माली मदद फराहम करने, लोगों को भर्ती करने, शिदत पसंदी और महफूज पनागाहों के पूरे इको निजाम को नेस्तनाबूद करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के मामले में दोहरे मेयार की कोई जगह नहीं है। जनाब मोदी ने दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी लड़ाइयों पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जंग और महाजाराइयां किसी मसले का हल नहीं है और सभी ममालिक को बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल किया जाना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने गुज़िश्ता बरस शंघाई ताउन तंजीम तहजीबी डायलॉग की तजवीज पेश की थी। उन्होंने खुशी का इजहार किया कि इसका पहला इजलास इस साल भारत में होगा। भारत की तरजीहात को एससीओ बिश्केक ऐलामिये में नुमाया तौर पर शामिल किया गया है। ऐलामिये में बातचीत की खातिर एक कुर्रे अर्ज, एक कुंभा, एक मुस्तकबिल के नजरिए का अदा किया गया है। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक ने हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की और कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के सिलसिले में दोहरा मेयार नाकाबिल कबूल है। उन्होंने सरहद पार दहशतगर्दों की नकल हरकत समेत दहशतगर्दी के खिलाफ जामे इकदाम पर भी जोर दिया। रहनुमाओं ने इस साल भारत में होने वाले एससीओ सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम का खैरमकदम किया और एससीओ यंग ऑथर्स कॉन्फ्रेंस की भारत की पहल को सराहा। ऐलामिये में अंग्रेजी को एससीओ की सरकारी और कामकाज की जबान के तौर पर शामिल किए जाने की बात भी कही गई है। वजीर आजम मोदी किर्गिस्तान का अपना कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद आज दोपहर वापस वतन के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि एससीओ समिट के मौके पर मुख्तलिफ मीटिंगें भारत के लिए सूदमंद साबित होंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में जल शक्ति वजारत के महकमा जाती समिट के इख्तिताम इजलास से खिताब करेंगे। इस दौरान महकमा जाती समिट का आगाज आज हुआ है और ये वज़ीर आज़म के महकमा जाती समिट के नजरिए की सीरीज की पहली समिट है, जिसका मकसद टीम इंडिया के जज्बे को मुस्तहकम करना और तआवुन पर मबनी वफाक को मजबूत करना है। ज़राअत और किसानों के बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDDKY की पेशरफ का जायजा लिया है। मीटिंग के दौरान 100 नामजद जिलों में इस स्कीम के निफाज में तेजी लाने, इसे दूसरी स्कीमों के साथ मरबूत करने और किसानों के लिए जिलावार कारकर्दगी को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई है। ज़राअत और किसानों के बहबूद की वजारत ने बताया कि स्कीम के 6 मकासद पर मबनी 100 जिलों की कारकर्दगी का औसत स्कोर अप्रैल 2026 के 22.54 से बढ़कर जुलाई 2026 में 38.85 हो गया है, जो कि 16.31 पॉइंट्स की बेहतरी है। वजारत ने बताया कि ये स्कीम 11 वजारतों और महकमों की
36 مرکزی اسکیموں اور ریاستی اسکیموں اور پرائیویٹ شعبے

अभी अभी आप सुन रहे थे नगमा निगार शकील बदायूनी का लिखा हुआ नगमा सोहनी माहिवाल फिल्म से, जिसकी मौसीकी से सजाया था इसे नौशाद ने। हाजिर इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, जिसको सुना चाहे नौशाद अहमद सिद्दीकी, अमीरुद्दीन सिद्दीकी और जिशान अहमद सिद्दीकी ने। कदवाई नगर से पुलडाउन से जुबैर अली खान, अंजुमन खान और सबीहा सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। और सुना चाहते हैं मंदी चौक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी, और सुनना चाहते हैं गुलाम साहब राही, ताज मोहम्मद अंसारी, मेराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, और इंजीनियर भवन प्रकाश गौतम, शबनम अनवार गंजनवार सुनना चाहते हैं, यवतमाल से अनिल उषा बुरांदे, अनुश्री धनश्री बुरांदे सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। मुकेश कासलेकर राजेश सोनी महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं, और शुभचंद बजाज साहिल बजाज कालका से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। सरोज चौधरी कालकत्ता से सुनना चाहते हैं, और किशोर वानखड़े, उषा वानखेड़े और विशाल वानखड़े महाराष्ट्र से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। बुरहानुद्दीन और यूसुफुद्दीन भोंगीर से सुनना चाहते हैं, और लवप्रीत कौर हरियाणा से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं।

0: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام تعمیلِ ارشاد کے تحت فرمائشی فلمی نغمے، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہے پروگرام سرخیوں میں.
1: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में. इसके अंतर्गत सुनिए, शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल. कार्यक्रम का संचालन कर रही है आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना. किर्गिज गणराज्य यानी कि किर्गिज रिपब्लिक के बिश्केक में कल शुरू हुए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO समिट आज संपन्न हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज SCO समिट के राष्ट्र अध्यक्षों के परिषद की 26वीं बैठक में हिस्सा लिया. इस साल SCO की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है. आज SCO समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात की. इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अम्बेसडर स्कंद रंजन तायल. अम्बेसडर तायल, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है. अम्बेसडर तायल, चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री ने SCO के लिए भारत के विजन के 3 मुख्य

0: कॉम्बो पर जोर दिया है जो कि सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी है। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं?
1: शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में स्थापित हुआ था, इसको 25 वर्ष अब हुए हैं। ये एक बहुत सुदृढ़ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने आया है, इसके 10 सदस्य हैं। और प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में जो कहा वो एक भविष्य के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की क्या दिशा होनी चाहिए और कहाँ अधिक ध्यान देना चाहिए, उस पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। और बहुत ही समराइज करते हुए उन्होंने कहा कि तीन स्तंभ है जो बहुत मुख्य हैं एससीओ के लिए, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर, अपॉर्चुनिटी। सुरक्षा तो सब जानते ही हैं कि देशों की सुरक्षा बाहरिक और आंतरिक बहुत ही आवश्यक है। अगर किसी भी देश को, किसी भी रीजन को विकास की तरफ बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो उस पर उन्होंने विशेष रूप से आतंकवाद का जिक्र किया। कनेक्टिविटी में जो शुरू में जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी तो केवल 6 मेंबर्स थे और उसमें 4 सेंट्रल एशियन जो देश हैं, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, वो लैंडलॉक्ड है, उनका कोई समुद्रिक किनारा नहीं है। तो उनको एक कनेक्शन उनका केवल या तो ऊपर उत्तर दिशा में रशिया के द्वारा है या पूर्व दिशा में चीन के द्वारा है। तो ये चाहते हैं कि भारत की तरफ, दक्षिण एशिया की तरफ भी उनका कुछ रास्ता बने, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए, और एक ईरान की तरफ भी रास्ता बने। तो उसमें भारत ईरान की तरफ से जो रास्ता है उसमें बहुत उनका मदद कर रहा है और उसमें कुछ अभी चैलेंजेस आ रहे हैं। और अपॉर्चुनिटी, तीसरी चीज उन्होंने जो कहा कि जो युवा है उनके लिए और सब नागरिकों के लिए किस तरह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एक्टिविटीज है, जो भी कार्यक्रम है, उनसे उनके अवसर बढ़े, उनका विकास हो और उनको सहूलियत हो, इस दिशा में कार्य करना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने की जरूरत पर भी काफी जोर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि फाइनेंसिंग, रिक्रूटमेंट, रेडिकलाइजेशन और सेफ हैवन्स जैसी चीजों को भी उन्होंने अपने संबोधन में शामिल किया। जब आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री तो इस टेररिज्म के पूरे इकोसिस्टम को डिसमेंटल करने के लिए कई बार अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन जब वैश्विक मंच पर ये बात कही जाती है, ये बयान आता है, तो पूरी दुनिया इसे कैसे देखती है और ये भारत के नजरिए से कितना महत्वपूर्ण है?
1: पूरा क्षेत्र पिछले सालों में आतंकवाद से जूझता रहा है। भारत, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया, चीन में भी कुछ घटनाएं उइगुर एरिया में हुई थी, और अफगानिस्तान में जब से तालिबान का कंट्रोल पूरा हो गया है तो आतंकवाद में इस क्षेत्र में कमी आई है। पर भारत अभी भी आतंकवाद के घेरे में है और हम सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि ये आतंकवाद का जो स्रोत है वो पाकिस्तान है, और इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी इस सभा में मौजूद थे और वहां बैठे हुए थे जब प्रधानमंत्री ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है तो हर व्यक्ति जो आतंकी कार्रवाई करता है, जान माल को नुकसान पहुंचाता है, वो आतंकवादी है। उसको ये ना देखें कि वो कहां से आता है, क्या है। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हर देश, जो भी उनके यहाँ जो इकोसिस्टम है, उसको पूरा खत्म, निस्तबूत करे। और इस पे फिर संकेत उनका पाकिस्तान की तरफ भी था, क्योंकि उन्होंने सेफ हेवेंस की बात की तो पाकिस्तान में अभी भी दुनिया भर के आतंकवादियों को छुपने का जगह मिलती है। सब जानते हैं ओसामा बिन लादेन कहां पकड़ा गया था। रिक्रूटमेंट वहां मदरसों के द्वारा हो रहा है, रेडिकलाइजेशन मदरसों के द्वारा हो रहा है, और फाइनेंशियल नेटवर्क्स भी पाकिस्तान में पकड़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का ये संदेश सब मेंबर देशों के लिए था, पर मुख्यतः ये पाकिस्तान के लिए था।
0: जी अम्बेसडर, जैसी जानकारी आपने अभी हमारे श्रोताओं को दी उसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि एससीओ बिश्केक घोषणा पत्र नार्को आतंकवाद के खिलाफ भारत के प्रयासों का समर्थन करता है और साथ ही साथ संगठित अपराध के खिलाफ सहयोग को भी मजबूत करता है। आगे बढ़ते हुए अम्बेसडर तायर, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि आतंकवाद पे कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए, तो इस स्टेटमेंट को, इस वक्तव्य को आप कैसे देखते हैं?
1: जैसा कि हमने देखा, पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान कहता है कि वो तो खुद आतंकवाद से

0: थे, पर उसके यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी पनप रहे हैं, पल रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया ने देखा ऑपरेशन सिंदूर के समय, जब भारत के मिसाइल्स और रॉकेट्स और का हमला हुआ, तो किस तरह कई उनके आतंकवादियों के गढ़ जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती थी उनको ध्वस्त किया गया। तो हर देश जिसमें उनका इशारा मुख्यतः पाकिस्तान के ऊपर था, वो कोई डबल स्टैंडर्ड ना रखे और आतंकवादी चाहे वो उनके देश पर हमला कर रहे हो या उनके पड़ोसी देशों पर हमला कर रहे हो, जैसे कुछ आतंकवादी अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान से चाह के अफगानिस्तान को भी प्रभावित कर रहे हैं, भारत को तो कर ही रहे हैं। तो सब जगह वो पाकिस्तान अपने यहाँ जितने आतंकवादी हैं उन सबको खिलाफ कार्रवाई करे, और जितने चैनल्स हैं उनको जो उनको सुरक्षा देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, पैसा उनके लिए इकट्ठा करते हैं, उनको भी बंद कर।
1: अम्बासडर तायल, आगे बढ़ते हुए पश्चिम एशिया में मौजूद घटनाक्रम को देखते हुए प्रधानमंत्री के इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ता है और व्यापार को आसान बनाते हैं, जैसे कि कनेक्टिविटी बढ़ाने के ऊपर भी प्रधानमंत्री ने काफी जोर दिया, और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए रास्ते भी तलाशने बहुत जरूरी हैं। तो आखिर आप इस वक्तव्य को कैसे देखते हैं?
0: भारत और मध्य एशिया के बीच में बहुत ही मधुर संबंध है, पर व्यापार नहीं हो पाता है क्योंकि बीच में अफगानिस्तान है और पाकिस्तान हमारे व्यापार को, हमारे ट्रक्स को वहां नहीं जाने देता है। तो भारत ने बहुत प्रयत्न किया कि ईरान के द्वारा एक नया रास्ता खोजा जाए, चाबहार पोर्ट जो ईरान में है उसमें भारत का निवेश है और एक बर्थ भारत कंपनी चलाती है। पर जो वेस्ट एशिया में जो इस समय युद्ध चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, इसमें ईरान के ऊपर सैंक्शंस और बढ़ गई हैं, और ईरान के द्वारा और ईरान के थ्रू कोई भी, जैसे भारत एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात कर रहा था कि बॉम्बे से चाबहार जाए शिप से सामान कंटेनर्स, और उसके बाद रेलवे से, और उसके बाद ट्रक से अफगानिस्तान के थ्रू, पर अब वो सब की संभावना कम दिखती है। तो इसलिए कोई नया सोच दुनिया को और इस रीजन के देशों को सोचना होगा, उसकी तरफ इशारा हमारे प्रधानमंत्री ने किया।
1: अम्बेसडर तायल, प्रधानमंत्री ने हमेशा ही कहा है और भारत ने भी हमेशा ये जोर दिया है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी ही किसी भी वॉर का समाधान निकाल सकते हैं। प्रधानमंत्री का ये कहना है कि बैटल फील्ड पे लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती बल्कि समाधान खोजने होंगे जो कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू होंगे। तो इसको वर्ल्ड कैसे देखता है?
0: को पूरी दुनिया बहुत ध्यान से सुनती है और समझती है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत जो देश है वो गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी का है, हमेशा डायलॉग और डिप्लोमेसी को भारत ने समर्थन किया है, और प्रधानमंत्री मोदी के इतने अच्छे संबंध दूसरे देशों के राजनेताओं से हैं कि वो बात साफ साफ कर सकते हैं और उसको दूसरे लोग बुरा नहीं मानते। जैसे कि 2 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन को उन्होंने बड़ा पब्लिक स्टेटमेंट में कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है, और उसको पूरी दुनिया में बहुत अच्छी तरह उसको लिया गया था और समझा गया था। और उसी तरह कल जो राष्ट्रपति पुतिन के साथ हमारे प्रधानमंत्री की बैठक हुई, उसमें जो पब्लिकली जो बात हुई उसमें उन्होंने कहा कि देखिए ये एंडलेस वॉर हो रही है, अब इसको एंड ऑफ वॉर की तरफ ले जाइए, जो वॉर जो खत्म ही नहीं हो रही है उसको खत्म समाप्ति की तरफ ले जाइए। तो ये एक बहुत अच्छा एक मैसेज है। एक जो अपना निर्णय है वो तो हर देश के राजनेता अपने अनुसार लेते हैं, अपनी समझ के अनुसार लेते हैं, पर दुनिया क्या कह रही है, जो एक अच्छा विचार व्यक्त करने वाले लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, उनकी बातों को बहुत ध्यान से लोग सुनते हैं और जहां तक हो सकता है उस पर अमल करने का भी प्रयत्न करते हैं। तो एक बहुत अच्छा संदेश भारत के प्रधानमंत्री ने, मैं समझता हूं कि सब देशों को दिया, राष्ट्रपति पुतिन को भी दिया, और दुनिया के और जहां जहां भी युद्ध हो रहा है वहां भी ये संदेश बहुत ध्यान से गंभीरता से सुना जाएगा।
1: अम्बेसडर तायल, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सभी देशों को संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना भी अत्यंत ही आवश्यक है। आप इस स्टेटमेंट को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
0: भारत यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है और सभी जो देश हैं सब यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं और उसके चार्टर को मानते हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा जो एक बिंदु है वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का है सब देशों का, और उसको बहुत मजबूती से प्रधानमंत्री ने सामने रखा, और उन्होंने ये कनेक्टिविटी के संदर्भ में भी ये बात कही, क्योंकि जो

0: था जिन्होंने कई देशों में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को अपना लोन दिया है, पर वो ऊंचे ब्याज पर दिया है, जो कि जैसे श्रीलंका है, उनको हम्बनटोटा के लिए वो कर्ज चुकाना बड़ा मुश्किल हो रहा है।
1: अम्बेसडर पायल, आखिर में आपसे बहुत ही संक्षेप में जानना चाहूंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 25 वर्षों में पीपल टू पीपल टाइज को हमारे सहयोग के केंद्र में रखना चाहिए, तो पीपल टू पीपल टाइज कितने महत्वपूर्ण होते हैं?
0: देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को अब 25 वर्ष हो चुके हैं, तो अगले 25 वर्ष प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 25 वर्ष में पीपल टू पीपल संबंधों को सेंटर ऑफ कोऑपरेशन बिल्कुल बीच में रखा जाए, क्योंकि जो भी हम दुनिया में देख रहे हैं इस समय तनाव की स्थिति है, युद्ध की स्थिति है, और कुछ इस तरह का सोच है कि जो विनर टेक्स ऑल, कि जो अमीर है वो और अमीर होता चला जा रहा है, जो गरीब है वो कहीं भी उसका सोच नहीं रहा। तो इस संदर्भ में लोगों में डायरेक्ट संबंध होंगे, डायरेक्ट डायलॉग होगा, कल्चरल एक्सचेंजेस होंगी, फिल्में साथ बनेंगी, टूरिज्म होगा, मेडिकल के लिए आएंगे। इससे लोगों में जो विभिन्न देशों से आते हों, विभिन्न धर्म के हों, पर उनमें भाईचारा बढ़ता है, उनमें एक संवाद बढ़ता है, और पूरे विश्व में एक हार्मनी का, एक शांति का माहौल पैदा होता है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा सोच प्रधानमंत्री ने एससीओ मेंबर्स के सामने रखा, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत कॉन्क्रीट प्रपोजल भी रखा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सिविलाइजेशनल डायलॉग, जो उन्होंने पिछले वर्ष उसकी बात की थी, कि भारत में ये पहला डायलॉग आने वाले महीनों में होगा, कि जिस तरह बार बार प्रधानमंत्री भी कहते हैं और हमारे जो देश के चिंतक वर्ग है वो कहता है कि भारत का दुनिया को विरासत सोच की है, थॉट्स की है, फिलॉसफी की है, दर्शन की है। हमने कभी किसी दूसरे देश को कॉन्क्वेस्ट नहीं किया कि अपने यहां से हमने फौजें भेजी, पर अच्छे विचार भेजे और अच्छा ज्ञान भेजा, जिसको पूरे विश्व ने उसको स्वीकारा और उसको अप्रिशिएट किया। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री अब उस दिशा में कार्य करने का कुछ निर्णय उन्होंने बनाया है।
1: अम्बेसडर पायल, आप आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में आए और आपने इतने विस्तार से हमें जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: अभी आप सुन रहे थे शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
2: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम बज़्म-ए- मौसिकी। आइए इस प्रोग्राम के तहत सुनते हैं ललित जी राव की आवाज में राग कोमल ऋषभ असावरी में ख्याल।

0: स्वामी ने भी आप सुन रहे थे ललित जी राव की आवाज में राग कोमल ऋषभ आसावरी में ख्याल। इसी के साथ प्रोग्राम बजे मौसीकी अब खत्म होता है। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, आइए अब सुनते हैं आलमी खबरें।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप तनवीर से आलमी खबरें सुनिए। पहले खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शंघाई ताउन तंजीम SCO के रुकन ममालिक से दहशतगर्दी के पूरे इको निजाम के खिलाफ मुत्तहिद होने पर जोर दिया है। SCO समिट नतायज पर मबनी 13 मुआहिदों के साथ इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें दहशतगर्दी, आबोहवा से मुतालिक इकदामात और डिजिटल इश्तराक शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान का अपना कामयाब दौरा मुकम्मल कर लिया है। गुजरात के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने नतायज पर मबनी निगरानी और किसानों को फवायद की बरवक्त फराहमी पर जोर दिया। नेपाल में आए अचानक तबाहकुन सैलाब में मरने वालों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई है। कल छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। और मर्दों के क्रिकेट में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज के लिए 15 रुकनी भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल किर्गिस्तान जमहूरिया की राजधानी बिश्केक में मुनक़िदा शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत की कौंसिल की 26वीं मीटिंग में शिरकत की। समिट से खिताब करते हुए वजीर आजम ने सभी रुकन ममालिक पर दहशतगर्दी के लिए माली मदद फराहम करने वालों

उभरती करने, शिद्दत पसंदी और महफूज पनाहगाहों के पूरे इकोनोजाम को नेस्तो नाबूद करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के मामले में दोहरे मेयार की कोई जगह नहीं है। जनाब मोदी ने दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी लड़ाइयों पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जंग और महाज आराइयां किसी मसले का हल नहीं है और सभी मामलात को बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल किया जाना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने गुज़श्ता बरस शंघाई ताउन तंजीम तहजीबी डायलॉग की तजवीज पेश की थी। उन्होंने खुशी का इजहार किया कि इसका पहला इजलास इस साल भारत में होगा। भारत की तरजीहात को एससीओ बिश्केक अलामिये में नुमाया तौर पर शामिल किया गया है। अलामिये में बातचीत की खातिर एक कुर्रे अर्ज, एक कुंबा और एक मुस्तकबिल के नजरिए का इरादा किया गया है। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक ने हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की है और कहा है कि दहशतगर्दी से निमटने के सिलसिले में दोहरा मेयार नाकाबिले कबूल है। उन्होंने सरहद पार दहशतगर्दों की नकलो हरकत समेत दहशतगर्दी के खिलाफ जामे इकदाम पर भी जोर दिया। रहनुमाओं ने इस साल भारत में होने वाले एससीओ सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम का खैर मकदम किया और एससीओ यंग ऑथर्स कॉन्फ्रेंस की भारत की पहल को सराहा। अलामिया में अंग्रेजी को एससीओ की सरकारी और कामकाज की जबान के तौर पर शामिल किए जाने की भी बात कही गई है। वजीर आजम मोदी किर्गिस्तान का अपना कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद वापस वतन के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि एससीओ समिट के मौके पर मुख्तलिफ मीटिंगें भारत के लिए सूदमंद साबित हो गई हैं। बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम की 26वीं समिट 13 अहम नतायज के साथ इख्तिताम पजीर हुई। इन नतायज में इंसदादे दहशतगर्दी, आबोहवा से मुताल्लिक अकदामात, तवानाई, कुदरती आफात के बंदोबस्त और डिजिटल इश्तराक का अहाता किया गया है। एससीओ के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर इसमें 4 मुफाहमत नामों और 20 से ज्यादा फैसलों को मंजूरी भी दी गई। ये इकदाम दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, मुनज्जम जरायम और एक दूसरे के ममालिक में दीगर खतरात से निमटने के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करेंगे। मनशियात की गैर कानूनी तजारत की रोकथाम के सिलसिले में भी मुख्तलिफ फैसले किए गए हैं। आबोहवा की तब्दीली और तवानाई के सिलसिले में एससीओ ममालिक ने तवानाई की बचत और मुअस्सर इस्तेमाल के सिलसिले में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति वजारत की महकमा जाती समिट के अख्तितामी इजलास से खिताब करेंगे। इस दो रोजा महकमा जाती समिट का आगाज कल हुआ है और ये वजीर आजम के महकमा जाती समिट के नजरिए की सीरीज की पहली समिट है, जिसका मकसद टीम इंडिया के जज्बे को मुस्तहकम करना और इमदाद बाहमी वफाकियत को मजबूत करना है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDDKY की पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान 100 नामजद जिलों में इस स्कीम के निफाज में तेजी लाने, इसे दूसरी स्कीमों के साथ मरबूत करने और किसानों के लिए जिलावार कारकर्दगी को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई। ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत ने बताया कि स्कीम के 6 मकासिद पर मबनी 100 जिलों की कारकर्दगी का औसत स्कोर अप्रैल 2026 के 22.54 से बढ़कर जुलाई 2026 में 38.85 हो गया है, जो कि 16.31 प्वाइंट की बेहतरी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नेपाल में आए अचानक तबाहकुन सैलाब में मरने वालों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई है। वहीं हिफाजती फोर्सेस की जानिब से मुल्क के 8 मुतासिरा जिलों से मजीद लाशों की बरामदगी का सिलसिला जारी है। कई जिलों की नदियों में सतह आब के बढ़ने की वजह से सैलाब के ताजा अलर्ट और रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से बचाव कारकुनों को फंसे हुए लोगों को निकालने के दौरान मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कुदरती आफात के खतरे को कम करने से मुताल्लिक कौमी इंतजामी अथॉरिटी NDRRMA ने कहा है कि 4000 के करीब अफराद अब भी लापता हैं, जिनमें 583 गैर मुल्की और 83 हिफाजती अहलकार शामिल हैं। वहीं तकरीबन 12000 लोगों को बचा लिया गया है। इस तबाही के दौरान तिब्बत खित्ते में भी 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 550 अफराद लापता हैं। इस दौरान नेपाल के हुक्काम ने मुल्क के मशरकी वस्ती और मगरबी हिस्से के कई जिलों में सैलाब के खतरे से मुताल्लिक ताजा अलर्ट जारी किया। हुक्काम ने नदियों के करीब

लोगों से चौकसी बरतने और जरूरी एहतियाती इकदाम करने की अपील की है। ईरान के सदर मसूद पेजेशकियान ने कहा है कि अगर अमेरिका जून के जंगबंदी मुआहदे पर लौटता है तो ईरान भी जंगबंदी के लिए तैयार है। किर्गिस्तान में कल शंघाई ताउन तंजीम एससीओ समिट से खिताब करते हुए जनाब पेजेशकियान ने कल कहा कि अगर अमेरिका मुआहदे के वादों की पासदारी करता है तो ईरान भी फौरी तौर पर मुस्बत जवाब देगा। मुआहदे के तहत जंगबंदी और 60 रोजा मुजाकरात पर इत्तेफाक हुआ था, ताहम ये जंगबंदी कायम नहीं रह सकी और जल्द ही टूट गई। इस दौरान खबर है कि आबनाए हॉर्मुज के नजदीक तेल के 2 टैंकरों पर हमला किया गया है। बरतानिया ने बहरी हुकाम ने कहा है कि एक टैंकर पर 3 गोले दागे गए जबकि दूसरे टैंकर पर फौजी हमला किया गया। इस दौरान किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कहीं कहीं शदीद बारिश का इम्कान है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और मगरबी बंगाल में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। मर्दों के क्रिकेट में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जाने वाली T20 बैन अल-अक्वामी मैचों की सीरीज के लिए भारत की 15 रुकनी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। श्रेयस अय्यर भारत की कप्तानी करेंगे जबकि तिलक वर्मा नायब कप्तान होंगे। इस सीरीज के 3 मैच 13, 15 और 17 सितंबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई है, वहीं नितेश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा भी टीम में लौटे हैं। जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट की वजह से जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई एक रोजा बैन अल-अक्वामी मैचों की सीरीज में नहीं खेल पाए थे। इसके अलावा वो श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में भी हिस्सा नहीं ले पाए थे। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शंघाई ताउन तंजीम SCO के रुकन ममालिक से दहशतगर्दी के पूरे इको निजाम के खिलाफ मुतहद होने पर जोर दिया है। SCO समिट नतायज पर मबनी 13 मुआहदों के साथ इख्तिताम पजीर हुई जिसमें दहशतगर्दी, आबो हवा से मुतालिक इकदाम और डिजिटल इश्तराक शामिल हैं। वजीर आजम ने उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान का अपना कामयाब दौरा मुकम्मल कर लिया है। गुजरात के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने PM धन धान्य कृषि योजना की पेशरफ्त का जायजा लिया। नेपाल में आए अचानक तबाहकुन सैलाब में मरने वालों की तादाद 1,000 से तजावुज कर गई है। आज छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। इसके साथ ही आकाशवाणी से आलमी खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है इंस्ट्रूमेंटल मौसीकी का प्रोग्राम। आइए इस प्रोग्राम के तहत सुनते हैं उस्ताद नासिर अहमद का मैंडोलिन पर बजाया हुआ राग हरी कौन।

शामिन, अभी आप सुन रहे थे उस्ताद नासिर अहमद का मंडोलिन पे बजाया हुआ राग हरी कौन। ये इसी के साथ इंस्ट्रूमेंटल मौसिकी का प्रोग्राम अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम आखिर शब। लीजिए इस प्रोग्राम के तहत सुनिए फिल्मी नौ में। हाजिर इस प्रोग्राम की पहली पेशकश सीमा फिल्म से।

0: तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की है और कहा है कि दहशतगर्दी से निपटने के सिलसिले में दोहरा मेयार नाकाबिले कबूल है। उन्होंने सरहद पार दहशतगर्दों की नकल व हरकत समेत दहशतगर्दी के खिलाफ जामे इकदाम पर भी जोर दिया। रहनुमाओं ने इस साल भारत में होने वाले सीओ सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम का खैर मकदम किया और एससीओ यंग ऑथर्स कॉन्फ्रेंस की भारत की पहल को सराहा। अलामिये में अंग्रेजी को एससीओ की सरकारी और कामकाज की जबान के तौर पर शामिल किए जाने की बात भी कही गई है। वजीर आजम मोदी किर्गिस्तान का अपना कामयाब दौरा करने के बाद वापस वतन के लिए रवाना हो चुके हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि एससीओ समिट के मौके पर मुख्तलिफ मीटिंगें भारत के लिए सूदमंद साबित होंगी। बिश्केक में शांघाई ताउन तंजीम की 26वीं समिट 13 अहम नतायज के साथ इख्तिताम पजीर हुई। इन नतायज में इंसदाद दहशतगर्दी, आबोहवा से मुतालिक इकदाम, तवानाई, कुदरती आफत के बंदोबस्त और डिजिटल इश्तराक का अहाता किया गया है। एससीओ के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर इसमें 4 मुफाहमत नामों और 20 से ज्यादा फैसलों को मंजूरी दी गई है। ये इकदाम दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, मुनज्जम जरायम और एक दूसरे के ममालिक में दीगर खतरात से निमटने के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करेंगे। मनशियात की गैरकानूनी तजारत की रोकथाम के सिलसिले में भी मुख्तलिफ फैसले किए गए हैं। आबोहवा की तब्दीली और तवानाई के सिलसिले में एससीओ मालिक ने तवानाई की बचत और मुअस्सर इस्तेमाल के सिलसिले में इश्तराक बढ़ाने से इत्तेफाक किया। वजीर आजम मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति वजारत की महकमा जाती समिट के अख्तितामी इजलास से खिताब करेंगे। इस दो रोजा महकमा जाती समिट का आगाज कल हुआ है और ये वजीर आजम के महकमा जाती समिट के नजरिए की सीरीज की पहली समिट है, जिसका मकसद टीम इंडिया के जज्बे को मुस्तहकम करना और इमदाद बाहमी की वफाकियत को मजबूत करना है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDDKY की पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान 100 नामजद जिलों में इस स्कीम के निफाज में तेजी लाने, इसे दूसरी स्कीमों के साथ मरबूत करने और किसानों के लिए जिलावार कारकर्दगी को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई है। ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत ने बताया कि स्कीम के 6 मकासिद पर मबनी 100 जिलों की कारकर्दगी का औसत स्कोर अप्रैल 2026 के 22.54 से बढ़कर जुलाई 2026 में 38.85 हो गया है, जो कि 16.31 प्वाइंट की बेहतरी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नेपाल में आए अचानक तबाहकुन सैलाब में मरने वालों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई है। वहीं हिफाजती फोर्सेस की जानिब से मुल्क के 8 मुतासिरा जिलों से मजीद लाशों की बरामदगी का सिलसिला जारी है। कई जिलों की नदियों में सतह आब के बढ़ने की वजह से सैलाब के ताजा अलर्ट और रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से बचाव कारकुनों को फंसे हुए लोगों को निकालने के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुदरती आफात के खतरे को कम करने से मुतालिक कौमी इंतजामी अथॉरिटी NDRRMA ने कहा है कि 4000 के करीब अफराद अब भी लापता हैं, जिनमें 583 गैर मुल्की और 83 हिफाजती अहलकार शामिल हैं। वहीं तकरीबन 12000 लोगों को बचा लिया गया है। इस तबाही के दौरान तिब्बत खित्ते में भी 16 लोगों की मौत हुई है, जबकि 550 अफराद लापता हैं। इस दौरान नेपाल के हुक्काम ने कल मुल्क के मशरकी वस्ती और मगरबी हिस्सों के कई जिलों में सैलाब के खतरे से मुतालिक ताजा अलर्ट जारी किया। हुक्काम ने नदियों के करीब आबाद लोगों से चौकसी बरतने और जरूरी एहतियाती इकदाम करने की अपील की है। ईरान के सदर मसूद पेजेशकियान ने कहा है कि अगर अमेरिका जून के जंगबंदी मुआहदे पर लौटता है तो ईरान भी जंगबंदी के लिए तैयार है। किर्गिस्तान में कल शंघाई ताउन तंजीम एससीओ समिट से खिताब करते हुए जनाब पेजेशकियान ने कल कहा कि अगर अमेरिका मुआहदे के वादे की पासदारी करता है तो ईरान भी फौरी तौर पर मुस्बत जवाब देगा। मुआहदे के तहत जंगबंदी और 60 रोजा मुजाकरात पर इत्तेफाक हुआ था, ताहम ये जंगबंदी कायम नहीं रह सकी और जल्द ही टूट गई। इस दौरान खबर है कि आबनाए हॉर्मुज के नजदीक तेल के 2 टैंकरों पर हमला किया गया। बरतानिया के बहरी हुक्काम ने कहा है कि एक टैंकर पर 3 गोले दागे गए, जबकि दूसरे टैंकर पर फौजी हमला किया गया। इस दौरान किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने आज छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कहीं कहीं शदीद बारिश का इम्कान है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और मगरबी बंगाल में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। मर्दों के क्रिकेट में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जाने वाली T20 बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज के लिए भारत की 15 रुकनी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। श्रेयस अय्यर भारत की कप्तानी करेंगे जबकि तिलक वर्मा नायब कप्तान होंगे। इस सीरीज के 3 मैच 13, 15 और 17 सितंबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई है, वहीं नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा भी टीम में लौटे हैं। जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट की वजह से जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज में भी नहीं खेल पाए थे। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शंघाई ताउन तंजीम SCO के रुकन ममालिक से दहशतगर्दी के पूरे इको निजाम के खिलाफ मुत्तहिद होने पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान का अपना कामयाब दौरा मुकम्मल कर लिया है। ज़राअत के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने PM धन धान्य कृषि योजना की पेशरफ्त का जायजा लिया। नेपाल में आए अचानक तबाहकुन सैलाब में मरने वालों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई है। आज छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब का एक बजना चाहता है। उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। सुबह 9:30 पर पहली मजलिस की नशरियात लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। जय हिंद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। कल से शुरू हुआ 2 दिवसीय सम्मेलन प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में पहला सम्मेलन है। इसका उद्देश्य टीम इंडिया की भावना को मजबूत करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। सम्मेलन केन्द्र और राज्यों को संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श और समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर

समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच न करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से दो दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। आज बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। वहीं 3 सितंबर को चुनावी साक्षरता क्लब TCI नेट पर सम्मेलन होगा। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट टी वेवर आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों से सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। वो मुंबई भी जाएंगे जहां वे हीरा बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों सहित विभिन्न हितधारकों से मुलाकात करेंगे। 1995 बैच के राजस्थान कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव सिंह ठाकुर को मणिपुर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। श्री ठाकुर कार्मिक मंत्रिमंडल और योजना विभाग के मुख्य सचिव के साथ साथ मुख्य सतर्कता आयुक्त और नई दिल्ली स्थित मणिपुर भवन के प्रधान आवासीय आयुक्त का कार्यभार भी संभालेंगे। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। देश के ज्यादातर भागों में ऐसी ही स्थिति की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

और दोस्तों अब जिस फिल्म का गाना आप सुनेंगे, ये फिल्म आई थी 1938 में, फिल्म का नाम है अधिकार। इस न्यू थिएटर्स की फिल्म के निर्देशक पीसी बरुआ जी थे और इसको आवाज दी थी इस गाने को पहाड़ी सान्याल जी ने और ये संगीतकार थे तिमिर बरन जी। और इस गाने में शास्त्रीय और रविंद्र संगीत की शैली को बहुत ही सुंदर प्रभाव आप देखने को मिल सकता है, आप इसमें देख सकते हैं। ये गीत सुहागरात के समय एक दुल्हन के मन में छिपे असमंजस और झिझक को बहुत ही प्यारे ढंग से प्रस्तुत करता है। आइए हम मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत पहाड़ी सान्याल जी की आवाज़ में।

और दोस्तों, अब जो गाना अब आपके कानों तक पहुंचेगा वो आया, जो फिल्म थी वो आई थी 1943 के प्रसिद्ध ऐतिहासिक फिल्म, हिंदी फिल्म तानसेन का एक बेहद ही लोकप्रिय और शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत है। इसके गायक हैं और अभिनेता केएल सहगल ने अपनी सुरीली आवाज में इसको गाया था, और संगीतकार खेमचंद्र प्रकाश ने इसे इसका संगीत तैयार किया था। इसके बोल पंडित इंद्र जी ने लिखे थे, पंडित इंद्रचंद्र ने लिखे थे। ये गीत शास्त्रीय संगीत के गारा राग पर आधारित है। ये एक प्रेम गीत है जिसके बोल काहे करे गुमान रे गोरी है। इस फिल्म के इस गाने की मिठास और केएल सहगल की गायकी ने इसे उस दौर में ही नहीं बल्कि आज भी, यानी इतने सालों बाद भी, क्लासिक जो संगीत प्रेमी है उनके बीच में अमर बना दिया है इस गाने को।

दोस्तों, हर गाने की तरह अगली पेशकश भी, अगला गाना भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है। और ये फिल्म आई थी 1943 में, पुरानी फिल्म है ये, उसका नाम है नर्स, और बेहद खूबसूरत और सदाबहार गीत है ये गाना। अपने दौर की मशहूर गायिका अभिनेत्री खुर्शीद बानो ने गाया था। और आगे बात करें तो इस फिल्म के समीक्षकों के अनुसार ये गाना फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के परिचय या शुरुआती दृश्यों के दौरान आता है, जो प्रकृति और कोयल की कूक के जरिए मन के भावों को व्यक्त करता है। और इस फिल्म का निर्देशन चतुर्भुज दोषी ने किया था। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में खुर्शीद बानो के साथ अरुण कुमार आहूजा, जो आज के जमाने के सुपरस्टार गोविंदा जी के पिता थे, वो शामिल थे। ये एक तरफा बलिदान और उलझे हुए प्यार की मर्म स्पर्शी कहानी थी। फिल्म नर्स का ये गाना आपके लिए आकाशवाणी रेनबो की तरफ से।

दोस्तों आकाशवाणी का ये चैनल है AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल, जिस पर आप सुन रहे हैं पुराने सदाबहार गाने, गीत, सुनहरे।

सब जो गाना आपके पास आएगा वो फिल्म है दर्द, और ये फिल्म आई थी 1947 में, यानी जस्ट जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो इतने पुराने ज़माने का सदाबहार गाना, हम थे तुम्हारे तुम थे हमारे, हाय वो ज़माना याद करो, बेहद लोकप्रिय और भावुक गीत है। और इस खूबसूरत दर्द भरे गीत को अपनी सुरीली आवाज़ महान गायिका अभिनेत्री सुरैया जी ने दी थी। इसका संगीत मशहूर संगीतकार नौशाद अली ने जी ने तैयार किया था, और इस दौर में बहुत सफल रहा था ये गीत। इसके बोल प्रसिद्ध शायर शकील बदायूनी जी ने लिखे थे, और एक म्यूजिकल हिट फिल्म थी जिसका निर्देशन ए आर किरदार साहब ने किया था। ये गाना पुराने दिनों की यादों और बिछड़े हुए प्यार के एहसास को बहुत ही खूबसूरती से बयान करता है। और लीजिए, ये प्रस्तुति सिर्फ आकाशवाणी के जरिए ही आप तक हो सकती है। रात के 1:27 हो रहे हैं, और इस वक्त में आप हमारे साथ इस रात का लुत्फ उठा रहे हैं।

आज वो सब कुछ याद कर रहे हैं जो पुराने जमाने में, पुराने दौर में, लोगों के जहन में, लोगों के दिल में, लोगों की कलम से जो जज्बात निकलते थे. और इस वक्त में जो अगला गाना, अगला अंदाज हम लेकर आए हैं वो है मुकेश साहब की गायकी में. फिल्म है अंदाज जो आई थी 1949 में, और इसके गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी साहब और संगीतकार हैं नौशाद साहब. इस फिल्म में जो कलाकार नजर आए थे वो दिलीप कुमार साहब और नरगिस जी और राज कपूर साहब आए थे इस फिल्म में नजर. ये गाना अपनी मधुरता और मुकेश साहब के दर्द भरे लेकिन सुरीले अंदाज के लिए जाना जाता है. इस गाने के बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे जैसे कि हमने आपको पहले बताया. तो अब और इंतजार नहीं करवाते और सुनवाते हैं आपको अंदाज फिल्म का मुकेश साहब की आवाज में ये बेहद बेहद ही प्यारा गाना.

दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है जो हमें पता नहीं होता और वो हो जाता है। जैसे कि अभी आपने ये गाना सुना, बेहद ही खूबसूरत सा गाना। और अब जो नगमा आपके पास आने वाला है वो लता जी की आवाज में है, और इस गाने ने अपने दौर में धूम मचा दी थी। इस गाने के संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन जी थे, और इसके माध्यम से उन्हें और गीतकार हसरत जयपुरी को बहुत ही बड़ी पहचान मिली थी। फिल्म बरसात के सभी गाने बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहे और आज भी पुराने संगीत प्रेमियों की जुबान पर रहते हैं। और हमें पूरा यकीन एतबार है कि अगर आप पुराने गीतों को पसंद करते हैं तो रात के इस वक्त भी हमारे साथ होंगे। रात के 1:34 और 41 सेकेंड हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल।

दोस्तों 1949 में फिल्म आई थी चांदनी रात, उसका प्रसिद्ध गीत चांदनी रात है, अभी हम सुनेंगे सुनाएंगे आपको। उस दौर के जो लिखा था उस दौर के मशहूर संगीतकार नौशाद साहब ने इसको लिखा था, और एक बेहद क्लासिकल, बेहतरीन क्लासिकल गाना है, और इसमें पार्श्व गायिका और अभिनेत्री उमा देवी और तस्दुक हुसैन ने कोरस के साथ गाया था, जिसे आप टुन टुन के नाम से भी जानते हैं। और इस फिल्म को गीतकार थे, इस गीत के गीतकार थे शकील बदायूनी साहब, और लीजिए ये प्रस्तुत है ये बेहद ही खूबसूरत गाना, जो आए ये फिल्म आई थी 1949 में ताजमहल पिक्चर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित ये फिल्म।

दोस्तों उस वक्त की चांदनी रातें भी कितनी खूबसूरत हुआ करती थी ना, आज की रातों की तरह नहीं कि हम सब अपने मोबाइल में ही डूबे रहते हैं। और फिलहाल अगला गाना जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं वो भी बहुत ही प्यारा सा गाना है। 1949 की क्लासिकल जो रहस्यमयी फिल्म थी ये महल, इसका ये खूबसूरत और भावुक गीत मैं वो हंसी हूँ जो लब पे आने से रह गई, हिंदी सिनेमा के बेहतरीन और दर्द भरे नगमों में गिना जाता है। इस गाने को मशहूर पार्श्व गायिका राजकुमारी जी ने अपनी सुरीली और मखमली आवाज में गाया था। फिल्म का संगीत महासंगीतकार खेमचंद प्रकाश ने दिया था और इसके बोल नक्शब जरारवी साहब ने लिखे थे। और इस गाने के बोल बहुत ही संवेदनात्मक और गहरे हैं, जो एक ऐसी अधूरी खुशी, उम्मीद और दर्द को दर्शाते हैं जो कभी पूरी तरह सामने नहीं आ पाए। फिल्म के रहस्यमयी और उदास माहौल के साथ ये गीत पूरी तरह मेल खाता है और इस रात को जहन में रखते हुए ये गाना आपको और भी प्यारा लगने वाला है।

और सादगी के साथ बयान करता है। और उस दौर में कामिनी कौशल जी और देवानंद साहब की तो बात ही कुछ और थी। आइए हम भी सुनते हैं ये बेहद ही खूबसूरत सा गाना। फिल्म है नमूना, आई थी ये फिल्म आई थी 1949।

और दोस्तों, अब जो गाना हम आपको सुनाएंगे वो बहुत ही प्यारा सा गाना है जो हमने लिया है फिल्म नमूना से, और फिल्म आई थी 1949 में। आवाज़ दी है स्वर को किला लता मंगेशकर जी ने, और इस फिल्म के निर्देशक और मुख्य अभिनेता किशोर साहू थे। इसमें कामिनी कौशल और देवानंद ने भी अभिनय किया था। ये गाना प्रेम से मिले धोखे और आंसू और दिल के टूटने की कसक को बहुत ही खूबसूरती

दोस्तों, जब हम पुराने गानों को सुनते हैं तो उनमें कितनी ही सादगी के साथ दिल के जज्बात बयान किए जाते थे, और ऐसी ही एक खूबसूरत गाना, एक ऐसी फिल्म आन आई थी, फिल्म 1952 में, इसका गाना आज मेरे मन में सखी बांसुरी बजाए कोई। सुनहरे दौर के ये अत्यंत मधुर और रोमांटिक गीत है हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर का, और ये इसमें आवाज दी थी लता मंगेशकर जी ने, संगीतकार थे नौशाद जी और गीतकार थे शकील बदायूनी साहब। ये गीत अभिनेत्री इसमें निम्मी जी नजर आई थी और अभिनेता दिलीप कुमार साहब नजर आए थे, कि फिल्म का हिस्सा है जिसमें मुख्य रूप से, और ये गाना खास तौर पर निम्मी जी पर फिल्माया गया था। आइए हम भी सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, आज मेरे मन में सखी बांसुरी बजाए कोई।

और दोस्तों आज के कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति सच में इतनी ज्यादा सुंदर है कि आप इसे सुनकर आप भी कहेंगे कि सच में आज एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुनने को मिला, पुराने जमाने का। साल 1952 में आई क्लासिकल फिल्म दाग का गाना हम दर्द के मारो का भारतीय सिनेमा के सबसे दर्द भरे और यादगार गीतों में से एक है। ये गीत मुख्य रूप से मैं और गम के सहारे जी रहे एक टूटे हुए इंसान की दास्तान को बयां करता है। इस गाने की खास बात की अगर हम बात करें तो इसके पार्श्व गायक थे तलत महमूद साहब ने अपने मखमली आवाज और कपकपाती आवाज में से वो गाया था और इसका शानदार और सदाबहार संगीत प्रसिद्ध जोड़ी शंकर जयकिशन जी ने तैयार किया था। और इस गीत के बेवक भावुक गीत को जाने माने शायर और गीतकार हजरत जयपुरी साहब ने लिखा था और पर्दे पर इस गाने को ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब पर फिल्माया गया था जिसमें वो मैं के नशे में चूर और गमगीन नजर आते हैं। उम्मीद करते हैं आज की रात में इन गीतों के साथ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। गीत सुनहरे से अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे पुराने सदाबहार गीतों का कार्यक्रम गीत सुनहरे, और अब समाचार होंगे पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापारों को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
2: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। SCO सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। कल से शुरू हुआ 2 दिवसीय सम्मेलन प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में पहला सम्मेलन है। इसका उद्देश्य टीम इंडिया की भावना को मजबूत करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। सम्मेलन केंद्र और राज्यों को संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श और समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच न करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से 2 दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। आज बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। वहीं 3 सितंबर को चुनावी साक्षरता क्लब ECI नेट पर सम्मेलन होगा। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। वे मुंबई भी जाएंगे, जहां वे हीरा, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों सहित विभिन्न हितधारकों से मुलाकात करेंगे। एयर मार्शल विवेक हांडे ने कल भारतीय वायुसेना में महानिदेशक चिकित्सीय सेवाओं का पदभार संभाल लिया है। उन्हें स्थायी रूप से भारतीय वायुसेना में तैनात किया गया है। एयर मार्शल हांडे दिसंबर 1988 में सेना चिकित्सा कोर में शामिल हुए थे। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे बिना रुकावट के फिल्म गानों का आनंद ले रहे थे, और अब कुछ ही देर में समाचार होंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
2: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। SCO सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। कल से शुरू हुआ 2 दिवसीय सम्मेलन प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में पहला सम्मेलन है। इसका उद्देश्य टीम इंडिया की भावना को मजबूत करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। सम्मेलन केंद्र और राज्यों को संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श और समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में भारत में डाटा सेंटर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए व्यापार सुगमता पर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डाटा सेंटर, क्लाउड सेवा प्रदाताओं, बिजली उत्पादकों और उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के साथ नियमों को सरल बनाने और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ रायपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के 3रे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से 2 दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। आज बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। वहीं 3 सितंबर को चुनावी साक्षरता क्लब ECI नेट पर सम्मेलन होगा। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। देश के ज्यादातर भागों में भी ऐसी ही स्थिति की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का यायार लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 3:10 और पूरे 10 सेकंड होने को हैं। आइए सुनते हैं गीत और गजल।

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको श्री कृष्ण भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। पहले प्रस्तुत है त्यागराजा की एक तेलुगु रचना, सुनिए सहगान रूप में।

0: अब हम आपको श्री स्वाति तिरुनाल की एक भक्ति रचना सुना रहे हैं, जिसे स्वर दिया है महाराजा परम संतानम में।
1: बंसी वाले निमन मोह बन

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अर्चना। आए सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म। कर्नाटक म्यूजिक के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे उषा विजय कुमार का बजाया राग चारुकेसी में गोटू वैद्य।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्म, जिसमें आपने सुना उषा विजय कुमार का राग चारुकेसी में गोटू वैद्यम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 सितंबर 2026। श्रोताओं, सुबह के 4:53 और पूरे 40 सेकंड हो चुके हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

क्यों आपसे थोड़ी देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, जिसमें आज आप सुनेंगे योग बद्ध पद्मासन। 5:20 पर देशभक्ति गीत सुनेंगे आप, और 5:30 पर आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी में ऋतिक अदलखा का राग अहीर भैरव में गायन। सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना,

0: 6:40 पर आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम चिंतन, जिसमें आज आप सुनेंगे बंकिम चंद्र चैटर्जी। 6:45 पर हर रोज की तरह आज भी होगा श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। आज का भाग होगा अयोध्या कांड। 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार और 7:10 पर कार्यक्रम संगीतिका में आज के कलाकार हैं नीलम पांडे के भजन सुनेंगे आप। 7:30 पर कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। 7:50 ये वो कार्यक्रम थे जिन्हें आज आप इंद्रप्रस्थ पर सुन सकते हैं। 5:00 को हैं, अब समाचार होंगे।
1: बिख बिख खाई माया मोह परम पपुले सत धारा से प्रीत उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई अरदास पाठ कीरत की गुर राम दास राखो सरनाई अरदास पाठ कीरत की गुर राम दास राखो सरनाई सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवा सिफत खसम दी सहो कुर सहो चटिया खुद डिठे सच्चे पात सा माल जनम जनम दी कटिया सज्जन सच्चा पात साह सिर साहदा साह जिस पास बैठया सोहिया सबना दा वेसा सजन सच्चा पात साहु सिर साह जिस पास बैठया सोहिया सबना दा वेसा

صاحب جی Thank you.

Hallelujah.

मोह पागड़ो पाहे सिंदूर

आरे सगले प्राचत मिटियो रे जाको महरो महराजरी गाठड़ियो जान नानक गरवास ना पौड़ियो रे सिख साधु जन सगलों

डाकू लहणो महराज री गाठड़ियो जान नानक गरबास ना पौड़ियो रे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी के फतह ढोडी महला पंजवा गर्भ गहलड़ो मूड़ो हियो रे हियो महराज री मायो डीहर ने आई मोहे फाके रे

Thank you.

जब मैं तना तेने आग लड़े जब मैं तना तेने आग लड़े जब मैं तना तेने आग लड़े जब मैं तना तेने आग लड़े।